नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के सौर मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 मई 2026। हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

0: हम आपको बता दें, हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भगे दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल शाम धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर जीत हासिल की। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन वार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, मुश्किलें केवल उन्हीं के हिस्से आती हैं जो उन्हें पार करने की हिम्मत रखते हैं, और मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो कभी हार नहीं मानते। ये था आज का चिंतन। और आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज और प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। अभी कुछ ही पलों में आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस। सुनिए आज का भाग 189, 6:35 पर। 6:45 पर संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा। सुनिए इस श्रृंखला का चौथा भाग, प्रस्तुति मनीषा जैन की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं आज शाम 6:45 पर। सात बजे भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर वंदे मातरम एक जय घोष। लेखक है मिलिंद सबनीस। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुनिए इसका भाग 28। इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज दोपहर 2 बजे। पर सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार। कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। 10 बजे सुनिए पिटारा में हेलो फरमाइश। 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम। 12:05 से सजेगी यादों की महफिल। दोपहर 1 बजे से तय करेंगे सुरीला सफर। 2:30 से सुनिए सदा बहार नगमे। 3 बजे हेलो सहेली। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 4 बजे सुनिए पिटारा में गीतों भरी कहानी। कहानी है जीवन एक सरल रेखा। लेखिका श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी। संपादन सहायक काजल भद्रगे। प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। पर सुनिए तराने नए पुराने। 6:35 पर संध्या रंजन। 7 बजे सुनिए जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए गुलदस्ता। 8 बजे हवा महल में सुनिए हास्य नाटिका बुखार। लेखन है वीरेंद्र कश्यप का। निर्देशन है गंगा प्रसाद माथुर। इन्हीं की प्रस्तुति। आठ बजकर पंद्रह मिनट पर रात्रि चित्रलोक। 9 बजे आपके लिए और 10 बजे आप सुनेंगे छाया गीत। लेखक एवं स्वर राजुल अशोक का। प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। 10:30 पर ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

सुना हूँ भरत भावी प्रबल, बिलख कहउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजसु विधि हाथ। श्री रामचरित मानस का ये दोहा भारतीय जीवन दर्शन का मानो एक आधार स्तंभ है। राजा दशरथ की अंत्येष्टि तथा दशगात्र विधान संपन्न हो जाने के पश्चात मुनि वशिष्ठ ने राजसभा में भरत को धीरज बंधाते हुए ये वचन कहे थे। राजा दशरथ के निधन पर सोच करने का औचित्य नहीं है, सोच उस राजा के बारे में करना चाहिए जो नीति निपुण नहीं होता और जिसे प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं होती। मुनि वशिष्ठ ने इस प्रकार नारी वर्ग सहित समाज के विभिन्न वर्णों, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा अन्य लोगों के हित अहित और उन कार्यकलापों की चर्चा की जिनके कारण वे सोच करने के हेतु बनते हैं। राजा दशरथ तो सब प्रकार से बड़भागी थे, अतः उनके कारण विषाद व्यर्थ है। उन्होंने भरत को राज दिया है तो भरत को पिता के वचन को साकार करना चाहिए।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का पाठ का भाग 189।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: संगीत सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की चौथी कड़ी।
1: सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो में श्री अनूप जलोटा जी मौजूद हैं।
2: नमस्कार जी।
1: जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कोश फूले, कुमुदिनी जिये सकुच रही, भृंग लता झूले। श्रोताओं, कृष्ण भक्ति का संसार बड़ा विविध रंगी है। इसमें कृष्ण के बाल रूप, सखा रूप और मधुर रूप की अद्भुत छटा बिखेरी गई है। ऐसी लागी लगन इस श्रृंखला में भक्ति के विविध रूपों और आयामों पर चर्चा हम कर रहे हैं अनूप जलोटा जी के साथ। इस कड़ी में आज भक्ति भाव की कौन सी छटा अनूप जी बिखेरेंगे, हम उन्हीं से पूछते हैं। अनूप जी बताइए।
2: आज हम कृष्ण की बात करते हैं। कृष्ण एक ऐसे ईश्वर हैं जो हमें अधिकार देते हैं, थोड़ी लिबर्टी दे देते हैं कि हम उनको चोर भी कह सकते हैं। हम उन्हें माखन चोर कहते हैं, हम उनको रण छोड़ कहते हैं, हम उनके साथ नृत्य कर सकते हैं, हम उनकी रासलीला में शामिल हो सकते हैं। भगवान ऐसे कौन से हो सकते हैं जो इतनी हमें इजाजत देते हो कि हम उनके साथ कर सकें। इसकी बड़ी सुंदर कहानी है कि जब भगवान राम सिंहासन पर बैठ गए, राजा बन गए, तो जो वानर सेना थी वो उनके पास आई और उन्होंने कहा कि प्रभु हमारे साथ तो बड़ा धोखा हो गया। उन्होंने कहा क्या धोखा हो गया, हम तो आपके भक्त हैं, हम आपके साथ खेलने आए थे, आनंद करने आए थे, और आपने हमको रावण युद्ध में लगा दिया। उसके बाद अब आप राजा बन गए, अब तो हम बिल्कुल आपके साथ खेल नहीं सकते, हम तो बड़ा दूर रहते हैं आपसे। तो भगवान राम ने कहा कि बात सही है, अब मैं राजा बन गया हूं, अब तुम लोगों के साथ मैं खेल नहीं सकता, लेकिन द्वापर युग में मैं कृष्ण बन के आऊंगा और तुम लोगों को ग्वाल बाल बना दूंगा और हम सब खेलेंगे
1: जी।
2: तो अपने भक्तों को देखो भगवान यूं संभाले, भय राम जी के बानर, किशन जी के ग्वाले। तो भगवान कृष्ण एक ऐसे भगवान हैं जो हमें आनंद देते हैं, मित्र बन के हमारे साथ खेलते हैं। लीजिए ऐसा ही एक भजन आपको सुनाता हूं।
3: वो काला एक बांसुरी वाला, बांसुरी

0: सचमुच हम बांसुरी बजैया के रंग में जैसे डूब गए थे, खो से गए थे। अनूप जी हमें बताइए कि इस भजन में किस राग की चर्चा थी?
1: कोई प्योर राग इसमें हमने इसमें इस्तेमाल नहीं किया, मिक्स है
0: जी। और हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि कृष्ण के बहुत सारे भजन आपने गाए हैं, उन भजनों की रचना प्रक्रिया बताते हुए कुछ झलक प्रस्तुत करें।
1: मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इस भजन को पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी ने सबसे पहले गाया और कमाल का गाया। उसके बाद उसी श्रृंखला में उसी भजन को कुछ उसी स्टाइल में मेरे पिताजी ने उतारा और उसको एक सरलता प्रदान करी। उसके बाद कई लोगों ने उस भजन को गाया अलग अलग धुनों में, लेकिन हमने, मैंने और पिताजी ने उसी धुन को साथ रखा जो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी ने गाई थी। इस भजन के साथ साथ जो व्याख्या होती है वो बड़ी ही हृदय स्पर्शी है
0: जी।
1: कन्हैया आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने। एक गोपी बड़ी चालाक थी, उसने क्या किया था कि जहां माखन की मटकी टांग के रखी थी उसी रस्सी से एक घंटी भी बांध के रखी थी। सोचा था कि कन्हैया आएंगे, ये मटकी फोड़ेंगे, घंटी बजेगी, हम उनको पकड़ लेंगे। कन्हैया पहुंचे अपने साथियों के साथ, देखा कि घंटी भी बंधी हुई है, समझ गए कि ये गोपी अपने को बहुत चालाक समझती है। तो घंटी को आदेश दिया, बिल्कुल चुप रहना, बोलना नहीं, मेरे साथियों को भूख लगी है, सबको माखन खाना है, बिल्कुल चुप रहना। मटकी फोड़ी गई, कन्हैया के साथियों ने खूब माखन खाया और घंटी चुप, बिल्कुल चुप। जब सब खा चुके तो कन्हैया ने सोचा थोड़ा मैं भी खा लूं, और जैसे ही जरा सा माखन मुख से लगाया तो घंटी जोर जोर से बजने लगी।
0: क्या बात है।
1: कन्हैया ने कहा ये क्या, जब मेरे साथी खा रहे थे तो

0: चुप थी और मैंने जरा सा माखन खाया, तुमने बजना शुरू किया। घंटी बोली, हमारे ठाकुर जी भोग लगा रहे हो तो हम कैसे चुप रह सकते हैं?
1: क्या बात है?
0: बस आ गई गोपी, पकड़ लिया कन्हैया को, ले गई यशोदा के पास। और यशोदा पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया क्या? और कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया,

भोर और सांझ। तो भोर सुनिए भोर की राग, राग भैरव, सांझ राग यमन कल्याण। शायद आपको समय का महसूस हो।

अब इसमें एक नई व्याख्या सुनिए। यशोदा कहती है, कन्हैया तुमने हमेशा माखन ही चुराया है, तुम्हारा नाम पड़ गया माखन चोर। अपने घर में तो सब कुछ है, दूध दही मिठाई मेवे, वो सब तो तुम नहीं चुराते, तो ये माखन से इतना प्रेम क्यों है? कन्हैया बता रहे हैं यशोदा को कि उनको माखन इतना प्रिय क्यों है।

0: वाह, बहुत सुंदर भाव विह्वल कर देने वाला भजन आपने श्रोताओं के लिए प्रस्तुत किया और हम सबकी आंखें नम है इस समय।
1: ऐसी लागी लगन, आप सुन रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलूटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत की है आशीष झा। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। जिंदगी की मिट्टी से उठी कहानियों का मोल समझाते हैं ये दो बीघा जमीन फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में शैलेंद्र के बोल, सलिल चौधरी का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली
0: गलियां। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में शास्त्रीय संगीत से महकता ये गाना। फिल्म है हमदर्द, प्रेम धवन के बोल और संगीत है अनिल बिस्वास का।

आइए अब सुनते हैं सखी की उलझन। चित्रलेखा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, साहिर लुधियानवी के बोल और संगीत है रोशन का।

ये थिरकता गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में आ फिल्म से हसरत जयपुरी के बोल संगीत शंकर जयकिशन का। कार्यक्रम के बाकी गाने संतराल के बाद।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का अगला गाना तलाक फिल्म से आशा भोसले की आवाज में प्रदीप के बोल सी रामचंद्र का संगीत।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम है।

0: हेलो सहेली, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
1: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: इस संदेश के पहले आप सुन रहे थे सजा फिल्म से संध्या मुखर्जी और हेमंत कुमार की आवाजों में गाना, राजेंद्र कृष्ण के बोल और संगीत सचिन देव बर्मन का।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गाना स्वर्ण सुंदरी फिल्म से, भरत व्यास के बोल और संगीत आदि नारायण राव का। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम इसी के साथ संपन्न होता है।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गाने के साथ। दो प्रेमियों ने छेड़ी है एक मीठी सी बगावत, अजनबी फिल्म से। सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में ये गाना, आनंद बख्शी के बोल और संगीत राहुल देव बर्मन का।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: मीठी सी शरारतें भी हैं और थोड़ी बहुत छेड़खानियाँ। अमीर गरीब फिल्म से आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया ये गाना, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: खड़ी हो जा।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: हमें राही प्यार के इस कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

है हम हैरा ही प्यार के। आइए सुनते हैं दोस्त फिल्म से ये गाना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल।

जुगनू फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में गाना आनंद बख्शी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम का आखिरी गाना हीरा पन्ना फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल राहुल देव बर्मन।

इसी के साथ आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम संपन्न होता है। सुबह के 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रूपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूए की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सोवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं। साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से एलएनजी तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तक, इंडिया और यूए की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंह उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रूपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत

0: योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
1: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पोद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीएस समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरलम में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए यूडीएफ मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूडीएफ सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और यूडीएफ के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्री परिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
5: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है।

0: मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
1: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वह यहां कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैन।
0: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महाआवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालिंडुगा में स्काई वॉक परियोजना और गंगटोक के आकडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशू खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशू को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
2: फरत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये, बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी एसआईआर, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिन्दुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने सीयूईटी यूजी में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, एनटीए का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी इस दिवस की शुरुआत।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता।

0: के साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 28वीं कड़ी।

बंग भंग विरोधी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पहलू था स्वदेशी जागरण, और इस मुहिम में युवा वर्ग के प्रेरणा स्थान थे शिक्षाविद एवं समाज सुधारक के रूप में ख्याति प्राप्त अश्विनी कुमार दत्त। इस आंदोलन में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अश्विनी कुमार जी के कहने पर कवि हृदय के यज्ञेश्वर नामक एक दुकानदार ने एक अनोखा ही जनजागरण शुरू किया। पहाड़ी शैली में अलग अलग गीत रचकर वे गाया करते थे। गांव गांव घूमकर पूरे बंगाल को वे जागृत करने लगे। अश्विनी कुमार दत्त जी ने उन्हें एक नया नाम दिया, चारण मुकुंद दास। मुकुंद दास गांव गांव जाकर छोटे छोटे गली मोहल्लों में देहात के बीच बनी चौपाल पर, नदियों के घाट पर अपने गीत प्रस्तुत कर इस स्वदेशी आंदोलन का संदेश लोगों तक पहुंचाने लगे।

समय में चारण मुकुंद दास बंगाल के एक लोकप्रिय व्यक्ति बन गए। ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाएं जो कभी घर के बाहर भी नहीं निकलती थीं, उन्हें भी चारण मुकुंद दास की कविताओं ने जागृत किया। स्वदेशी चूड़ियां पहनने का आह्वान करते हुए मुकुंद दास जी कहते

हे बंगाली स्त्रियों, तुम ये कांच की चूड़ियां कभी इस्तेमाल न करो। तुम सब गृह लक्ष्मी हो, धर्म साक्षी हो, ये सारी दुनिया जानती है। कांच की माया को छोड़ शंख के आभूषण पहनकर सौभाग्य चिन्ह

0: একটু হাসি, কাকুক মেদিনী ভিম্বা দেখাতে বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম।
1: ये वो समय था जब स्वदेशी का प्रचार अपने चरम पर था। मातृ भंडार अर्थात मायेर वस्त्र, इस नाम से स्वदेशी वस्त्रों का निर्माण होने लगा। मुंबई और कर्णावती में 20 नई कपड़ा मिले तथा 15 स्वदेशी बैंक शुरू किए गए। बंगाल में विदेशी वस्त्रों की बिक्री एक ही साल में 77,000 से घटकर 10,000 पर आ गई।
2: वंदे मातरम की अग्नि ब्रिटिश सरकार महसूस करने लगी। 7 अगस्त को हुई सभा के अवसर पर इस गर्जना का अवतरण हुआ और मात्र 3 महीनों में इस घोषणा ने ब्रिटिश सत्ता के मन में डर पैदा कर दिया। ट्रिब्यून नामक समाचार पत्र ने लिखा, वंदे मातरम ये शब्द लोकप्रिय हो गए हैं। माता का वंदन, इतना ही उसका अर्थ है, उसमें कोई और भयंकर अर्थ है ही नहीं। फिर इन शब्दों पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है? यहां पढ़े लिखे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, वंदे मातरम कहकर अभिवादन करते हैं। पूरे हिंदुस्तान के लोगों के मुख से निकलने वाले वंदे मातरम शब्दों पर रोक लगाने के लिए सरकार को कितने सिपाही और अधिकारियों की आवश्यकता होगी? बंगाल के सभी लोगों को पूरे हिंदुस्तान की जनता का समर्थन प्राप्त है।
1: बंगाल के विभाजन ने केवल बंगाल को ही नहीं पूरे देश को जगा दिया। इस लड़ाई के बहाने भारतीय जनता की एक बार फिर एकजुटता दिखाई दी। हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव कर उनके बीच झगड़ा कराने का ब्रिटिशों का मकसद बहुत सफल नहीं हुआ। बैरिस्टर अब्दुल रसूल, मौलवी अब्दुल कासिल, अब्दुल हुसैन, दीदार बख्श, लियाकत हुसैन जैसे कई प्रमुख मुस्लिम नेता कर्जन के आह्वान का खोखलापन उजागर करते हुए मुस्लिम समाज से इस आंदोलन में शामिल होने का सार्वजनिक आह्वान कर रहे थे।
2: कर्जन के इस एक कदम से ब्रिटिश सत्ता को जो झटके लगे थे उनसे उबरना ब्रिटिशों के लिए मुश्किल हो रहा था। नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन को अपना इस्तीफा देना पड़ा। भारत के सेनापति बनकर आए लॉर्ड किचनर के साथ कर्जन के बार बार मतभेद होने लगे। राजनीतिक फैसले लेते समय वॉइसरॉय की कार्यकारी परिषद में सेनाधिकारियों का स्थान नहीं होना चाहिए, ऐसा लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश सरकार को बताया। लेकिन लंदन की सत्ता किचनर के पक्ष में होने के कारण लॉर्ड कर्जन ने वॉइसरॉय पद से इस्तीफा दे दिया। एक तरह से यह बंग भंग विरोधी आंदोलन की ही जीत थी।
1: लॉर्ड कर्जन की जगह लॉर्ड मिंटो की नियुक्ति हुई, पर उन्होंने भी बंगाल के विभाजन को मान्यता दी। बंगाल में दमन चक्र वैसे ही चलता रहा। दिसंबर 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए और वापस भी चले गए। आम जनता के स्तर पर उनका बहुत बड़ा स्वागत नहीं हुआ। 1976 में वंदे मातरम की शताब्दी मनाने की पहल करने वाले वंदे मातरम के अध्ययनकर्ता विश्वनाथ मुखर्जी इन सभी घटनाओं के बारे में लिखते हैं।
3: कांग्रेस का जन्म होने के काफी पहले, जब वंदे मातरम गीत का जन्म नहीं हुआ था, उन दिनों सन 1872 में बंग दर्शन पत्रिका के संपादकीय में बंकिम बाबू ने लिखा था, भारतवर्ष की विभिन्न जातियां जब तक एक मत, एक परामर्श और एकोद्योगी नहीं होंगी, तब तक भारतवर्ष की उन्नति नहीं होगी।
2: बंकिम चंद्र जी का यह कथन सच होने जा रहा था। अलग अलग प्रांतों के निवासी एक होकर

0: ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध हो रहे थे। वंदे मातरम गीत का कितना प्रभाव पड़ा था, इसका उदाहरण श्री मोतीलाल नेहरू के एक पत्र से मिलता है जो उन्होंने 1905 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के नाम लिखा था।
1: हम ब्रिटिश भारत के इतिहास की सबसे अधिक संकटपूर्ण अवधि से गुजर रहे हैं। इलाहाबाद में भी वंदे मातरम आम अभिवादन बन गया है। यदि अभियान चलता रहा तो यहां लौटने पर भारत को जब तुम गए थे उससे बिल्कुल बदला हुआ पाओगे।
0: यह सारा प्रभाव था वंदे मातरम इन दो शब्दों का। आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

0: वंदे मातरम, एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 28वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद, संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार
1: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
0: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
1: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सब के नाम उनके जवान पे क्यों है, क्योंकि उनका प्यार है।
0: 18 मई शाम 7:45 पर।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आज की सोंधी सी सुबह के गले लगते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म के इस गाने के साथ। डोमिनिक सेरेओ, लॉय मेंडोसा, क्लिंटन सेरेओ की आवाजों में जावेद अख्तर के बोल और शंकर एहसान लॉय का संगीत।

सही तो कह रहे हैं, खुद के जैसा कोई दूसरा ढूंढना आसान है क्या? खुद की नजरों में तो हम सभी हैं 10 on 10, लेकिन आखिर है क्या हमारे इस कॉन्फिडेंस की वजह, हमारे सफलताओं की नींव और असफलताओं में बढ़ते वो हाथ जो रहते हैं हमें पकड़ने के लिए तैयार? हमारा परिवार, हमारी फैमिली और इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल फैमिली डे पे। तो आइए कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं, खुशी हो या गम साथ रहे हर पल तारारम पम। इस फिल्म से शान महालक्ष्मी अय्यर, स्नेहा सुरेश रवन की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल और इस गाने की का म्यूजिक बनाया है विशाल शेखर ने।

0: जल्दी सुनवाएंगे आपको आजा नचले फिल्म से ये गाना, लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर,
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी, 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अगला गाना, अगले गाने का इंतजार हुआ अब कम। आइए सुनते हैं आजा नचले फिल्म से ये गाना, चित्रलोक कार्यक्रम में सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में, पीयूष मिश्रा के बोल और संगीत है सलीम सुलेमान का।

आजा नचले फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना। वैसे इस फिल्म की एक बहुत ही खास बात है, इस फिल्म से कमबैक हुआ था वेरी ग्रेसफुल एंड ब्यूटीफुल मूवी एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित का। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, विविध भारती की तरफ से विशिंग हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे।

सुनिए नी की फिल्म डेढ़ इश्किया से ये गाना, रेखा भारद्वाज के बोल, और माफ कीजिएगा, रेखा भारद्वाज की आवाज में बोल है गुलजार के और विशाल भारद्वाज का संगीत।

0: माधुरी दीक्षित के बारे में आप और जान सकते हैं आज के फनकार कार्यक्रम में, जो कि पेश होगा आपके लिए 9:30 पर और इसका पुनः प्रसारण होगा आज रात 9:30 पर। कार्यक्रम के बाकी गाने सुनते हैं, पर सबसे पहले ये संदेश।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

इंग्लिश विंग्लिश फिल्म से सुनिधि चौहान, स्वानंद किरकिरे, नीलांबरी किरकिरे की आवाजों में स्वानंद किरकिरे के बोल और अमित त्रिवेदी का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गाना, भूल भुलैया 3 फिल्म से। आदित्य रिखारी और तुलसी कुमार की आवाजों में आदित्य रिखारी के बोल, संगीत है लियो जॉर्ज का, डीजे चेतस और आदित्य रिखारी का।

और जब आपको कोई ऐसा मिल जाए जो आज के बाद के वादों को भी संभाल के रखे, तो आपका दिल तो भर ही जाएगा बहारा से। आई हेट लव स्टोरीज फिल्म से सुनिए श्रेया घोषाल, सोना मोहापात्रा की आवाजों में ये गाना, कुमार के बोल, विशाल शेखर का संगीत।

0: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार
1: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
0: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
1: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सब के नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
0: 18 मई शाम 7:45 पर
2: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना कार्तिक कॉलिंग कार्तिक फिल्म से शंकर महादेवन, लॉय मेंडोसा और क्लिंटन सेरेओ की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल शंकर एहसान लॉय का संगीत।

कार्यक्रम का अगला गाना टू स्टेट्स फिल्म से अरिजीत सिंह, चिन्मय श्रीपदा की आवाजों में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और म्यूजिक है शंकर एहसान लॉय का।

अगला गाना हमारे सभी बड़े दिल वालों के लिए, 30 मार्क हाँ फिल्म से सुखविंदर सिंह की आवाज में और इनके साथ दिया है श्रेया घोषाल ने, अन्विता दत्त के बोल, विशाल शेखर का संगीत।

इस हाई नोट पे समाप्त करते हैं आज का चित्रलोक कार्यक्रम। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत, लेकिन जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं कि 9:30 पर आप सुनेंगे आज के फनकार, जो आधारित होगा माधुरी दीक्षित पर, तो सुनना ना भूलिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के फनकार उस जगमगाती स्माइल के नाम जिसके जादू से बचना मुश्किल है।

0: कुछ अलग ही है उनका हर अंदाज।
1: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
0: तो आइए मिलते हैं द गॉर्जियस सुपर टैलेंटेड डांसिंग डीवा माधुरी दीक्षित से।

फैंस की लाडली और घर में सबसे छोटी सबके दुलारी माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई में हुआ। नृत्य के प्रति जन्मजात रुझान का असर था जो नन्ही माधुरी संगीत सुनते ही ठुमकने लगती। 3 साल की उम्र से ही उन्होंने कथक सीखना आरंभ किया। कुछ ही वर्षों में कथक की बारीकियां उनके नृत्य में नजर आने लगी। जल्दी उनकी डांस परफॉर्मेंस सराही जाने लगी और बतौर कथक नृत्यांगना उन्हें स्कॉलरशिप मिली। उस वक्त वो सिर्फ 9 साल की थी।

पढ़ाई के साथ साथ माधुरी दीक्षित कल्चरल एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करती। स्कूली शिक्षा के बाद माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने के उद्देश्य से उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया। कुछ ऐसे संयोग बने कि उन्होंने हिंदी फिल्मों के रुपहले संसार में किस्मत आजमाने का मन बना लिया। वो साल था 1984 जब राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई, अबोध। इस फिल्म में उनके साथ थे बंगाल के अभिनेता तापस पॉल।

अबोध को दर्शकों का प्यार तो नहीं मिल सका, लेकिन माधुरी दीक्षित को मिली आलोचकों की प्रशंसा। आने वाले समय में माधुरी दीक्षित की कई फिल्में आईं। आवारा बाप 1985 में, स्वाति, हिफाजत और उत्तर दक्षिण 1987 में, 1988 में उनकी एक साथ चार फिल्में रिलीज हुईं, मोहरे, खतरों के खिलाड़ी, दयावान और तेजाब। फिल्म तेजाब में फिल्म हिफाजत के बाद एक बार फिर उनके साथ नजर आए अनिल कपूर। तेजाब की मोहिनी ने माधुरी दीक्षित को रातों रात स्टार बना दिया।

1989 में कई सितारों से सजी फिल्म वर्दी में उनकी जोड़ी जैकी श्रॉफ के साथ जमी। इसी साल आई सुभाष घई की फिल्म राम लखन में एक बार फिर अनिल कपूर के साथ उनकी जोड़ी खूब पसंद की गई।

वक्त के साथ सफलता की सीढ़ियां चढ़ती माधुरी दीक्षित अलग अलग फिल्मों में अलग अलग किरदारों में फैंस के दिल में अपनी जगह बनाती गईं। मल्टी स्टारर फिल्म त्रिदेव की जया माथुर हो या प्रेम प्रतिज्ञा की भोली भाली लक्ष्मी राव या फिर परिंदा की पारो, रोल छोटा हो या बड़ा, माधुरी दीक्षित के अभिनय की छाप गहरी होती गई।

90 के दशक में माधुरी दीक्षित के करियर का एक नया दौर शुरू हुआ। 1990 में आई फिल्म कृष्ण कन्हैया के बाद फिल्म दिल की जबरदस्त कामयाबी ने उन्हें शिखर पर पहुंचा दिया। आमिर खान के साथ उनकी इस फिल्म के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला।

अपनी फिल्मों के जरिए माधुरी दीक्षित उस नए जमाने की लड़की की पहचान बन गईं, जो खूबसूरत और स्टाइलिश होने के साथ अकलमंद भी है, आजाद ख्याल है और उसूलों की पक्की है। थानेदार, 100 डेज, साजन जैसी फिल्मों ने ये साबित कर दिया कि परफेक्ट डांसिंग मूव्स और खूबसूरती के अलावा माधुरी दीक्षित में कमाल की अभिनय क्षमता है।

1992 में आई फिल्म बेटा, जिसमें एक बार फिर माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की जोड़ी नजर आई। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित को मिला दूसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

0: अपने अभिनय से हर किरदार को यादगार बनाने वाली माधुरी दीक्षित 90s की बॉक्स ऑफिस क्वीन बन गईं। फिल्म थिएटर से उतरने के बावजूद उनका रोल जहन में हमेशा ताजा रहा। भला कौन भूल सकता है फिल्म खलनायक की जाबाज पुलिस ऑफिसर गंगा को, या फिल्म अंजाम की सताई हुई शिवानी चोपड़ा को, या फिल्म मृत्युदंड की केतकी सिंह को, जो अपराध और अत्याचार के खिलाफ चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है।
1: हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे।
2: देखिए, जाने दीजिए हमको, दीदी का तबीयत ज्यादा खराब है।
1: हमको भी कुछ बात करना है।
2: वो हम बाद में भी कर सकते हैं।
1: बाद में नहीं, अब भी।
2: भगवान के लिए अभी ये बहस मत उठाइए, दीदी को जरूरत है हमारा।
3: देखिए श्रीमती जी, अपना औकात में रहिए, हमरा मरद बनने का कोशिश मत कीजिए।
2: औकात को ताकत का तराजू में तोड़ने का कोशिश मत कीजिए। आप हमारे पति हैं, परमेश्वर बनने का फूल मत कीजिए।
0: 1994 में माधुरी दीक्षित ने एक बार फिर राशि प्रोडक्शंस की फिल्म की हम आपके हैं कौन। सलमान खान के साथ ये उनकी एक और हिट मूवी थी, जिसके लिए उन्हें मिला तीसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

साल 1997 लेकर आया भावनात्मक उथल पुथल से जूझते तीन किरदारों की फिल्म दिल तो पागल है। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ शाहरुख खान और करिश्मा कपूर थे। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित ने जीता 4th फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

1999 में माधुरी दीक्षित अमेरिका के कार्डियोवैस्कुलर सर्जन डॉक्टर श्रीराम माधव नेने के साथ विवाह बंधन में बंध गईं।

प्रेम त्रिकोण पर आधारित माधुरी दीक्षित की फिल्मों में सन 2000 की फिल्म पुकार का जिक्र भी आता है, जिसमें प्रेम में हारी ईर्ष्या दग्ध अंजलि के रूप में उनकी जमकर प्रशंसा हुई।

माधुरी दीक्षित एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो हर उम्र हर वर्ग के दर्शकों की फेवरेट रही हैं। 2001 में मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन साहब ने उन्हें लेकर फिल्म गजगामिनी का निर्माण किया। इसी साल रिलीज हुई राजकुमार संतोषी की फिल्म लज्जा, जिसमें जानकी के रोल में उन्हें बहुत सराहा गया।

0: देश हो या विदेश, माधुरी दीक्षित की फिल्मों का जबरदस्त क्रेज रहा है। 2002 में फिल्म देवदास आई, जिसमें माधुरी दीक्षित ने चंद्रमुखी की भूमिका निभाई। इस फिल्म में कथक नृत्यांगना माधुरी दीक्षित के अभिनय को भी बहुत प्रशंसा मिली। उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया।
1: ढाई शाम रोक लई, रोक लई, रोक लई, ढाई शाम रोक लई, और चक मुख चूम लई, मुख चूम लई, मुख चूम लई, सर से मोरी चुनरी गई, गई, गई, सर से मोरी चुनरी गई, सरक सरक सरक, सरक सरक सरक, सरक सरक।
0: फिल्म देवदास के बाद माधुरी दीक्षित अपने परिवार के साथ अमेरिका चली गईं। वहीं रहते हुए उन्होंने एक फिल्म साइन की। खबर मिलते ही एक बार फिर रुपेले पर्दे पर उन्हें देखने के लिए फैंस बेकरार हो गए, और सन 2007 में उनकी बेकरारी को करार देते हुए रिलीज हुई फिल्म आजा नचले।

2012 में वो वापस भारत लौटी और 2014 में रिलीज हुई आलोचकों द्वारा प्रशंसित फिल्म डेढ़ इश्किया, जिसमें माधुरी दीक्षित के साथ नसीरुद्दीन शाह, अरशद वारसी और हुमा कुरैशी नजर आए।

0: इसी साल अभिनेत्री जूही चावला के साथ माधुरी की फिल्म आई गुलाब गैंग, जिसमें वुमन एक्टिविस्ट के रोल में उनके सशक्त अभिनय की बहुत सराहना हुई।
1: जैसे तिल में तेल है, जों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। जुर्म जुर्म होता है और इंसाफ इंसाफ होता है। हमारे यहाँ कहावत है, डंडा सबका पीर होता है।
0: 2018 में माधुरी दीक्षित पहली बार एक मराठी फिल्म में नजर आईं। फिल्म का नाम था बकेट लिस्ट। इस फिल्म में एक बार फिर माधुरी दीक्षित के अभिनय की धाक जम गई।

2019 में एडवेंचर कॉमेडी टोटल धमाल में वो एक बार फिर अजय देवगन और अनिल कपूर के साथ नजर आईं। 2019 में ही रिलीज हुई फिल्म कलंक में माधुरी दीक्षित के अभिनय की सराहना हुई।

सक्रियता के अलावा माधुरी दीक्षित ने जज के रूप में रियलिटी डांस शोज किए हैं। साथ ही वो अपनी प्रोडक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट्स में भी व्यस्त रहती हैं। अपने अभिनय और नृत्य के साथ निखरती मेस्मराइजिंग माधुरी दीक्षित हर रोल में सफल हों।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। शोध आलेख और स्वर राजुल का था। प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: श्रोताओं नमस्कार, आपके चहेते फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश के साथ हाजिर हूँ मैं शिफाली कपूर। साथियों, जिंदगी की भागदौड़ में कुछ पल ऐसे भी होने चाहिए जो सिर्फ हमारे दिल के लिए हों, और उन्हीं खूबसूरत पलों को सजाने के लिए हम लेकर आए हैं आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश, जहां फोन के जरिए आपसे होगी बातचीत और साथ होंगे आपके पसंदीदा गाने। साथियों, कुछ गीत मुस्कान बन जाते हैं, कुछ धुनें यादों का कारवां ले आती हैं, और कुछ फरमाइशें दिल से सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बातों और गीतों का सिलसिला, लेते हैं पहला कॉल। सुन रहे हैं ना, फोन की घंटी बज रही है, कहीं ये आपका ही कॉल तो नहीं? हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते जी। नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: मैं खुश नसीब हूँ, मुझको किसी का प्यार मिला।
0: आहा, क्या बात है, अपना नाम तो बताएं।
1: प्यार का ही एक पर्यायवाची शब्द है प्रेम। मैं प्रेम कुमार गौतम बोल रहा हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: मेरा नाम ही है मोहब्बत प्यार प्रेम।
0: वैसे कहते हैं ना कि प्यार बांटते चलो, प्यार जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ता है ना?
1: जी। तो मेरे आगे दो शब्द लगे हैं, तो प्रेम, दूसरा गौतम, और गौतम बुद्ध, दोनों ने ही प्रेम का संदेश दिया।
0: क्या बात है। तो आज आप क्या संदेश दे रहे हैं और किस शहर से बात कर रहे हैं, जरा ये भी बता दें।
1: कि मैं झांसी से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा जी।
1: पूर्व लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।
0: बिल्कुल।
1: और गर्व करते हैं।
0: बिल्कुल गर्व है।
1: आपको भी गर्व होगा।
0: बिल्कुल गर्व है जी, बिल्कुल गर्व है। अपने बारे में भी कुछ बताएं प्रेम जी, आप क्या करते हैं?
1: मैं शब्दों की साधना करता हूँ, मैं राइटर हूँ, लिखता हूँ।
0: क्या बात है।
1: कविता से मेरे आत्मिक जुड़ाव है, मैं मूल रूप से कविता का विद्यार्थी हूँ।
0: अच्छा, कैसी कविताएं लिखते हैं आप?
1: छंद में तो मैंने बहुत कम लिखा, लेकिन हम मुक्त छंद की कविताएं लिखते हैं। हम मानवतावादी कविताएं हैं जो मुक्त छंद की हैं, हम मुक्त लिखते हैं।
0: अच्छा, तो चार लाइनें आप क्या हमारे श्रोताओं के लिए यहाँ पर सुना सकते हैं?
1: जी जी, जरूर सुनाऊंगा। कविता का शीर्षक है दो मिनट का मौन। आओ मित्र दो मिनट का मौन रखें। आओ मित्र दो मिनट का मौन रखें। वो देखो कुएं के ठीक बगल से रखा गमला। वो देखो कुएं के ठीक बगल से रखा गमला, प्यास से दम तोड़ चुका है कल उसका नौजवान पौधा। प्यास से दम तोड़ चुका है कल उसका नौजवान पौधा। आओ मित्र दो मिनट का मौन रखें।
0: क्या बात है, क्या बात है भाई आपकी। तो इस कविता ने निशब्द कर दिया, तारीफ में क्या बोलूं मैं। और बहुत खूब, आपकी कलम यूं ही चलती रहे और दिन दूनी रात चौगनी आप तरक्की करें। प्रेम जी, तो बताएं आज के इस कार्यक्रम में आपको कौन सा गीत आपकी पसंद का सुनवा दिया जाए?
1: एक बहुत फिलोसफी का गीत है, तीसरी कसम का, और बहुत भोले भाले राज कपूर पर फिल्माया गया, मुकेश ने गाया, शैलेन ने लिखा। सजन से झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना। आप इजाजत दे तो मैं गुनगुनाऊं।
0: चलिए गुनगुना दीजिए जरा।
1: सजन से झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन से झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी अस्सलाम वालेकुम।
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहा है, अपना नाम तो बताएं।
1: जी मैं तकिया मड़िया हूँ, जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश से। मैम मैं जमील अहमद शाह बोल रहा हूँ।
0: जमील भाई नमस्कार।
1: जी जी नमस्कार मैम, नमस्कार। और मैम क्या हाल चाल है?
0: बस सब मेहरबानी है ऊपर वाले की, और आप सभी की शुभकामनाएं हैं, वो विविध भारती परिवार के साथ तो हमेशा है ही, तो हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं।
1: बहुत आज खुशकिस्मती है मेरी कि आज मुझसे शिफाली कपूर जी से मेरी बात हो रही है।
0: जमील भाई खुशकिस्मती तो हमारी है जो आप सभी श्रोताओं से बात करने का मौका मिला हमें। जी
1: 2019 में मेरा कॉल लगा था, अब जाके मेरा कॉल लगा है मैम।
0: अरे वाह, बड़ा लंबा अरसा हो गया। अच्छा ये बताएं जमील भाई कि इतना लंबा अरसा 2019 से आज है 2026, तो इतना जो दरमियान जो वक्त रहा, तो उसमें आपने ट्राई किया होगा फोन बीच में, अभी जब शुरू हुआ है ये हेलो फरमाइश, तो निराश तो नहीं हुए ना?
1: निराशा हुआ है मैम, बहुत
0: अच्छा।
1: दिल से मैं ट्राई कर रहा था, आज जाके कामयाबी मिली है तो बहुत खुशी मिल रही है मैम।
0: आपकी खुशी हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद को आपकी जगह रखकर महसूस कर सकती हूँ भाई कि कितनी खुशी होती है। तो बताएं जरा जौनपुर के हालचाल बताएं, अपने हालचाल बताएं।
1: जी जौनपुर का हाल तो मैम बहुत गर्मी पड़ने लगी है मैम, और लगभग इस वक्त 37 डिग्री हम लोगों के यहाँ टेम्परेचर है मैम।
0: मुंबई भी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पर भी।
1: जी जी, और गाने पे आ जाते हैं मैम।
0: आ जाइए गाने पे, बिल्कुल अपनी पसंद बताएं।
1: टीम का नाम है महबूब की मेहदी और आवाज मोहम्मद रफी साहब की, और इसको मैं मैम थोड़ा से गुनगुना देना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल गुनगुनाइए।
1: ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, ओ ये जो चिलमन है दुश्मन।

0: हेलो फरमाइश,
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्ते जी, नमस्ते। विविध भारती के कार्यक्रम हेलो फरमाइश में किसने फोन किया, कहाँ से फोन किया?
1: जी नमस्कार मैम, मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ त्रिपुरा से फोन किया है। मैं विश्वजीत पाल बोल रहा हूँ।
0: विश्वजीत जी, अपने बारे में तो कुछ
1: तो
0: बताइए।
1: मैं ब्लाइंड हूँ, तो इसीलिए रेडियो
0: अच्छा,
1: कार्यक्रम सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो
0: कौन सा कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद है विश्वजीत जी?
1: हेलो फरमाइश छाया गीत और बहुत ही प्रोग्राम आपका है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: तो आप ये बताइए कि आप मोबाइल ऐप पे सुनते हैं या ट्रांजिस्टर रखा हुआ है आपने?
1: नहीं, ट्रांजिस्टर रखा हुआ है, तो ट्रांजिस्टर में बहुत ही अच्छा से सुन लेता हूँ, आवाज का बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा, ये बताएं कि आप करते क्या हैं?
1: मैं ब्लाइंड आदमी हूँ, खेती बाड़ी में काम करता हूँ। मेरा घर के आसपास से थोड़ा सा खेती बाड़ी में वो काम कर लेता हूँ।
0: अच्छा,
1: मेरा माँ है, पापा है, तो उसके साथ जाता हूँ खेत में, को थोड़ा सा देखभाल करती है, तो इसीलिए थोड़ा सा खेती बाड़ी में कुछ कुछ काम मैंने कर लेता हूँ।
0: और गीत संगीत से लगाव है आपका?
1: हाँ, तो गीत तो जब भी कार्यक्रम सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। हमारा इधर मौसम बहुत बारिश हो रही है, ज्यादा तो गर्मी थी तो इसीलिए बारिश हुआ है, तो बहुत अच्छा है। मैं एक बात बताना चाहूंगा, तो
0: जी
1: हमारा इधर एक मंदिर है, विख्यात तो मंदिर है, माँ त्रिपुरेश्वरी मंदिर,
0: अच्छा,
1: तो यह से बहुत ही लोग आती है वो घूमने के लिए। बाहर से डिगी है और डिगी के आसपास से बहुत ही सुनसान है, बहुत अच्छा लगती है वो
0: जी
1: डिगी के बारे में।
0: तो वहां पर आने का कोई खास मौसम होता है या किसी खास महीने में आया जाता है घूमने के लिए, या 12 महीने में किसी भी समय आ सकते हैं?
1: किसी भी समय में आदमियों को दिक्कत नहीं है, तो हमारा इधर तो हर मौसम में बहुत अच्छा है।
0: अच्छा, ये बताएं कि आज आपने हैरो फरमाइश कार्यक्रम में फोन किया है तो कोई गाना भी तो चुना होगा अपनी पसंद का?
1: जी, मेरे को गाना सुना दीजिए, सजन चले ससुराल मूवी से, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके वादा निभाना चाहती है। हमारे इधर बांग्ला चलते है, बांगली भाषा,
0: जी
1: तो बेंगली रहती है, तो कार्यक्रम हिंदी में होती है तो बहुत अच्छा, लोग जानती है, हिंदी भाषा सीख जाती है, तो बहुत
0: जी
1: अच्छा लगती है आपका कार्यक्रम।
0: और विश्वजीत जी, आपने जितने मेहनत से हिंदी बोली है बहुत अच्छा लगा। और आपने जो ये बात कही कि आप विविध भारती सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी बहन जी, नमस्कार
0: नमस्ते जी, आप बताएं कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी। मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट अजनर, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड से बात कर रहा हूँ। बहन जी
0: बताएं जरा अपने
1: बस
0: बारे में।
1: एकदम अच्छे हैं और हम खेती करते हैं और साथ में फूलों वाला काम, डेकोरेशन का।
0: अच्छा, और वैसे खेत में
1: जी
0: आजकल क्या लगा हुआ है?
1: इस समय खेत में कुछ नहीं है, खेत तो खाली है। इस समय बस जुताई हो चुकी है, अब बारिश हो जाए और उसके बाद फिर मूंगफली की बुवाई होगी।
0: अरे वाह, अभी तो चटक गर्मी होगी।
1: जी,
0: तो खेत वेत में जाते हैं अभी कि नहीं जाते हैं?
1: जाते हैं। अभी क्या है ना, कुछ कटहल के और आम के पेड़ लगे हुए हैं,
0: अच्छा
1: तो जाते रहते हैं। उसमें फल भी लगे हुए हैं।
0: कौन से फल लगाए हैं?
1: अभी आम है और कटहल है।
0: आम कौन सा है, आम की कौन सी जात?
1: दशहरी है, दशहरी।
0: क्या बात है भाई, अपने उत्तर प्रदेश की तरफ का जो दशहरी होता है उसका तो स्वाद ही अलग होता है।
1: बिल्कुल, सबसे नंबर एक का स्वाद होता है उसके।
0: और बताएं आपके जो शहर है वहाँ के क्या हाल चाल है और क्या चीज प्रसिद्ध है? अगर हम आते हैं महोबा तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा?
1: हमारे यहाँ तो देखने के लिए जैसे काफी मंदिर भी है, जैसे झांसी हमारे पास है, झांसी रानी लक्ष्मीबाई का किला है और महोबा भी किला बने हुए हैं राजाओं के। और हमारे बुंदेलखंड में जो चरखारी है वहाँ पे कई तालाब है और एक दूसरे से सभी तालाब ज्वाइंट है,
0: अच्छा
1: वो भी बहुत जी देखने लायक है।
0: क्या बात है, तो यानी हमें एक बार महोबा आना ही पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल आना पड़ेगा आपको।
0: हाँ, लेकिन ऐसे सीजन में आना पड़ेगा जब हमें दशहरी आम
1: नहीं,
0: मिले।
1: अभी 15-20 दिन बाद बस पकने ही वाले हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है, खूब आनंद लीजिए भाई, तो बहुत ही अच्छा फल है और इस तो आमों का राजा कहलाता है ये। बहरहाल चलिए, ये बता दीजिए कि आज आपका फोन लगा हेलो फरमाइश में, तो कौन सी पसंद है आपकी, गाना बताएं?
1: जी मुझे सुनना है, फिल्म का नाम है संगीत और गीत के बोल है सुनो हसीना काजल वाली।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
2: अरे

0: हेलो फरमाइश।
1: सिर्फ अली कपूर जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। मैं रेडियो दोस्त परवेज अहमद बनारस से आपसे मुखातिब हूँ मैम।
0: भाई बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत।
1: और मैं 2003 से रेडियो विविध भारती का सुनने वाला हूँ। मैं घाट को ऊपर में रहता था तब से सुनता हूँ, लेकिन अभी आज मेरी बात हो रही, मैं बनारस से बात कर रहा हूँ आपसे।
0: तो ये बताएं कि मुंबई के घाट को ऊपर से बनारस कैसे पहुँच गए?
1: जी मैं वहाँ 5 साल हेयर कटिंग किया हूँ मैम, उसके बाद मैं फिर बनारस शिफ्ट हो गया हूँ। बनारस में ही यहाँ एक दुर्गा कुंड एरिया है, अस्सी घाट के बगल में, वहीं मैं रहता हूँ मैम।
0: अच्छा, तो वहाँ क्या करते हैं?
1: यही अपना ही बिजनेस है, हेयर कटिंग का ही काम करता हूँ मैम।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, अपना सैलून है परवेज भाई का वाराणसी में?
1: जी जी 20 साल से ऊपर हो गया होगा, मेरी फोन आज लगी है।
0: क्या बात है भाई, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि ये आप सभी का अपना कार्यक्रम है हेलो फरमाइश।
1: रेडियो सुन सुन के मैं जो कि बचपन से सुन रहा हूँ और बहुत अच्छा लगता है आप लोग की आवाज।
0: जो इस समय आपकी आवाज है और आपके अंदाज है ना, वो बता रहे हैं कि आप खुशी से लबरेज हैं इस समय विविध भारती के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और जरा ये बताएं कि बनारस की गलियों में वो जो आलू की सब्जी और कचौड़ी मिलती है, उसका आनंद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं?
1: जी जी मैम, बीच फेमस है, उस गली का नाम है कचौड़ी गली मैम, बहुत फेमस है वो, रहता है। उस गली की खूबसूरती है कि अगर आप गली के अंदर जाएंगे, इतनी अच्छी खुशबू आती है, हींग की खुशबू आती है, घी या देसी घी की खुशबू आती है, कि एकदम खाने का मन तो हो ही जाता कोई भी रहे, यहाँ तक ले विदेशी पर्यटक भी तो स्वाद चखते हैं मैम। और एक नया घाट बना है हमारे यहाँ नमो घाट मैम, वो बहुत फेमस घाट हुआ है।
0: गंगा आरती तो बहुत ही बढ़िया होता है।
1: गंगा आरती मैम आप दशा समेव घाट पे देखिएगा, बहुत खूबसूरती होता है। और हमारे अस्सी घाट पे जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी अब गंगा आरती होने लगी है मैम, बहुत ही अच्छी होती है।
0: जी जी, और उसका जो अक्स गंगा जी में पड़ता है वो तो अद्भुत होता है। चलें परवेज भाई, आपकी इस खुशी को हम दुगना कर देते हैं। अब बताएं आप कि आपकी पसंद का गाना कौन सा है?
1: जी मैम, फिल्म रहेगी लव इज शिमला मैम, गाने का बोल है अलिफ जवर आल अली जवर आल अली जवर ए अलिफ तो सो, ये मोहम्मद रफी जी की मीठी आवाज में है मैम गाना ये।
0: अच्छा, सुने अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार शिफाली दीदी
0: नमस्ते जी, नमस्ते। कौन बात कर रहा है हमसे?
1: जी। मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल डार।
0: ओ साहिल भाई, क्या हाल चाल है?
1: ठीक हो? आप सुनाइए दीदी, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल ठीक है। आप सबकी शुभकामनाएं साथ में हैं। और अपने बारे में बताएं साहिल भाई।
1: जी मैं पश्मीना, जो कश्मीर आर्ट है ना, उसी के साथ करता हूँ दीदी।
0: शॉल वगैरह बनाते हैं?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल
0: अच्छा, तो ये सारा हाथ का काम
1: जी
0: होता होगा, हाथ से ही करते होंगे आप?
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपकी अपनी शॉप है या आप कहीं जाते हैं या घर से करते हैं ये काम? कैसे करते हैं?
1: मैं घर से ही करता हूँ दीदी, ये काम बनाते हैं तो फिर उसको खुद ही बेचते हैं।
0: अच्छा, कब से कर रहे हैं ये काम?
1: जी बिल्कुल, लगभग 2012 से।
0: तो काफी लंबे समय से जुड़े होंगे आप विविध भारती के साथ भी।
1: जी विविध भारती के साथ तो मैं जुड़ा हूँ, और आपको मैं मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपने 2 मई से प्रोग्राम शुरू किया है मन चाहे गीत,
0: जी जी जी जी
1: और
0: बिल्कुल।
1: आपने कुछ प्रोग्रामों में चेंजेस भी लाए हैं, तो बहुत अच्छी लग रही है हमें वो आपकी चेंजेस।
0: अच्छा, तो आपको ये जो बदलाव हुए हैं ये पसंद आ रहे हैं?
1: जी बिल्कुल।
0: और वैसे क्या आप हमारे सभी कार्यक्रम सुनते हैं या कुछ खास ऐसे कार्यक्रम हैं जिन्हें आप बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनते हैं?
1: प्रोग्राम तो मैं सभी सुनता हूँ दीदी, आज के फनकार आता है, सुरीला सफर आता है, और छाया गीत, ये अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो आपके हमें मिलते हैं, पिटारा, वो हमें सभी सुनने को मिलते हैं।
0: विविध भारती से जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं उसमें आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा है?
1: प्रोग्राम तो सभी अच्छे हैं।
0: और अब ये बताएं जरा कि आप श्रीनगर के इस समय हाल कैसे हैं, मौसम कैसा है?
1: तो इस वक्त मौसम बहुत ही अच्छा है, गर्मियां शुरू हो चुकी है, तो फिलहाल जो कुछ दिनों पहले यहाँ का जो तापमान था वो 31 भी हो गया।
0: अच्छा, तो आज साहिल भाई कौन सा गाना सुनवा दिया जाए आपको?
1: फिल्म का नाम है डोली, उसी का एक नगमा है आशा जी की आवाज में, आज मैं देखूं जिधर जिधर ना जाने क्यों उधर उधर
0: भाई
1: आए।
0: साहिल भाई, ये तो आपने मेरी पसंद चुरा ली। तो चलिए अपनी इस प्यारी सी बातचीत को यहीं रोक देते हैं और अब सुनते हैं आपकी पसंद का, और हमारे तमाम श्रोता होंगे उनको भी ये गाना पसंद होगा, तो हम सब सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्ते।
0: हाँ जी नमस्ते। आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, जरा बताएं तो।
1: मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: प्रेम भाई क्या हाल चाल है।
1: मैं बहुत ही अच्छा हूँ। मैं सबसे बड़ा फैन आकाशवाणी विविध भारती का हूँ और उसमें से सबसे अच्छे मुझे आपके कार्यक्रम लगते हैं। हेलो सहेली में आप आते हो, सखी सहेली में आप आते हो, हेलो फरमाइश में आप आते हो, तो चार चांद लग जाते हैं।
0: चलिए भाई, आपको विविध भारती के कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, आप विविध भारती से जुड़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
1: मेरी आपसे बात हो रही है ना, तो यूँ समझिए कि मेरी धड़कन एकदम से तेज हो चुकी है।
0: भाई ऐसा
1: मुझे
0: क्यों?
1: बहुत खुशी हो रही है क्योंकि विविध भारती पे कॉल लगना है ना, ऐसा
0: हाँ
1: होता है कि आपको मतलब सारी खुशियां मिल गई एक साथ में।
0: हम तो अपने सभी श्रोताओं के लिए हमेशा यही कामना करते हैं कि वो हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी में तरक्की करते रहें। तो अब अपने बारे में बताएं प्रेम भाई, क्या करते हैं वहाँ पे?
1: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और मोबाइल ऐप पे आकाशवाणी विविध भारती और जितने भी प्रोग्राम आते हैं ना उनको सुनता हूँ मोबाइल ऐप पे। और अगर हम कहीं बाहर भी जाएं ना फिर भी हमें मोबाइल ऐप पे आपके कार्यक्रम आसानी से सुनने को मिल जाते हैं। मैं बताऊँ आपको, विविध भारती के जो कार्यक्रम आते हैं ना उसमें से मुझे हेलो फरमाइश और हेलो सहेली, इसके अलावा पिटारा के तहत में जो आता है, पहले सेहतनामा आता था, अभी सेलुलॉइड के सितारे शुरू किए हैं, और इस तरह के जो कार्यक्रम आते हैं ना बड़े अच्छे लगते हैं। और जब रात में हवा मेल आता है ना 8 बजे, उसका तो हम सबसे बड़े फ्रेंड
0: अरे वाह क्या बात है भाई, क्या बात है। आपने तो सभी कार्यक्रमों के नाम ले दिए क्योंकि सभी कार्यक्रम आपको पसंद हैं, यानी आप तो सुबह से शाम सुनते ही सुनते हैं विविध भारती। जरा ये बताइए कि इस समय जो आप हमें कॉल कर रहे हैं, खेत से कर रहे हैं क्या?
1: हैं। इस समय तो हम घर पे ही हैं, अभी गर्मी का टाइम है ना, तो खेत में अभी काम कुछ भी नहीं बचा है, बस फसल निकाल के घर ले आए हैं। खेत को कुछ समय के लिए खाली कर छोड़ दिया है, तब बरसात होगी ना तो सोयाबीन की फसल लगाई जाएगी जुलाई में।
0: अच्छा तो जरा ये बताएंगे आज कौन सा गाना सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है अर्पण और गाने के बोले लिखने वाले ने लिख डाला मिलन के साथ जुदाई, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में ये गाना काफी अच्छा लगता है।
0: जी गाना है ही अच्छा, इसका गीत संगीत दोनों बहुत अच्छा है। सुनिए अब अपनी पसंद का ये गाना।

0: हॅलो फरमाइश.
1: मैं बडनेरा जिला अमरावती विदर्भ महाराष्ट्र से हिम्मतराज श्रृंगारे बात कर रहा हूँ दीदी, आपका पुराना श्रोता.
0: हिम्मत भाई नमस्कार.
1: नमस्कार दीदी, कैसे हैं आप?
0: बिल्कुल अच्छे हैं. अब आप अपने बताएं, क्या हाल चाल है आपके?
1: मैं अच्छा हूँ दीदी.
0: क्या चल रहा है आजकल?
1: आजकल कुछ नहीं दीदी, काम पर था, काम पर से अभी फोन लगाया मैंने.
0: अच्छा, तो आप बताएं वहाँ पर क्या काम करते हैं अमरावती में?
1: मैं मजदूरी का काम करता हूँ दीदी.
0: अच्छा, तो इस समय छुट्टी लेकर आए हैं फोन लगाने के लिए?
1: हाँ दीदी.
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने छुट्टी ली. तो वो छुट्टी जो है हो गया कि आपका काम बन गया उस छुट्टी में?
1: आपकी आवाज़ सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे शिपाल दीदी हमारे आमने सामने बैठी है रेडियो के.
0: देखिए रेडियो ऐसा माध्यम है हिम्मत भाई कि ऐसा लगता है कि हम सब आमने सामने बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं. और बताएं अमरावती के क्या हालचाल है? खूब गर्मी पड़ रही है?
1: अमरावती विदर्भ में बहुत गर्मी दीदी, इधर पारा बहुत गर्म है दीदी, 70 डिग्री सेल्सियस है दीदी, 47 है.
0: तो ये बताइए कि गर्मी से बचाव के लिए क्या कर रहे हैं?
1: मैं तो दीदी छतरी लेके जाता हूँ साइड पर, कान को बांधता हूँ कपड़े और ठंडा पानी पीता हूँ और समय पर भोजन करता हूँ दीदी और शाम में 5 बजे घर पे आता हूँ.
0: आप जरा बताएं आज कौन सा गाना सुनवा दें आपको?
1: उड़े जब जब जुल्फे तेरी और आशा भोसले यानी मोहम्मद रफी साहब के आवाज में गाना है दीदी.
0: तो चलिए अब पहुंच रहा है अमरावती में आपकी पसंद का ये गाना.

0: हेलो फरमाइश।
1: आंखों में रहने वालों को याद नहीं करते, दिल में रहने वालों की बात नहीं करते। आप तो हमारी रूह में बसे हैं, इसलिए मुलाकात की फरियाद नहीं करते।
0: अरे वाह भाई वाह, ये कौन शायर आए हैं भाई, जरा बताएं अपना नाम तो बताएं।
1: उदयपुर राजस्थान जिलों की नगरी से दिलीप पाहुजा बात कर रहा हूँ मैडम।
0: दिलीप पाहुजा जी ने उदयपुर से झीलों की नगरी से हमें फोन किया है। गर्मी के क्या हाल चाल है उदयपुर में?
1: गर्मी तो 40-42 के आसपास चल रही है।
0: ऐसे में आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: अभी थोड़ा ठंडा है।
0: गर्मी के मौसम में कामकाज बहुत इफेक्ट करता होगा, क्योंकि इतनी तेज गर्मी पड़ती है कि लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपका किस चीज का काम है?
1: टेलरिंग व्यवसाय है, मतलब सिलाई का।
0: अपनी शॉप है?
1: जमा कोट वगैरह आप? जी भैया की शॉप है।
0: अरे वाह क्या बात है। आप जेंट्स टेलर हैं और या लेडीज टेलर हैं या दोनों, लेडीज जेंट्स?
1: जेंट्स।
0: अच्छा,
1: जेंट्स ओनली।
0: तो गर्मी का मौसम है तो कामकाज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपका? आपको जल्दी जल्दी देना पड़ता होगा, तो उसके लिए कारीगर ज्यादा लगाने पड़ते होंगे।
1: कारीगर तो ज्यादा ही है मैडम, मालिक की कृपा से, और उनको टाइम पे भी मिल जाते हैं कपड़े।
0: क्या बात
1: लेकिन
0: है।
1: इस बार थोड़ी सी शादियां कम है।
0: अच्छा,
1: इस हिसाब से थोड़ा फर्क है।
0: अच्छा,
1: पर्यटकों की तो भारी धूम मची हुई है स्थान के अंदर।
0: हम इसी पॉइंट पर आने वाले थे, वही बात आपने छेड़ दी कि भाई उदयपुर और राजस्थान में पर्यटकों के क्या हाल चाल है, भाई इतनी गर्मी में भी पर्यटक हैं या नहीं है?
1: जी बिल्कुल है मैडम, 12 ही महीने उदयपुर के अंदर पर्यटक मिलेंगे ही मिलेंगे।
0: जी जी जी,
1: चाहे गर्मी कितनी भी हो।
0: तो ये बताएं कि उदयपुर में और चीजें ऐसी क्या हैं जो देखी जा सकती हैं झीलों के अलावा?
1: झीलों के अलावा तो एक मानसून पैलेस है, और वो भी अच्छा है। थोड़ा सा ही आगे कुंभलगढ़ है, और 40-45 किलोमीटर की दूरी पर नासिकद्वारा श्रीनाथ जी का बहुत ही शानदार मंदिर है।
0: जी जी,
1: उसके बीच में एकलिंगपुरा जी का, एकलिंगपुर मतलब एकलिंगगढ़ के नाम से महादेव जी का मंदिर है। और अभी पिछले 3-4 वर्षों में नया एक वैष्णो देवी माता का मंदिर है, उदयपुर में ही हमारे सिंधी समाज के द्वारा ही बनाया गया है, निर्मित किया गया है।
0: अच्छा,
1: सेम टू सेम जैसा वैष्णो देवी में बना हुआ है। जोत भी वही वैष्णो देवी माता जी से ही आई थी, और लंगर 12 ही महीने चालू रहता है।
0: अच्छा, अब ये बताएं कि हमें इंतजार है इस बात का कि आप बताएं अपने पसंद का फिल्मी गाना आज के कार्यक्रम के लिए।
1: एक रफी साहब का गाना याद आ रहा है मुझे, हवस मूवी से। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम।

0: हेलो फरमाइश
1: शेफाली बहन को नमस्कार।
0: बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। और
1: आज हमारे मन में इच्छा थी कि शेफाली बहन से बात करेंगे, तो आज पूरी हो गई।
0: क्या बात है, तो हम जाने कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: जी मैं आपका बड़ा भाई उदयलाल टेलर उदयपुर से बात कर रहा हूँ।
0: अरे वाह, जरा हालचाल तो बताएं अपने।
1: हालचाल हमारा मस्त है, गर्मी 44 डिग्री चल रही है और राजस्थान में गर्मी बहुत ही होती है।
0: जी राजस्थान की गर्मी तो फेमस है। उदय भाई वहाँ पर क्या काम काज है?
1: हमारा टेलरिंग का काम है, जेंट्स कपड़ों की सिलाई करते हैं।
0: क्या बात है भाई।
1: मैं 55 साल से आकाशवाणी से जुड़ा हूँ और अभी मेरी उम्र है 74 साल।
0: क्या बात है, 55 साल से आप विविध भारती के साथ जुड़े हुए हैं।
1: जी
0: आपने इन 55 सालों में बहुत बदलाव देखे हैं विविध भारती में।
1: मैंने सबसे पहले तो वाल वाले रेडियो सुने थे, उसके बाद में चार चार सेल वाले ट्रांजिस्टर आए थे, फिर दो सेल वाले आए थे
0: जी,
1: और अभी तो मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं।
0: सबसे
1: परिवर्तन हुआ है।
0: अच्छा ये बताएं कि सबसे ज्यादा आनंद कहाँ सुनने में, कैसे सुनने में आया? मोबाइल पर अब आप ज्यादा अपने को सहज महसूस कर पाते हैं या पहले जमाने में जैसे आप सुनते थे उसमें अपने को सहज महसूस करते थे?
1: नहीं, रेडियो पर जो आनंद आता था वो मोबाइल में नहीं आता है।
0: ये बात बिल्कुल आपने सही कही है।
1: समय तो होता उसके 5 मिनट पहले से हम वो ट्यून लगाते तो कोशिश करते।
0: सही कह रहे हैं,
1: ट्यून बड़ी अच्छी लगती थी।
0: जी जी जी, तो अभी भी रेडियो अपने पास रखा है या नहीं रखा है?
1: नहीं रखा है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बंद है।
0: हाँ तो ये पुरानी यादें हैं जो हमेशा साथ रहती हैं।
1: जी जी।
0: तो अब ये बताएं दिल खुश करने वाला वो कौन सा गाना है जो आपने हेलो फरमाइश के लिए आज पसंद किया है?
1: फिल्म वो कौन थी का काल जय गाना है, लता जी की आवाज में, राजा मेहंदी अली खान साहब के शब्द है
0: जी,
1: और मदन मोहन जी की मधुर धुन है
0: जी,
1: लग जा गले
0: जी,
1: हसी रात फिर हो न हो।
0: काल जय गाना है, इसकी तो कोई बराबरी ही नहीं। अद्भुत गायकी, अद्भुत संगीत और कमाल के बोल हैं इसके। अब सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: साथियों, घड़ी की सुइयों ने कर दिया इशारा कि आज के लिए बस इतना ही। आपकी बातचीत और आपकी फरमाइशें हमें ये एहसास दिलाती हैं कि हम सिर्फ गाने नहीं सुन रहे हैं, दिलों को जोड़ रहे हैं। साथियों, जिंदगी चाहे जितनी तेज क्यों न हो जाए, एक अच्छा गीत हमें हमेशा कुछ पल ठहरना सिखा देता है। बहरहाल, आपको बता दें कि फोन पर हमारी अगली मुलाकात होगी अगले सप्ताह सोमवार को सुबह 11 बजे से विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 से हम रिकॉर्ड करेंगे फोन पर आपसे की गई बातचीत। तो हमारे टेलीफोन नंबर्स फटाफट नोट कर लीजिए। हमारे नंबर्स हैं 400-24662, नंबर एक बार फिर से 400-24662, मुंबई का STD कोड है 022022। चलिए अब हमारा दूसरा नंबर नोट कर लीजिए 2867-0288 2867-0288। और हाँ, उन श्रोताओं से विनम्र निवेदन, जिन श्रोताओं के कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हुए, वे कृपया 2 माह के बाद ही हमें कॉल करें ताकि अन्य श्रोताओं को भी उनके इस पसंदीदा कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर मिल सके। चलते चलते आपको ये भी बता दें, आज के कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का, विविध भारती की ओर से इस सुंदर सजीले कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। साथियों, रिश्ते सिर्फ मुलाकातों से नहीं, एहसासों से भी बनते हैं। तो हम फिर मिलेंगे इसी स्नेह और अपनेपन के साथ। शिफाली कपूर को दीजिए इजाजत। आप मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: हेलो फरमाइश।

0: रंग तरंग
1: विविध भारती पर कार्यक्रम रंग तरंग के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

गांधीज फेवरेट भजन बाय लता मंगेशकर। इस एल्बम से लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे नरसिंह मेहता का लिखा ये भजन, संगीत हृदयनाथ मंगेशकर का। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर सुन रहे हैं।

0: माजिद शोला कवाली की आवाज में सुन रहे थे आप ये कवाली। पायम सिद्दीकी सईदी ने इसे लिखा, मामी बाचू का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

कुसैर अल जाफरी के ये कलाम आप सुन रहे थे। अशोक खोसला की आवाज में कुलदीप सिंह का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आपको बता दें कि आज दोपहर 3 बजे से आप सुन सकते हैं हेलो सहेली कार्यक्रम, जिसमें सखियों की फोन इन फरमाइशें पूरी होंगी।

अनूप जलोटा की आवाज़ में सबा अफगानी का कलाम आपने सुना, अनूप जलोटा का संगीत। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आपको याद दिला दें कि आज दोपहर 2 बजे वंदे मातरम एक जय घोष, ये श्रृंखला आप सुन सकते हैं। श्रृंखला की 28वीं कड़ी आज आपको सुनाई जाएगी। और हेलो सहेली कार्यक्रम 3 बजे से सुनेगा, जिसमें सखियों की फोन इन फरमाइशें होंगी पूरी। शाम 4 बजे होगा पिटारा में गीतों भरी कहानी का सिलसिला, कहानी जीवन एक सरल रेखा, जिसे लिखा है श्वेता उपाध्याय ने। और अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगली गजल है ये, जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल सुनिए, द लेटेस्ट जगजीत सिंह चित्रा सिंह गजल इस एल्बम से, और इसे लिखा है सुदर्शन फकीर ने।

सुदर्शन फकीर का लिखा ये कलाम आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में। जगजीत सिंह का संगीत कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

राहत इंदौरी का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे रूपमा राठौर और संजीवनी की आवाजें करीब फिल्म के इस गीत में संगीत अनु मलिक का। आप सुन रहे कार्यक्रम रंग तरंग और आपको ये बताते चलें कि रोजाना शाम 6:35 से संध्या रंजन इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन सकते हैं भक्ति संगीत और संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा। चौथी कड़ी आज सुन सकते हैं शाम 6:45 से और रोजाना इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं सुबह और शाम 6:45 से। रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। मोहित चौहान, केम त्रिवेदी और अतुल मित्तल की आवाजें, उन्हीं के बोल, उन्हीं का शब्द और एल्बम है सिल्क रूट बूंदे।

सिल्क रूट बूंदे इस फिल्म इस एल्बम से गीत आप सुन रहे थे। मोहित चौहान, केम त्रिवेदी और अतुल मित्तल की आवाजें, उन्हीं के बोल, उन्हीं का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

एरा गैरा नथु खैरा। इस एल्बम से सुनिधि चौहान की आवाज में समीर के बोल आप सुन रहे थे। राजू सिंह का संगीत कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में कुछ गजलें भी आपको सुनवाई गई, क्योंकि एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें गजल, कवाली, पॉप गीत और लोक गीतों का संगम होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ और गजलें सुनने का आपका मन है, तो आज शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आप सुन सकते हैं गुलदस्ता में गजलें, जो कि नॉन फिल्मी गजलें हैं। और इसके साथ ही 8 बजे हवा महल में सुनिए हास्य नाटिका बुखार, जिसे लिखा है वीरेंद्र कश्यप ने, निर्देशन गंगा प्रसाद माथुर का। फिलहाल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रंग तरंग विविध भारती पर।

बाबा सहगल की आवाज में आप सुन रहे थे जुगनी मस्त कलंदर एल्बम से ये गीत, और इसे लिखा बाबा सहगल और देव कोहली ने, बाबा सहगल का संगीत। आपको बता दें कि आज रात 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर, और इस वक्त रंग दरंग कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं रेमो डिसूजा की आवाज में, माफ कीजिएगा, रेमो फर्नांडिस की आवाज में ये गीत ओ मेरी मुन्नी एल्बम से।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: इसके साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। रंग

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश।
0: और मैं अजीत। नमस्कार। राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया और स्वप्निल काटकर जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: दुनिया में सभी लोग किसी न किसी के भरोसे पर जीते हैं, इसलिए हरदम यही प्रयास करें कि हमारे ऊपर से किसी का भरोसा ना टूटे।
0: बहुत अच्छा विचार। जी हाँ श्रोताओ, दुनिया भरोसे पर ही तो कायम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे प्रति किसी का विश्वास न टूटे, क्योंकि टूट जाए तो मरम्मत में मुश्किल होती है।
2: जी हाँ, पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं,
0: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा,
2: गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण,
0: और महाराष्ट्र से मिस्टर पटेल, और
2: ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी।
0: संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी,

0: सप्ताह हमने विशेष रूप से ये चर्चा की कि गर्मी के मौसम में हम क्या-क्या सावधानियां बरत सकते हैं। आशा है कि श्रोताओं को जरूर पसंद भी आई होगी। आज इस सप्ताह के हमारे प्रसारण का आखिरी दिन है, तो आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: जी अजीत जी, देखिए हमारा प्रसारण शैक्षिक है और विशेषकर स्कूली बच्चों के लिए है, तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने प्रसारण में बच्चों की बातें न करें तब तक बात अधूरी ही रहेगी।
0: बिल्कुल।
1: तो क्यों न गर्मी के मौसम को बच्चों की गर्मी की छुट्टियों से जोड़कर देखा जाए।
0: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी और उनके अभिभावकों के लिए भी।
1: जी अजीत जी, गर्मियों की छुट्टियां बच्चों के लिए सिर्फ आराम का समय नहीं बल्कि सीखने, बढ़ने और नए अनुभव लेने का सुनहरा अवसर देती हैं। और यदि इन छुट्टियों को सही दिशा दे दी जाए तो ये छुट्टियां जीवन भर काम आने वाली आदतें सिखा सकती हैं।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे और उनके अभिभावक गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें। तो बिमलेश जी, चलिए आपसे शुरू करते हैं।
1: जी अजीत जी, देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी पढ़ाई से जुड़ाव हमेशा बनाए रखें।
0: जी, लेकिन विमलेश जी, क्या पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ी जाएं?
1: जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ या कुछ और कहानियाँ, कहानियाँ भाषा के कौशल को बढ़ाने में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं।
0: जी, और हाँ, श्रोताओं आपको विशेष सूचना दे दें कि यदि आपको पाठ्य पुस्तकों को सुनना है तो आप एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाएं। आपको वहाँ एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों का ऑडियो संस्करण या ऑडियो बुक मिल जाएगा।
1: आप इस चैनल पर हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। और हाँ, यदि आप पाठ्य पुस्तक या कहानी पढ़ें तो बोल बोल कर यानी वाचन के साथ पढ़ें।
0: क्योंकि इससे धारा प्रवाह पढ़ने के कौशल का भी विकास होगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि छुट्टियों के दिनों में अभिभावक बच्चों को कोई ना कोई नया हुनर जरूर सिखाएं, जैसे चित्रकला, क्राफ्ट बनाना या फिर कोई वाद्य यंत्र सीखना।
1: तो ये तो बात हुई पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक गतिविधि भी जरूर करें। सुबह या शाम जरूर कोई खेल खेलें। और भी बहुत कुछ गर्मी की छुट्टियों में किया जा सकता है,
0: जैसे
1: जैसे प्रकृति से जुड़ना यानी कि पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, गर्मी के मौसम में पक्षियों को दाना पानी देना इत्यादि।
0: जी, विमलेश जी, मुझे एक और बात याद आ गई। यदि इन दिनों में वे अपनी चीजों को ठीक से रखने का अभ्यास करें तो छुट्टियां खत्म होने तक ये उनकी आदत बन जाएगी।
1: इन दिनों में बच्चे कुछ रचनात्मक गतिविधियां भी कर सकते हैं,
0: जैसे
1: जैसे कि कहानी लिखना, डायरी लिखना, कविता लिखना इत्यादि। और हाँ, इन दिनों में वे माता पिता के कामों में भी हाथ बटा सकते हैं।
0: और इन छुट्टियों में कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इन छुट्टियों में अपने बुजुर्गों जैसे नाना नानी, दादा दादी से भी मिलने का थोड़ा समय जरूर निकालें।
1: तो श्रोताओ, आशा है कि आपको हमारे ये ग्रीष्म रेडियो विशेषांक पसंद आए होंगे। अब आपके लिए एक प्रश्न।
0: तो प्रश्न है कि बच्चे अपनी गर्मी की छुट्टियों में और क्या क्या कर सकते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर 8800-440-559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
1: थाथू और मैं। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची और उसके दादाजी के बीच स्नेह और प्रेम के रिश्ते को उजागर किया गया है और इसके द्वारा बच्चों को पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। विशेष रूप से ये संदेश दिया गया है कि बच्चे घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखें।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम थाथू और मैं।
2: मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं थाथा कहती हूँ। लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। कभी कभी थाथू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं हॉर्न बजाती हूँ, पम पम। रास्ते की सब बकरियाँ और गायें दूर हट जाती हैं। थाथू, क्यों ना हम चांद पर चले? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाता के दांत नहीं हैं, जब वे हंसते हैं।

0: खातू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियां धातु और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं धातु का हाथ पकड़ लेती हूँ। उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर धातु अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। धातु, ये कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। धातु मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह? वे कहते हैं।
1: अब सो जाओ।
0: उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने धातु से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनकी जैसी बनूं।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम थाथू और मैं, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
3: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह की वीरता और अपार शौर्य के बारे में बताया गया है कि कैसे भारत चीन के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उन्हें इस वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
2: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।

0: के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारीगण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
1: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
2: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या वॉर शुरू हो गई?
3: हाँ,
1: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
0: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
1: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
0: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पल्टन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
1: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
0: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
4: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
5: जी सूबेदार साहब।
4: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
5: जी सूबेदार साहब।
4: बोले सोनिहाल,
5: सत श्री अकाल।
1: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय। कड़ाके की ठंड थी।
6: तेजा सिंह, और चाय बना दे यार, सवेर होगी।
7: साहब,

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के पहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
2: जो बोले सो निहाल का।
0: बोमला तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
3: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थीं और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
1: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
0: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहाँ हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: बाद में पता चला कि वो चीन की सेना द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया है। ये जानकर चीन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को सूबेदार जोगिंदर सिंह की अस्थियां उनकी बटालियन के सुपुर्द कर दी। जी हां, सूबेदार जोगिंदर सिंह की अदम्य वीरता को देखकर चीन की सेना भी सम्मान से भर गई और चीन ने ससम्मान उनकी अंतिम क्रिया भी की थी।
0: उनका अस्थि कलश मेरठ के सिख रेजिमेंट सेंटर में लाया गया और वहां उनके सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया।
1: सूबेदार जोगिंदर सिंह, आपको हमारा शत शत नमन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह और सुनते हैं कार्यक्रम लिटिल बुली।

0: सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

चाचा जिंदाबाद फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत। रोजाना दोपहर 2:30 से आप सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर, और रोज रात छाया गीत होता है 10 बजे। अगर आप किसी दिन छाया गीत सुनने से रह जाएं तो चिंता ना कीजिएगा, सुन सकते हैं रोजाना शाम 5 बजे से छाया गीत का पुनः प्रसारण। विविध भारती पर इन दिनों आप कई कार्यक्रम सुन रहे हैं, और इस वक्त आप सुन रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम, जिसमें आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर पारिवारिक रिश्तों को बताते गीत या पारिवारिक एकजुटता को दर्शाते गीत हमने

घरवाले खाए चक्कर ऐसा है अपना चक्कर चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा ओ मामा।

0: जो असली है कभी उससे खताएं हो नहीं सकती, जो नकली है कभी उससे वफाएं हो नहीं सकती।
1: अरे नहीं भाई नहीं, हाँ बुरा हो वक्त तो साया भी अपना दूर रहता है, वफादारी का शिकवा क्या
2: जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है।
3: अरे क्या

0: ये दुनिया है यहाँ अपने भी आंखें फेर लेते हैं, अगर कुछ नाम हो जाए तो आकर घेर लेते हैं।
1: हाँ, जहाँ वाले मोहब्बत करके वादा क्या निभाएंगे,
0: सच भाई
1: हुए हैं आज बेगाने,
0: हम ही पर ताने कसते हैं, हम ही पर ताने कसते हैं, हम ही पर ताने कसते हैं।
2: अरे कैसे।

परवरिश फिल्म के इस गीत को आप सुन रहे थे मन्ना डे और मोहम्मद रफी की आवाजों में। हसरत जयपुरी के बोल दत्ताराम वाडकर का संगीत। आपको याद दिला दें कि 10 बजे रोजाना आप सुन सकते हैं छाया गीत कार्यक्रम, और अगर आपसे सुनना रह जाए या आप दोबारा सुनना चाहें तो हर शाम 5 बजे आप पहले दिन के छाया गीत का पुनः प्रसारण सुन सकते हैं। आपके लिए ये कार्यक्रम रोजाना 9 बजे होता है और 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। तो अब इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर, और आज इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर पारिवारिक संबंधों को दर्शाते गीत हमने शामिल किए हैं।

क्या कहना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन के साथ साथियों की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राजेश रोशन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर याद कर रहे हैं वो गीत जिनमें परिवार के सदस्यों की बातें हों या पारिवारिक एकजुटता के बात हों।

एनिमल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज, राजशेखर की बोल, हर्षवर्धन रामेश्वरम का संगीत था इस गीत में। अगर आप नए गानों के शौकीन हैं तो सुनिए हमारा कार्यक्रम चित्रलोक रोजाना रात 8:15 से, और ये कार्यक्रम सुबह 8:30 पर भी आता है। दोनों ही समय आप सुन सकते हैं नए फिल्मी गीत विविध भारती पर। और इस वक्त विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर पारिवारिक रिश्तों को दर्शाते गीत आपको सुनवा रहे हैं।

इस गीत के साथ ही यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। और इससे पहले आपको बता दें, सत्य पे सत्ता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार, भूपिंदर, सपन चक्रवर्ती और राहुल देवबर्मन की आवाजों में। राहुल देवबर्मन का संगीत, गुलशन बावरा के बोल। और अब कार्यक्रम से इजाजत लेते हैं, विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि इस कार्यक्रम के बारे में आप जानते हैं कि रोजाना हमारी फेसबुक पेज पर हम पोस्ट करते हैं एक इबारत या टेक्स्ट जिसमें छुपे होते हैं आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले गीत। यानी रोजाना कार्यक्रम में जो भी गीत शामिल होते हैं वो उसी टेक्स्ट से आते हैं और उनमें कुछ शब्द ऐसे समाये होते हैं जिन पर आधारित गीत कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। तो ये अंदाजा लगाना होता है हमारे श्रोताओं को कि आज के कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। और कार्यक्रम का मजा तो इसी बात में है कि आपके गानों की लिस्ट और हमारे गानों की लिस्ट किसी तरह से मैच हो जाए। और अगर आपके कुछ गीत अलग भी हैं तो भी आप उसे हमारे

पोस्ट पर कमेंट के जरिए बता सकते हैं, क्या पता शायद वो गीत शामिल हो जाए कार्यक्रम में। और आज की जो इबारत है या टेक्स्ट है वो हम आपके लिए एक बार पढ़ देते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। और हमारे जो साथी अब तक फेसबुक पेज से नहीं जुड़ पाए हैं वो जा सकते हैं www.facebook.com/vbsmumbai। इस पते पर जाकर आपको विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का पेज मिल जाएगा। बहुत से साथी पूछते हैं कि कौन सा असली पेज है, तो विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देवनागरी हिंदी में लिखा हुआ है और उसके बाजू में एक नीले कलर का टिक बना हुआ है और इसके साथ ही आप देख सकते हैं फॉलोअर्स 1000K लिखा होगा, यानी 100K लिखा होगा, यानी कि 100,000 फॉलोअर हैं। और यही पेज विविध भारती का आधिकारिक पेज है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं और इसमें ही आपको ये पोस्ट नजर आएगी। तो आज की इबारत मैं एक बार आपके सामने पढ़ दूं। गर्मी जहां झुलसाती है वहीं इससे जुड़ी यादें हमारे मन पर मीठे नर्म फाहे रख जाती हैं। गर्मियों की छुट्टियां, रेलगाड़ी का सफर, कभी नानी की कहानी तो कभी दादी का दुलार, गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, खेल खेल में दिन बीत जाते थे भाई, सैर सपाटे, पिकनिक, बाग बगीचे और मस्ती, वो दिन भी क्या दिन थे। तो इस इबारत से अंदाजा तो हमारे बहुत से साथियों ने लगाया है कि आज बातें बचपन में मिलने वाली गर्मियों की छुट्टी की है। और साथ ही बहुत सी बातें होंगी जहां हम घूमने जाते थे, रेलगाड़ी के सफर की बातें होंगी, ऐसा हमारे साथियों ने कुछ अंदाजा लगाया है और शब्द भी हमारे साथियों ने लिख भेजे हैं। लेकिन कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाने से पहले हम आपसे कुछ और भी पूछना चाहते हैं, तो आप आपकी गर्मियों की छुट्टियों की यादें हमसे साझा कर सकते हैं और साथ ही ये भी बताइए कि बचपन में आपने कौन कौन से खेल खेले हैं, क्योंकि इसमें तो हमने 2-3 खेलों के ही नाम बताए, लेकिन आप कौन कौन से खेल खेला करते थे ये बता सकते हैं। क्या गर्मियों की छुट्टियां आपके लिए फिल्में ज्यादा देखने का मौका लेकर आती थी या कुछ नहीं, और क्या गर्मियों में आप पिकनिक का प्लान बनाते थे, या जब बत्ती गुल हो जाती थी तो गर्मी से निजात पाने के लिए क्या आपने हाथ वाला पंखा झरा है, या अंताक्षरी खेली है अपने साथियों के साथ, कौन सा हुआ आपका पसंदीदा गाना, ये सब हमें बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि नानी और दादी से आपको डांट ज्यादा पड़ती थी या दुलार ज्यादा मिलता था, क्योंकि हम पूछना चाह रहे हैं कि आप बचपन में थे शरारती या शरीफ, या बचपन की इन यादों को सुनकर आप भी भरते हैं ठंडी ठंडी आहें, या आपके अंदर अब भी आप अपने इस बचपन को जीते हैं। ये सारी बातें हम तक पहुंचाइए, हमारे बहुत से साथियों ने बहुत से कमेंट्स लिखे हैं, लेकिन हम आपको सुनवाते हैं पहले कार्यक्रम का पहला गीत।

मुकेश की आवाज में देवर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और याद किया जा रहा था बचपन को, क्योंकि आज हम भी कुछ याद ही कर रहे हैं क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों की बातें हो रही है। हमारे एक साथी ने लिखा कि सुरीला सफर में आज अपने पुराने दिनों को याद करेंगे, बचपन की गलियारों में झांकेंगे। तो आज की इबारत में से याद शब्द तो हमने ले लिया एक गीत में, और कौन से शब्द हो सकते हैं जिनके गीत आज के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं आप हमें बताइए। हमारे साथी ने बताया, हमने पूछा था कि कौन कौन से और खेल आप खेलते हैं, क्योंकि हमारे इबारत में तो सिर्फ दो खेल के नाम हैं। तो उन्होंने बताया कि पकड़ दांव, लंगड़ी, खो खो, रुमाल दांव, कबड्डी जैसे कई खेल खेला करते थे। वेकेशन में दोस्तों के साथ उनके खेतों में जाते थे, नहाते थे, कच्चे आम, इमली, शहतूत जैसे फल खाने का आनंद भी खूब उठाया है। बचपन अनमोल था, कोई भी कीमत से उसे नहीं खरीदा जा सकता। हमारे एक और साथी ने बताया कि बचपन में पढ़ता था तब दोस्त फिल्म दिखाने हमें काका जी सभी कजन भाई को लेकर लेके गए थे। बचपन में छोटे धर्मेंद्र होते हैं तो पिताजी उन्हें आती जाती रेल दिखाते हैं, गाना बजता है, हम उसे आकाशवाणी गीत कहते थे। फिल्म में फिर कई बार गाना बजता है, जब धर्मेंद्र बड़े हो जाते हैं, रेलगाड़ी में बैठते हैं तब भी गाना बजता है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। और हमारे एक और साथी ने कहा कि बचपन में गर्मियों की छुट्टियां पड़ते ही हम सुबह का खाना लेकर अपने परिवार के साथ खेत पर चले जाते थे, वहीं वटवृक्ष की छांव में बैठकर ठंडी ठंडी हवा के साथ हम खेलते थे, अंताक्षरी खेलते थे, खाना खाते थे, थोड़ी देर सुस्ताकर पेड़ के कैरियां तोड़कर लाते थे। जब गन्ने से गुड़ बनाया जाता था तो हम पहले उसका रस पी लेते थे, कितना सुकून मिलता था, काश वो बचपन के दिन वापस लौट कर आ जाएं। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन आज गीतों के जरिए जरूर आपको कुछ यादें ताजा हो सकती हैं। हमें ये भी बताइए कि क्या आप बचपन को जीते हैं अब भी, क्या पिकनिक वगैरह पर कहीं जाते थे गर्मियों की छुट्टियों में। और ये सारी बातें बताते बताते हमारे साथी जब गर्मियों की बात कर रहे हैं तो वो पसीने की बात बहुत कर रहे हैं कि भाई बड़े पसीना छूटता है, गर्मी बड़ी तपती है। तो एक गीत वैसा ही सुना दें आपको, बताइए कौन से फिल्म का ये गीत है।

0: हुस्न का गुलाम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। गीता दत्त और उषा मंगेशकर की आवाजें, योगेश के बोल, रॉबिन बनर्जी का संगीत। फिलहाल तो हमें नहीं दिखा है कि किसी ने सही जवाब हमें भेजा हो, पर हो सकता है नेटवर्क के इश्यू की वजह से कभी कभी लेट भी जवाब मिल जाता है। हालांकि हमारी एक साथी कहती है कि गर्मी की छुट्टियां यानी ननिहाल या दूर गांव में सफर पर जाने का मौज मस्ती का सुहाना मौसम। आपने सभी के बचपन वाले से मनभावन यादों को आज हम याद करने वाले हैं और उन्होंने बहुत से गीत भी भेजे हैं जिन शब्दों से आज के कार्यक्रम में गीत हो सकते हैं। अब उन्हें ये देखना होगा कि भाई उनके गीत आज के कार्यक्रम के गीतों के लिस्ट से मैच होते हैं या नहीं। हालांकि हमें लगता है कि कोई ना कोई गीत तो ज़रूर सबकी लिस्ट से मैच हो ही जाएगा। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि हमने पूछा था ना कि नानी और दादी से डांट पड़ती है कि प्यार मिला हमेशा, यानी शरारती थे या शरीफ। तो हमारे एक साथी कह रहे हैं, बहुत से साथियों ने तो कह दिया वो शरीफ थे भाई। और एक और साथी कहते हैं कि दादी नानी से ढेर सारा प्यार और डांट भी मिली। मेरी दादी हमें लेकर सब्जी भाजी लेने जाती, लौटते समय कुछ ना कुछ खाने को पक्का मिलता। और नानी तो जब भी घर आती तो बच्चों के लिए चीजी और खिलौने की प्रतीक्षा रहती थी कि इस बार क्या लाएंगी। हमने तो अभी भी उनके खिलौने बहुत संभाल कर रखे हैं। नानी दादी नाना दादाजी सभी बहुत याद आते हैं और हर वर्ष गर्मियों की छुट्टियों में अधिक ही याद आते हैं। हमारे साथी कह रहे हैं कि बचपन में उन्होंने साथियों के साथ गिल्ली डंडा, चुपम छुपाई, पोसंपा, लड्डू कंचे, माफ कीजिएगा, लट्टू कंचे, आम डंडी और चोल पुलिस कैरम, ये सारे खेल खेले हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नानी के गांव की बात हो तो गर्मी हालांकि सभी हदें पार कर रही है, लेकिन अगर नानी के घर की बात हो तो सर्दी हो गर्मी हो सभी फुर हो जाती है। पिछले एक दशक से हमारे इंदौर से रेल मार्ग बंद है तो सफर में पहले जैसा उतना आनंद नहीं आता, लेकिन वो मजा नहीं आता जो रेल की गाड़ी पे यात्रा करते हुए आता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दादी माँ बहुत ज्यादा डरा के रखती थी, हम लोगों को उनकी आंख से डर लगता था, हम लोग बहुत बदमाशी करते थे इसलिए। और नानी बी के घर में नानी को ज्यादा डांटने का मौका नहीं मिलता था, पर डर डर के हम लोग रहे बचपन में भाई। लेकिन आप साथ में तो बता रहे ना कि इतनी शरारतें करते थे, थोड़ा डराना तो जरूरी पड़ता है। हमारे एक और साथी कह रहे कि गर्मियों में जब घर से बाहर निकलना बंद हो जाता था तो समय बिताने के लिए हम घरेलू इंडोर खेल खेलते थे, जिसमें चूड़ियों के टुकड़े और इमली के बीज के साथ खेलने वाला खेल जो कि लूडो से मिलता जुलता खेल था। जमीन पर चौक से कुछ ब्लॉक ड्रॉ करके चार अलग अलग रंग की चूड़ियों को रखकर इमली के बीज बनते थे हमारे पास और हम इसे खेलते थे। इसे चाई चूड़ी कहते थे स्थानीय भाषा में भाई। इस तरह का खेल हमने भी कुछ खेला है और बड़ा ही आनंद आता है उस खेल को देखकर। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भाई हम कार्यक्रम में बैडमिंटन वगैरह उन्होंने बहुत खेला है, अंताक्षरी खेली है, ऐसा वो बता रही हैं। बचपन में पकड़म पकड़ाई, बर्फ पानी और लुका छुपी छुपाई बहुत हम खेला करते थे बचपन के टाइम से। हमारे साथियों ने कहा बहुत सारे खेलों के बारे में बता रहे हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जुलस्ती हुई तेज गर्मी में रेलगाड़ियों का लंबा सफर करीब 1500 किलोमीटर तय करके हम अजमेर से पश्चिम छोर गुजरात के सोमनाथ तीर्थ पर आज दोपहर पहुंच गए हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। तो भाई आपके साथ आपका ये सफर सुहाना हो, हम यही कह सकते हैं। और एक गीत क्यों ना बताया जाए, क्यों ना सुनाया जाए आपको, क्योंकि बात हो रही है छुट्टियों की, तो ऐसा ही एक गीत आपके लिए भेज रहे हैं। बताइए कौन सी फिल्म का गाना है।
1: तूने मुस्कुरा के देखा मेरी छुट्टी हो गई, तूने मुस्कुरा के देखा मेरी छुट्टी हो गई, मेरी छुट्टी हो गई कि मेरी छुट्टी हो गई, जाने किस अदा से देखा।

0: छुट्टी हो गई,
1: दूसरी ढूंढ ले लुगाई।
0: मेरी छुट्टी हो गई, तूने मुस्कुरा के देखा, मेरी छुट्टी हो गई, मेरी छुट्टी हो गई, मेरी छुट्टी हो गई। जान किस अदा से, जान किस अदा

0: जीत ली है बाज, अपनी हो गई सगाई सबकी छुट्टी हो गई, अपनी हो गई सगाई सबकी छुट्टी हो गई, तूने मुस्कुरा के देखा मेरी छुट्टी हो गई, मेरी छुट्टी हो गई कि मेरी छुट्टी हो गई, जाने किस अदा से, जाने किस अदा से देखा सबकी छुट्टी हो गई, जाने किस अदा से देखा सबकी छुट्टी हो गई।
1: मोहम्मद रफी और कृष्णा कल्ले की आवाज में आप सुन रहे थे शंकर खान फिल्म का ये गीत। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बल्कि इससे पहले वाली जो फिल्म का नाम हमने पूछा था हुस्न का गुलाम, वो जवाब भी आपने हमें दिया, आपका जवाब हमें मिल गया। हमारे साथ ही आप सुन रहे हैं मिलकर हम सभी सुरीला सफर, जिसमें आज इस इबारत जो हमने भेजी है जिसमें गर्मियों की छुट्टियों की बातें हैं और दादी नानी के घर की बातें हैं, वो सारी बातें हम कर रहे हैं, वो अनुभव हम आपस में बांट रहे हैं और साथ ही उनमें कुछ शब्द हैं जिनसे गीत आपको सुनवा रहे हैं और आपकी लिस्ट और हमारी लिस्ट मैच हो जाए इसका तो बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। देखते हैं कहां कहां तक हमारी और आपकी लिस्ट मिलती है। हमारे साथी कहते हैं कि नानी दादी की संगत तो नसीब नहीं हुई, मगर ये कमी अपने नातिन और पोतों को दुलार करके हम पूरी कर रहे हैं। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि आज भी बचपन में जीता हूँ, एरोप्लेन की आवाज़ आती है तो ऊपर देखता हूँ, रेलवे स्टेशन से गुजरती गाड़ी के डिब्बे गिनता हूँ, बच्चों के साथ खेल खेल में जुड़ जाता हूँ। एक साथी ने बताया कि बचपन में पकड़म पकड़ाई, बर्फ पानी और लुका छुपी खेला करते थे। और हमारे साथी बोल रहे हैं कि उन्होंने बताया कि छुपन छुपाई, कोकोनट, रंग पूछने वाला खेल, चोर सिपाही, खो खो आदि खेलते थे। एक और साथी ने बताया कि दादी घर में सब मोहल्ले के बच्चे लड़कियां मिलकर 7x7 स्टोन्स वाला गेम होता था, जिसको बॉल से गिरा के वापस से लगाना होता था, ये बहुत खेला करते थे हम सड़क पर। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि गर्मियों के मौसम में अपने दोस्तों के साथ सितोलिया, कबड्डी, लुका छुपी, मार दड़ी, क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल जैसे अनेक प्रकार के खेल खेले हैं। और हाथ से जलने वाले पंखे याद करें हमारे एक साथी जो उसके बारे में बता रही हैं। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जब छोटे थे तो नानी के घर में ही रहा करते थे। और एक और साथी कह रहे हैं कि नानी के यहाँ तो साल में 10-15 दिन जाते थे, लेकिन दादी तो हमेशा साथ रहती थी, बहुत अच्छी थी, हम उन्हें हाथ से खाना खिलाते थे, उनको बहुत मिस करते हैं। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, उसके दिल के एक कोने में बचपना हमेशा जिंदा रहता है। कुछ लोग उम्र के साथ उसे छिपा देते हैं, पर कुछ लोग बचपना खुलकर जीते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं, तनाव से दूर रहते हैं। अब दादी और नानी की बात हो गई है तो उन पर जो उनके संबंधित जो गीत हैं वो सुनवा दिए जाएं। भाई दादी वाला गीत तो हमने चुन लिया है, हो सकता है आपके लिस्ट से वो मैच करे, लेकिन नानी

पर आधारित दो गीत हमारे पास हैं। अब आपको ये बताना है कि नानी की नाव आज चलेगी या नानी की मोरनी को मोरों के साथ भेजा जाए। तो आप हमें बताइए, तब तक हम दादी वाला गीत आपको सुनवा रहे हैं। किस फिल्म का ये गीत है ये भी बताइए।

घराना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही नाम बताया। हमारे साथी कहने की आज की इबारत प्रासंगिक और रोचक है और बचपन की स्वर्णिम यादों संग पारिवारिक मनोरंजन के विभिन्न आयाम को दर्शाती है। रेलगाड़ी का सफर हो या सैर सपाटे का जिक्र, बच्चे से लेकर हम उम्र वालों को रोमांचित करता है। इतने रोमांच होता है गर्मियों का कोई असर इस सफर को निरुत्साहित नहीं कर पाता। गांव की गलियों में वो गिल्ली डंडा, लट्टू खेलना, चोर सिपाही खेल याद आते हैं तो आंखें सजल हो जाती हैं। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें याद की। हमारे एक साथी कहते हैं कि हम झरने के पास समंदर के किनारे पश्चिमी घाट के सैरगाहों पर जहां सुकून और शांति दोनों मिलते हैं वहां जाएं, और गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं तो बच्चों को नानी के घर भेजने के बजाय सबको सिक्किम जैसी जगहों पर घुमाने ले चलें जहां के एडवेंचर देखते सब गदगद हो जाएंगे। पहाड़ों पर मिलने वाला गर्म सूप सबको पसंद आएगा। भाई एक अच्छा आइडिया तो है लेकिन नानी के घर की बराबरी तो कोई भी जगह नहीं कर सकती। हमारे एक और साथी कहने की छुट्टियों में दादी और नानी के घर जाना बच्चों वाला सभी बच्चों को पसंद है और हम नानी को बंगाल टाइगर बोलते थे क्योंकि हमारी नानी किसी से भी डरती नहीं थी। बंदर को भगाना हो, चिड़िया पकड़नी हो, चिड़िया को पकड़कर उस पर कलर लगा देती थी। हम लोग भी नानी के यहाँ जाने पर आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ते और जब माली आता तो छोटा पेड़ होने के कारण हम पेड़ से कूद जाते। कभी कभी तो चोट भी लगती थी और बहुत सारे खेल थे, कागज पर चोर पुलिस खेलना, कैरम बोर्ड खेलना, कच्चे गिट्टे बहुत खेलते थे। हार जाने पर कच्चे और गिट्टे फेंक भी देते थे। तो बचपन को असल में इन्होंने याद कर लिया। हमारे एक और साथी कहने कि बचपन में हम चक्का चलाते थे और रेडियो जब बजता था तो ऐसा महसूस होता था कि इसके भीतर बैठे बैठे लोग बोल रहे हैं और हमें आज भी अपना बचपन

0: याद आता है। हमारे एक और साथी बता रहे कि गर्मियों का मतलब फ्रिज में रखी ठंडी ठंडी पेय पदार्थ, मिट्टी के घड़े का पानी, ढेर सारे रसीले आम, रात में छत पर पानी पानी छिड़क कर बिस्तर लगाना और तारों को गिनते हुए सो जाना। ये सुकून आज के एयर कंडीशन में भी नहीं मिलता। जैसा कि आपने जिक्र किया, गिल्ली डंडा छुपन छुपाई पूरा मोहल्ला ही हमारा मैदान होता था और हम दोस्त के घर का दरवाजा हर दोस्त के घर का दरवाजा हमारे लिए हमेशा खुला रहता। बचपन की यादें वाकई किसी मीठे नरम फाहे की तरह है और जो जिंदगी की भागदौड़ में हमें थोड़ी ठंडक दे जाती है। हमारे एक और साथी बता रहे कि सफर में सबसे मजा आता था, ऐसे तो गार्जियन कुछ नहीं खरीदेंगे पर ट्रेन में ये डिब्बे में दूध का मलाई, बर्फ, लेमन जूस, ककड़ी, मूंगफली बहुत बेचने वाले आते थे और हम खूब खरीदते थे और खरीदवाते थे, खाते थे। ऐसा तो जरूर होता था और उन्हें भी मन कर जाता था ना लंबे सफर में कुछ खाने का। हालांकि हमने आपसे पूछा था कि नानी पर दो गाने हमारे पास हैं, तो नानी की नाव चलाएं या नानी की मोरनी की बात होगी, ये हमने आपसे पूछा था। हमारे साथियों ने क्या कहा ये तो हमने देख ही लिया, लेकिन हम सुनवा रहे हैं आपको ये गीत। बताइए किस फिल्म का है।
1: नाव चली नानी की नाव चली, नीना की नानी की नाव चली लंबे सफर पे, आओ चली भागो चली जागो चली, आओ आओ आओ आओ आओ, ये कैसे चले लाओ पैसे चले, खड़े हो जाओ तीन तीन की लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ सब खड़े, ला ला ला ला ला लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में, तुम भी खड़ी हो जाओ जा जा जा जा उधर लाइन में, हाँ तुम भी आओ ना।
2: मेरे पास पैसा नहीं है।
1: पैसे नहीं है तो ये लो, लाओ पैसे और लाइन में खड़ी हो जाओ, जाओ पहले वो तीन फिर तीन फिर दूसरे तीन, तुम भी आओ पहले लाइन में चले आओ, अब शुरू करते हैं, एक दो।
3: नाव चली नानी की नाव चली, नीना की नानी की नाव चली लंबे सफर पे, सामान घर से निकाले गए, नानी के घर से निकाले गए, इधर से उधर से निकाले गए और नानी की नाव में डाले गए।
2: क्या डाले गए?
3: एक छड़ी, एक घड़ी, एक झाड़ू, एक लाड़ू, एक संदूक, एक बंदूक, एक सलवार, एक तलवार, एक घोड़े की जीन, एक ढोलक, एक बीन, एक घोड़े की नाल, एक धीवर का जाल, एक लहसुन ने कालू, एक तोता, एक भालू, एक डोरा, एक दी, एक बोरा, एक बोरी, एक डंडा, एक झंडा, एक हंडा, एक अंडा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा, और टोकरी में एक बिल्ली का बच्चा। फिर एक मगर ने पीछा किया, नानी की नाव का पीछा किया, नीना की नानी की नाव का पीछा किया।
2: फिर क्या हुआ?
3: चुपके से पीछे से ऊपर से नीचे से एक एक सामान खींच लिया, एक बिल्ली का बच्चा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा, एक अंडा, एक हंडा, एक झंडा, एक डंडा, एक बोरी, एक बोरा, एक डोरी, एक डोरा, एक तोता, एक भालू, एक लहसुन कालू, एक धीवर का जाल, एक घोड़े की नाल, एक ढोलक, एक दीन, एक घोड़े की जीन, एक तलवार, एक सलवार, एक बंदूक, एक बंदूक, एक लाडू, एक झाड़ू, एक झड़ी, एक घड़ी।
2: मगर नानी क्या कर रही थी?
3: नानी थी बेचारी बुढ़ी बहरी, नीना की नानी थी बुढ़ी बहरी, नानी की नींद थी इतनी गहरी, इतनी गहरी।
2: कितनी गहरी?
3: नदिया से गहरी, दिन दोपहरी, रात की रानी, ठंडा पानी, गरम मसाला, पेट में ताला, 16.5 पंद्रह पंद्रह, दूना 30 तिया 45 चौके 60 पना 75 छक्के 90 साथी पिछलन 8 20 नंबर 25 गले में रस्सा।
0: आशीर्वाद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, अशोक कुमार की आवाज, गुलजार के बोल, बसंत देसाई का संगीत। कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। हमारे एक साथी बता रही हैं कि मेरा ननिहाल तो लोकल ही था पर मेरी तीन बुआ बाहर रह करती थी, गर्मी की छुट्टियों में सब बच्चों सहित आते थे, तब हम लोग चिट्ठी लिखकर पता करते थे कि कब वे आ रहे हैं, खूब प्लानिंग करते थे, मोहल्ले के बच्चों के साथ मिलकर खूब मस्ती करते थे, तरह तरह के खेल खेलते थे, सुबह सब मिलकर मॉर्निंग वॉक पर जाते, एक घर के सहायक थे हम लोगों के साथ रहते थे, मेरे पिताजी वकील थे और कोर्ट में भी 2 महीने की छुट्टी होती थी, उनका ऑफिस भी खाली रहता था जो घर के पास ही था, दिन में बाहर धूप होने के कारण सब वहीं इकट्ठा होते थे, फिर खूब धमाक चौकड़ी मचती थी, लड़ते भिड़ते रोते हंसते सब अपने अपनी समस्या का समाधान कर लेते थे, वो दिन बहुत याद आते हैं, वाकई वो दिन बहुत याद आते हैं, जब छोटे रहते हैं तो कुछ इतनी ज्यादा चीजें

सोचते नहीं हैं, अभी लड़ाई होती है और अभी मिल जाते हैं और अपने मन में कोई बातें इस तरह से नहीं पालते। हालांकि हमने नानी के बारे में जब पूछा कि कौन सा गीत सुनाया जाए तो दोनों ही गीतों की फरमाइश आई और कहा गया कि वे दोनों ही गीत सुनने चाहिए। आशीर्वाद फिल्म का गीत आपने सुना, सही जवाब हमारे साथी ने दिया और हमारे साथी कह रहे हैं कि बात तो समय की है, जब हम अपने दोस्तों को घर से बाहर खेलने के लिए बुलाया करते थे उसके भी कोड वर्ड हुआ करते थे, सीटी बजाना, कोयल की आवाज, टक टक की आवाज निकालना आदि, वो सब आवाज मेरे अंदर बैठी है, बैठा मेरा दोस्त सुन लिया करते थे और तुरंत बाहर खेलने आ जाया करते थे। तो इस तरह से होता था ये काम कि किस तरह से, क्योंकि घर से बाहर निकलने की मनाही होती थी धूप में। हाँ, हालांकि नानी की इतनी बातें हो रही हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना दोनों ही गीत आपको सुनवा दिया जाए। तो ये सुनवा रहे हैं दूसरा गीत, बताइए किस फिल्म का ये गीत है। और इसी नाम से एक और फिल्म बनी, उसमें भी बच्चों का एक गीत है, अगर आप वो भी बता सकें तो क्या ही अच्छा होगा।

मासूम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे रानू मुखर्जी की आवाज में। और हमने ये पढ़ा, हमारे साथियों ने कमेंट किया हुआ था कि भाई नानी का एक गीत तो सुनवा दिया लेकिन दूसरा गीत आपने नहीं सुनवाया। और हमारे बहुत से साथी तो रूठने का प्लान बना रहे थे लेकिन ये अच्छा हुआ कि उनका प्लान नहीं बन पाया, क्योंकि छुट्टियों में नानी की बातें दो बार ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। वही हमारे साथी ने बहुत साथी बहुत सारी बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि दूसरे दूसरे गीतों की फरमाइश भी कर रहे हैं, लेकिन देखिए क्योंकि शब्द जो हों उनसे आधारित गीत ही हम सुनवा सकते हैं। हमारे एक और साथी ने बताया कि परिवार की बात चल रही है तो भाभी जी को ट्रेन से बुलवा लीजिए और मामा जी को रॉकेट पर घूमने चलते हैं। भाई दोनों काम करेंगे तो नानी जी के घर पे कौन रहेगा, तो इसलिए अभी इस कार्यक्रम में हम बता रहे हैं कि हमारी एक साथी कह रही है कि आज जीवन का संध्या समय सुनहरे बचपन की मासूम अलहड़ बातें याद करने से सुखमय हो जाता है। प्रदूषण रहित सृष्टि का सानिध्य, नदी में नहाना, मछलियां देखना, नीम के पेड़ पर बंधे झूले पर झूलना, अलग अलग तरह के पशु पक्षी देखना, विशाल वट वृक्ष की छाया में नानी के हाथ का घर

ना मक्खन और रोटी का नाश्ता। अमराई के आम खाते खाते सभी रिश्तेदार भाई बहनों के मेले में छुट्टियां कैसे गुजर जाया करती थी पता ही नहीं चलता था। वाकई वो दिन किस तरह से गुजरते थे हमें पता नहीं चलता था, शायद इस वजह से भी गर्मियों की जो छुट्टियां हुआ करती थी वो बड़ी छोटी लगती थी। हमारे साथियों ने बताया कि एक दूसरा जो मासूम फिल्म है वो भी है, लेकिन हमारे साथी थोड़ा ज़्यादा दोनों मतलब उन्होंने गीत पसंद किए, क्योंकि मासूम नाम से तो तीन फिल्में बनी हैं। और हमारे एक साथी ने बताया कि मासूम में लकड़ी की काठी वाला गीत है, और एक और साथी ने बताया छोटा बच्चा जान के कोई ना आंख दिखाना दे, ये भी मासूम फिल्म का ही गीत है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कांच का कंचा, माचिस की अलग अलग छाप वाली, लोहे का पहिए को सरिये से चलाना, हाथों में चलने वाली तार की दो पहियों वाली से जुड़ा हुआ ऊपर तक छोटा स्ट्रिंग वाली हाथों से चलाकर तार की गाड़ी मैंने अपने हाथ से बनाई थी। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आशीर्वाद फिल्म का गीत आपने सुनाया, बिल्कुल सही आपने बताया, और इसके बाद मासूम फिल्म का गीत भी हम सुन चुके हैं। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि घर में ही खेलने के लिए अंताक्षरी, लूडो, चोर सिपाही, वजीर बादशाह, कैरम, 3-2-5 आदि खेलों से नाना नानी, मामा मामी, मौसी सभी दिल बहला लेते थे। शाम को 4 बजने की प्रतीक्षा रहती थी। एक और साथी कहने कि नानी की डांट तो नहीं पड़ी, पर उनका वो 54, 58 और 1 रुपए वाला बड़ा याद आता है कि जाओ कुछ लेकर खाना, और वो फ्रॉक के लिए उनका कपड़ा लेकर आना, अच्छी तरह से सिलवाना मम्मी से। दादी भी नहीं डांटती थी, प्यार ही ज्यादा पाया। हाँ, कभी कभी हम गीले पोछे पर चलते और भाई बहन लड़ते तो जरूर कोई ना कोई पीटता। दोनों ने डांट तो नहीं खाई, सीधा पिटाई खाई है, लेकिन काम भी कुछ ऐसा ही रहा है, तो इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। बस हम कर सकते हैं एक काम कि कुछ खेलों को याद कर लें। चलिए सुनाते हैं आपको ये खेल से जुड़ा गीत। हमें बताइए कि किसने लिखा है ये गीत और किस फिल्म से हमने लिया।

0: की पाया खोली।
1: किसने?
0: मैंने?
1: नहीं तो

ड्रीम गर्ल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। फिल्म का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे एक साथी कह रहे हैं, नहीं लेकिन इससे पहले आपसे एक सवाल पूछ लें। देखिए, इस गीत में कई बार ये कहा गया कि अच्छी तरह से किया नहीं गया, जब वो छुपन छुपाई खेल रहे हैं तो अच्छी तरह से आंख बंद नहीं की और चुपचाप देख लिया गया, वहीं जब उसे ढूंढ लिया जाता है तो भी कहा जा रहा है कि हम इस बात को नहीं मानते। तो इस तरह का खेल में कौन किया करता था? कि आप में से कोई ऐसा है जो ये किया करता था, खेल में एक बार पकड़े जाने के बाद कहता था कि हम नहीं मान रहे या हम नहीं खेल रहे, और इस तरह से रूठ जाता था, या घर के बड़ों को बुला के ले आता था कि भाई देखिए ये हमारे साथ इस तरह का काम करे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं। तो क्या आप ऐसा करते थे, थोड़ी बड़ी बेईमानी करते थे खेल में, हमें बताइए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में हमारे मामा लोगों ने कॉमिक्स बहुत सारी इकट्ठी करके उनको बाइंड करके रखा था, तो दोपहर में तो कहीं निकलने का सवाल ही नहीं था, हम लोग तो बस उसे ही पढ़ते रहते थे। हमारे एक साथी याद कर रहे हैं अपनी नानी को, जो एक पैसों की थैली अपनी कमर में खोंस कर रखती थी। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हाथ का पंखा भी झला है, पंखे का फ्रेम आता था, उसे हमने क्रोशे से बनाया है। गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल में जब लाइट नहीं थी तो गर्मी लगने पर हम दालान में लगे नीम के पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते थे और अपनी हमउम्र मौसियों के साथ बड़े मजे करते थे। हमारे एक साथी ने सत्य घटना बताई कि बरसों पहले रेलवे स्टेशन पर पानी पीने के लिए एक छोटी सी रूप में बड़े मटके और लंबी मिट्टी की पानी का बर्तन, जिसे कोठी गुजरात में कहा करते हैं, कोई बुजुर्ग बैठे मुसाफिरों को गिलास में पानी पिलाते थे, कोई 2-3-5-10 पैसा देते थे, निःशुल्क रेलवे की तरफ से व्यवस्था होती थी। स्टेशन में छोटी आधी गोल टंकी होती थी, ऊपर पानी का नल को दबाकर खड़े खड़े पानी पी सकते थे, तो नल के ऊपर का गोला उसे दबाते थे तो पानी आता था। मैंने बचपन में देखा था, एक बार एक बुजुर्ग दादा पानी पी रहे थे तो उनकी तरफ छिप गई और फिर वो बोल रहे थे कि बस अब नहीं, बस अब नहीं, लेकिन वो पानी बंद ही नहीं हो रहा था। तो उसके बाद उन्हें हमने बताया कि गोला छोड़ेंगे तो पानी रुकता है, तो किसी ने आवाज दी, दादा आप नल की वो गोले को छोड़ दीजिए, तभी पानी अपने आप रुक जाएगा। और पुराने जमाने में बुजुर्ग लोग ऐसे भोले भाले होते थे, ऐसा हमारे साथी ने बताया। हमारे एक और साथी बताने कि रात की छत, खुले आसमान के नीचे चारपाइयों पर लेटना, तारों को गिनना, सूरज ढलते ही मैदान आबाद हो जाते थे, ना कोई होमवर्क की चिंता, ना सुबह जल्दी उठने का डर, बस गलियों में क्रिकेट, पकड़ कड़ाई या गिल्ली डंडा, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी वाली बात तो अपनी जगह है, लेकिन वो धूप में तपती दोपहरी वाली मस्ती भी एक अलग ही किस्म का सुकून देती है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि गर्मी की छुट्टी का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता था, क्योंकि नानी के घर जाते थे, वो भी रेलगाड़ी से, उस पर भी यदि विंडो सीट मिल गई तो फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती थी, लेकिन भाई बहनों से लड़ाई भी होती थी और फिर बारी बारी से सब बैठते थे, सैर सपाटा, पिकनिक, बाग बगीचा, सब कुछ जैसे पीछे छूट गया, क्योंकि अब तो स्वरूप भी बदल गया बहुत सारी चीजों का। और एक साथी कहती है कि गर्मी की छुट्टी का और रेलगाड़ी का बहुत पुराना नाता है, बचपन में जब गर्मी की छुट्टी होती थी तो हम कैसे खुश हो जाते थे कि अब नानी दादी के गाँव जाने को मिलेगा, वे दिन सैर सपाटे के थे, अब कहाँ चले गए पता नहीं चला। और हमारे साथियों ने बहुत से गीतों के बारे में लिखा है कि कौन कौन से गीत हो सकते हैं, आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपके लिस्ट में से कितने गीत आज के इस कार्यक्रम

सुजाता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और गीता दत्त की आवाजों में। हमारे साथी कह रहे कि पहले के समय में फिल्म देखकर जो आते थे उसकी स्टोरी सुनाने का भी तो रिवाज था। हाँ, ये रिवाज तो अब भी बना हुआ है। और हमारे कर साथी कह रहे कि मेरे गानों की लिस्ट में से 6 गाने बच चुके हैं, किसी की लिस्ट में 4 में से 2 गाने शामिल हो चुके हैं, तो किसी की लिस्ट में से कुछ गाने शामिल हुए हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जो आगे के गाने आएंगे वो उनकी लिस्ट के गानों में से ही होंगे। हमारे एक साथी कहने कि गर्मी की छुट्टियां बचपन की सबसे मीठी यादों का खजाना होती है। जैसे ही छुट्टियां शुरू होती मन में नानी के घर जाने की खुशी उमड़ पड़ती थी। रेलगाड़ी का सफर अपने आप में एक उत्सव सा लगता था। खिड़की से भागते पेड़, खेत, छोटे छोटे स्टेशन और कुल्हड़ वाली चाय आज भी यादों में मुस्कान भर देती है। आज समय बदल गया है लेकिन गर्मी की छुट्टियों के वे मधुर स्मृतियां आज भी मन को ठंडी छांव जैसा सुकून देती है। वहीं हमारे एक साथी ने लिखा है कि आजकल के बच्चे मोबाइल के मिसयूज में लगे रहते हैं, पूरे टाइम स्क्रीन में लगे रहते हैं, वो तो ये सारी गर्मी की छुट्टियों का आनंद नहीं लेते। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी सोचना होगा कि इसमें हमारी भी तो कोई गलती है, क्योंकि अगर हम उन्हें ये नहीं बताएंगे कि क्या क्या किया जा सकता है तो वो तो जो सामने आएगा वही सीखेंगे। वहीं हमारे एक साथी कह रहे कि जब छोटे थे तब वेकेशन में नाना नानी या दादा दादी के घर जाते थे, ट्रेन में सबसे पहले खिड़की वाली सीट को हासिल कर लेते थे, पेड़ को पीछे की ओर जाते देखने में मजा आता था। मन में सवाल ये भी उठता था कि सूरज गाड़ी के साथ क्यों और कैसे आता जाता है। ट्रेन में खाने पीने की चीज लाने वाले सेल्समैन को देखकर लालच भी होता था, पर असली मजा तो घर से लाए हुए थेपले और अचार में ही आती थी। अरे, आप जब ट्रेन का सफर करते थे तो क्या लेकर जाते थे अपने साथ खाने के लिए, ये हमें बताइए। तब तक हम आपको ले चलते हैं ट्रेन के सफर पर। बताइए किस फिल्म का

परिणीता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा, आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे साथी कह रहे हैं कि खेलों में एक बेईमान का होना एक अलग ही मजा देता था। वाद विवाद ना हो तो क्या बचपना। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कई बार बहुत सी मतलब बेईमानी तो थोड़ी बहुत करते थे, लेकिन बाद में कह दिया करते थे कि उन्होंने झूठ बोला है। तो इस तरह की मासूम बेईमानियां होती थी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम लोग घर से चावल, भुजिया, रोटी, आलू की भुजिया, गुजिया, ठेकुआ, चिप्स, बहुत सारा खाना लेके जाते थे, पेपर ले जाते थे, पानी ले जाते थे। भाई जो जाते थे इतनी खुशी होती थी, पर जब वापस आना होता था तो बड़ा दुख होता था। लेकिन क्या करें, उसके लिए भी तैयारियां होती थी नानी की तरफ से या दादी की तरफ से, जहां भी हम जाते थे। और मन में कुछ टीस की भाव होते थे, क्योंकि अगर गाड़ी हो सवेरे की तो जाना होता था। चलिए सुनते हैं वो गीत, बताइए किस फिल्म का।

लैट साहब फिल्म का ये गीत आपने सुना, और जैसा इसमें कहा गया भी, समय जब होता है तो जाना ही होता है, तो छुट्टियां खत्म होती है तो हम भी लौटते हैं, और कार्यक्रम का वक्त भी हो चुका है तो हमें भी इस कार्यक्रम से लेनी होगी इजाजत। आप सभी बने रहिए विविध भारती के साथ, क्योंकि विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहता है 24 घंटे।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 28वीं कड़ी।

बंग भंग विरोधी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पहलू था स्वदेशी जागरण, और इस मुहिम में युवा वर्ग के प्रेरणा स्थान थे शिक्षाविद एवं समाज सुधारक के रूप में ख्याति प्राप्त अश्विनी कुमार दत्त। इस आंदोलन में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अश्विनी कुमार जी के कहने पर कवि हृदय के यज्ञेश्वर नामक एक दुकानदार ने एक अनोखा ही जनजागरण शुरू किया। पहाड़ी शैली में अलग अलग गीत रचकर वे गाया करते थे। गांव गांव घूमकर पूरे बंगाल को वे जागृत करने लगे। अश्विनी कुमार दत्त जी ने उन्हें एक नया नाम दिया, चारण मुकुंद दास। मुकुंद दास गांव गांव जाकर छोटे छोटे गली मोहल्लों में देहात के बीच बनी चौपाल पर, नदियों के घाट पर अपने गीत प्रस्तुत कर इस स्वदेशी आंदोलन का संदेश लोगों तक पहुंचाने लगे।

समय में चारण मुकुंद दास बंगाल के एक लोकप्रिय व्यक्ति बन गए। ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाएं जो कभी घर के बाहर भी नहीं निकलती थीं, उन्हें भी चारण मुकुंद दास की कविताओं ने जागृत किया। स्वदेशी चूड़ियां पहनने का आह्वान करते हुए मुकुंद दास जी कहते हैं।

हे बंगाली स्त्रियों, तुम ये कांच की चूड़ियां कभी इस्तेमाल न करो। तुम सब गृह लक्ष्मी हो, धर्म साक्षी हो, ये सारी दुनिया जानती है। कांच की माया को छोड़ शंख के आभूषण पहनकर सौभाग्य चिन्ह धारण

0: to Hashi, Kapuk Medini Pimpada Kate Bande Mataram, Bande Mataram.
1: ये वो समय था जब स्वदेशी का प्रचार अपने चरम पर था। मातृ भंडार अर्थात मायेर वस्त्र, इस नाम से स्वदेशी वस्त्रों का निर्माण होने लगा। मुंबई और कर्णावती में 20 नई कपड़ा मिले तथा 15 स्वदेशी बैंक शुरू किए गए। बंगाल में विदेशी वस्त्रों की बिक्री एक ही साल में 77,000 से घटकर 10,000 पर आ गई।
2: वंदे मातरम की अग्नि ब्रिटिश सरकार महसूस करने लगी। 7 अगस्त को हुई सभा के अवसर पर इस गर्जना का अवतरण हुआ और मात्र 3 महीनों में इस घोषणा ने ब्रिटिश सत्ता के मन में डर पैदा कर दिया। ट्रिब्यून नामक समाचार पत्र ने लिखा, वंदे मातरम ये शब्द लोकप्रिय हो गए हैं। माता का वंदन, इतना ही उसका अर्थ है, उसमें कोई और भयंकर अर्थ है ही नहीं। फिर इन शब्दों पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है? यहां पढ़े लिखे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, वंदे मातरम कहकर अभिवादन करते हैं। पूरे हिंदुस्तान के लोगों के मुख से निकलने वाले वंदे मातरम शब्दों पर रोक लगाने के लिए सरकार को कितने सिपाही और अधिकारियों की आवश्यकता होगी? बंगाल के सभी लोगों को पूरे हिंदुस्तान की जनता का समर्थन प्राप्त है।
1: बंगाल के विभाजन ने केवल बंगाल को ही नहीं पूरे देश को जगा दिया। इस लड़ाई के बहाने भारतीय जनता की एक बार फिर एकजुटता दिखाई दी। हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव कर उनके बीच झगड़ा कराने का ब्रिटिशों का मकसद बहुत सफल नहीं हुआ। बैरिस्टर अब्दुल रसूल, मौलवी अब्दुल कासिल, अब्दुल हुसैन, दीदार बख्श, लियाकत हुसैन जैसे कई प्रमुख मुस्लिम नेता कर्जन के आह्वान का खोखलापन उजागर करते हुए मुस्लिम

0: को बताया। लेकिन लंदन की सत्ता किचनर के पक्ष में होने के कारण लॉर्ड कर्जन ने वॉइसरॉय पद से इस्तीफा दे दिया। एक तरह से यह बंग भंग विरोधी आंदोलन की ही जीत थी।
1: लॉर्ड कर्जन की जगह लॉर्ड मिंटो की नियुक्ति हुई, पर उन्होंने भी बंगाल के विभाजन को मान्यता दी। बंगाल में दमन चक्र वैसे ही चलता रहा। दिसंबर 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए और वापस भी चले गए। आम जनता के स्तर पर उनका बहुत बड़ा स्वागत नहीं हुआ। 1976 में वंदे मातरम की शताब्दी मनाने की पहल करने वाले वंदे मातरम के अध्ययनकर्ता विश्वनाथ मुखर्जी इन सभी घटनाओं के बारे में लिखते हैं।
2: कांग्रेस का जन्म होने के काफी पहले, जब वंदे मातरम गीत का जन्म नहीं हुआ था, उन दिनों सन 1872 में बंग दर्शन पत्रिका के संपादकीय में बंकिम बाबू ने लिखा था, भारतवर्ष की विभिन्न जातियां जब तक एक मत, एक परामर्श और एकोद्योगी नहीं होंगी, तब तक भारतवर्ष की उन्नति नहीं होगी।
0: बंकिम चंद्र जी का यह कथन सच होने जा रहा था। अलग अलग प्रांतों के निवासी एक होकर ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध हो रहे थे। वंदे मातरम गीत का कितना प्रभाव पड़ा था, इसका उदाहरण श्री मोतीलाल नेहरू के एक पत्र से मिलता है, जो उन्होंने 1905 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के नाम लिखा था।
2: हम ब्रिटिश भारत के इतिहास की सबसे अधिक संकटपूर्ण अवधि से गुजर रहे हैं। इलाहाबाद में भी वंदे मातरम आम अभिवादन बन गया है। यदि अभियान चलता रहा तो यहां लौटने पर भारत को जब तुम गए थे उससे बिल्कुल बदला हुआ पाओगे।
0: यह सारा प्रभाव था वंदे मातरम इन दो शब्दों का।
3: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

0: वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 28वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबू धाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: ये किसी भी रूप में स्वीकार करना नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विनम्रता का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबू धाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
2: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉ. जयशंकर ने कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
4: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग्ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कम्प्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
5: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
4: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
6: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा।
4: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
7: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
4: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जनकल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के चार भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी दो बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
8: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउत विदत्सरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार

0: ऑस्ट्रेलिया ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
1: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेन्द्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

सदाबहार गीतों की बहार लिए कार्यक्रम के सदाबहार गीतों में हम आज सदाबहार नगमे कार्यक्रम के साथ हम हाजिर हैं। आजाद फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत। आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे आप सुन सकते हैं गीतों भरी कहानी में श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी जीवन एक सरल रेखा। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का ये गीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में बारादरी फिल्म का गीत आपने सुना। खुमार बाराबंकवी ने इसे लिखा, शौकत दहलवी नौशाद का संगीत इस गीत में आपने सुना। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत फिल्म उड़न खटोला के इस गीत में।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का गीत आपने सुना मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर की तर्ज आवाज गीता दत्त मोहम्मद रफी की। और अगर आपको पुराने गाने सुनते सुनते नए गाने सुनने का मन करता है और नए गाने सुनते सुनते आप पुराने गाने सुनना चाहते हैं तो आपके लिए भी है एक कार्यक्रम हमारे पास। शाम 5:30 पर रोजाना आप सुन सकते हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने, जिनमें पुराने और नए गानों को मिलाकर ही तैयार की जाती है लिस्ट गानों की। तो आप सुनिएगा ये कार्यक्रम आज भी और रोजाना। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का ये अगला गाना।

ओपी नैयर के संगीत से सजा ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा जानिसार अख्तर ने, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में आपने सुना सीआईडी फिल्म का ये गीत। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कौन सा कार्यक्रम कब आएगा विविध भारती पर, इसके लिए आपको सीआईडी की तरह पड़ताल करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल भी नहीं, आप सुबह और शाम 6:30 से सुन सकते हैं कार्यक्रम विवरण झरोखा के अंतर्गत। सुबह के झरोखा में बताए जाते हैं दिन भर के प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण, वहीं शाम के झरोखा में आप सुन सकते हैं शेष कार्यक्रमों के साथ साथ अगले दिन के सभी मुख्य कार्यक्रमों का विवरण भी। और अब हम दे देते हैं आपको विवरण अगले गीत का, जो है बारिश फिल्म से, आशा भोसले और सी रामचंद्र की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत।

0: शादी।
1: अरे हेलो हेलो हेलो।
2: राजा मेहदी अली खां का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। नाशाद का संगीत, आशा भोसले की आवाज, बड़ा भाई फिल्म का ये गीत आपने सुना। रोजाना शाम को 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत सजते हैं अलग अलग कार्यक्रम के रंग, और आज आप सुन सकते हैं गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता इस श्रृंखला के अंतर्गत 7:45 से। और इस वक्त सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का की तर्ज है। न्यू दिल्ली फिल्म से सुनिए ये गीत।

0: इसके साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा, मुझे दीजिए इजाजत।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: सखियों, भावनाएं जब शब्दों का हाथ थामती हैं, तब रिश्तों में अपनापन खिल उठता है। जब दिल बोलता है तो शब्द केवल आवाज नहीं, आत्मा का संगीत बन जाते हैं, है ना? अपने परिजनों से दिल की बात साझा करना मानो बंद खिड़की से ताजी हवा का भीतर आना है। और विविध भारती भी अपना एक भरा पूरा परिवार है, तो आज अपनी सखियों से बातें करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद है मैं आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक। और इस चिलचिलाती गर्मी में आपके फोन कॉल्स देंगे हमें सुखद एहसास, तो जल्दी से फोन घुमाइए, देखते हैं कौन सी सखी का पहला फोन आता है। और ये बजी घंटी और ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सहेली बात कर रही हैं आप?
1: मैं विनीता पाठक बोल रही हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से। सोनाली जी, मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी और अब जाके मेरा नंबर लगा है।
0: बहुत बहुत बधाई। और पहली बार आपका कॉल लगा है?
1: जी जी जी, पहली बार मेरा कॉल लगा है
0: जी। तो विनीता जी, बताइए अपने बारे में बताइए।
1: सोनाली जी, मैं यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, जैसा कि मैंने बताया, और यहाँ पर मैं मिलेट्स से रिलेटेड बेकरी आइटम बनाती हूँ। बेकरी में सभी लोग कुकीज पे तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन हम डेली रूटीन में काम आने वाली ब्रेड, पाव, पिज्जा बेस, बर्गर, हम ये बना रहे हैं ताकि जो टीन एजर्स बच्चे हैं वो अपनी चॉइस का पिज्जा और ये सब खाएं, तो हेल्दी बेस के साथ खाएं।

0: तो हम इस पे काम कर रहे हैं।
1: क्या बात है, मिलेट्स यानी फिर रागी है, जवार है, बाजरा है, इनसे बनी बेकरी आइटम्स आप बनाते हैं ना?
0: जी,
1: ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर किसी को चटपटा खाना पसंद होता है, पर हम थोड़ा सा डर जाते हैं कि उसमें मैदा होगा या वनस्पति घी होगा तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। पर आप जो इस तरह से मिलेट्स का इस्तेमाल करके बेकरी आइटम बना रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। विनीता जी, आज 15 तारीख है, 15 मई है, आज परिवार दिवस है, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि परिवार की क्या अहमियत है आपके जीवन में?
0: परिवार सभी के लिए बहुत अहमियत रखता है। हम आजकल जो छोटी फैमिली हो गई है उसके बहुत सारे लॉसेज हैं, जैसे मेरे मम्मी पापा बहुत कम एज में डेथ हो गई थी, तो हम भाई बहन एक साथ हो गए और हम बड़े से बड़ी मुसीबत को आसानी से निकाल ले जाते हैं, और कोई छोटा सा भी पर्व हो उसमें हम लोग सब इकट्ठा होकर बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, और हमारे साथ साथ हमारी जो अगली पीढ़ी है, हमारे बच्चे आपस में मिल के मतलब चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, वो वहां तक जा रही है, तो वो लोग भी अब इतना समझ में आने लगा है कि नहीं, फैमिली तो होना ही चाहिए, नहीं तो आप अकेले पड़ जाओगे। तो हर खुशी के मौके में बहुत ही अच्छा लगता है जब हम सब एक साथ होते हैं।
1: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही। और साथ में जो वर्किंग महिलाएं होती हैं, जैसे आप कुछ काम कर रही हैं, तो उस वक्त जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं उस वक्त दादा दादी नाना नानी का उन्हें सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है, तो बहुत खुशी मिलती है कि चलो हम बाहर हैं तो घर में तो कोई है हमारे बच्चों को संभालने के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी बहुत निश्चिंत होकर बेफिक्र होकर मैं काम पे निकल जाती थी, क्योंकि घर में दादा दादी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे देवर हैं, हम लोग सब भी साथ में रहते थे, तो बच्चा कब बड़ा हो गया, कैसे बड़ा हो गया और इतनी अच्छी परवरिश के साथ बड़ा हुआ, तो वो सभी संभव है जबकि हम परिवार के साथ होते हैं। जी
1: क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। विनीता जी बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ये 1973 की एक मूवी है, यादों की बारात। हाँ जी, तो ये मुझे गाना बहुत पसंद है, इसे आशिया जी और मोहम्मद रफी सर ने गाया है और जीनत अमान और विजय अरोड़ा पे फिल्माया है, तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है, तो अगर ये सुना देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
1: जी विनीता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: बताइए कौन सहेली बात कर रही हैं?
1: जी, मेरा नाम वर्षा धगट है जी। मैं वैसे तो मुंबई की हूँ, पर अभी फिलहाल छुट्टियों पर जबलपुर आई हुई हूँ, मध्य प्रदेश में।
0: क्या बात है, यानी आप मायके गई हुई हैं।
1: बिल्कुल सही पहचाना आपने, मायके आई हुई
0: यानी
1: हूँ।
0: मायके का लुत्फ उठा रही है माँ के साथ में ना।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने।
0: अच्छा वर्षा जी, बताइए आपके बारे में बताइए।
1: सोनाली जी, मेरे बारे में बस क्या बताऊं, मैं वैसे एक्ट्रेस हूं, टीवी टेलीविजन करती हूं, और हाल ही में मेरी एक फिल्म भी रिलीज हुई है, और इसके अलावा मैं प्रोफेशनल एंकर भी हूं, म्यूजिकल शोज होस्ट करती हूं, और थोड़ी सिंगिंग भी कर लेती हूं।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: थैंक यू।
0: और आज 15 मई है, आज परिवार दिवस है, तो मैं वर्षा जी आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि परिवार की आपके जीवन में क्या अहमियत है?
1: सवाल वाकई बहुत अच्छा सवाल किया सोनाली जी आपने। और परिवार की अहमियत, मेरे ख्याल से परिवार के बिना तो हर कोई अधूरा है, और शादी जैसे ही होती है और हमारी एक अलग दुनिया बस जाती है, और परिवार हमारे ख्याल से हमारे लिए सबसे जरूरी होता है, और परिवार के लिए मेरे ख्याल से हर स्त्री अपना पूरा जीवन दे देती है।
0: चाहे फिर वो ससुराल हो या मायका हो, है ना।
1: बिल्कुल, ससुराल वालों के साथ भी रहते हुए और मायके वालों के साथ भी वो दोनों ही तरफ बड़े अच्छे से एडजस्ट करती है।
0: और
1: ये हर
0: सचमुच
1: महिला, मेरे ख्याल से भारत की हर महिला का यही किरदार होता है। जी
0: और परिवार का अगर हमें साथ मिलता है ना, तो
1: जी
0: हम यानी हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि हमें डर नहीं होता है कि अरे हमारा क्या होगा, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ कोई तो है ना।
1: ये आपने 100% सही बात कही कि जैसे हम अपने लेडीज जो भी कर पाती हैं, जैसे शायद आप ये जॉब कर पा रही हैं, ये भी आपके परिवार की स्वेच्छा से ही आप और उनके मोटिवेशन से ही शायद आप इधर तक पहुंची। एम आई राइट?
0: बिल्कुल सही कहा आपने, उनके बिना ये कल्पना ही नहीं हो सकती कि उनके सपोर्ट के बिना हम महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती। बहुत संबल
1: जी
0: मिलता
1: जी
0: है जब परिवार का साथ होता है हमें।
1: बिल्कुल, हर महिला को खास तौर पर पति का सपोर्ट मिल जाए तो पत्नियां बहुत कुछ कर सकती हैं। जी
0: जी बहुत सही बात आपने कही, और आपकी बात सुनकर बहुत सारे लोग प्रेरित भी होंगे कि अगर हम अपने घर की महिलाओं को सपोर्ट करेंगे तो हमारी महिलाएं भी, हमारे घर की जो परिवार की महिलाएं हैं, वो बहुत आगे बढ़ेगी।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली जी आपने। जी
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और वर्षा जी बताइए, आपके पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जी पसंद के गीत तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल मैं ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: क्या नाम है सहेली जी आपका?
1: प्रगति मुड़े।
0: प्रगति मुड़े जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: नांदेड़ से।
0: नांदेड़ से फोन लगाया। प्रगति जी, आपके बारे में बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं घर पे हूँ अभी।
0: हाउस वाइफ हूँ।
1: हाँ।
0: मैं हाउस वाइफ को प्रगति जी हाउस क्वीन कहूंगी, है ना, क्योंकि वे घर परिवार की जिम्मेदारी कितनी खूबसूरती के साथ निभाती हैं। आपके कारण घर के जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, काम पे जाते हैं, घर पे आते हैं तो सुकून की सांस लेते हैं कि देखिए कोई तो है घर में हमारा ख्याल रखने के लिए, है ना। और आज है परिवार दिवस, तो प्रगति जी आपके जहन में परिवार की क्या महत्ता है, यानी आपके लिए परिवार का कितना महत्व है आपके जीवन में?
1: परिवार का महत्व तो बहुत रहता है, परिवार के बिना तो कुछ नहीं होता।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने कि परिवार अगर साथ है तो हम महिलाएं हर काम बड़ी आसानी के साथ, खूबसूरती के साथ कर सकते हैं। तो बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: हाँ, मैं काम चोर मूवी का तुझे संग प्रीत लगाई थी।
0: बहुत सुंदर गाना है। और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: हाँ।
0: कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपको?
1: मैं तो न्यूज सुनती हूँ, न्यूज चैनल।
0: अरे वाह। और सखी सहेली सुनती है?
1: सखी सहेली सुनती हूँ
0: और हेलो सहेली भी सुनती है?
1: और हेलो सहेली
0: जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। तो चलिए, धन्यवाद।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: कौन सहेली बात कर रही हैं?
1: मैं साक्षी खिरवड़कर बोल रही हूँ
0: साक्षी जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: जी। मैंने भोपाल से फोन लगाया है, मध्य प्रदेश
0: साक्षी जी, जरा अपने बारे में बताइए।
1: जी। मैं गृहिणी हूँ, अपना घर संभालती हूँ अच्छे से और बस अपने आप में खुश रहती हूँ, बढ़िया रहती हूँ,
0: क्या बात है, बहुत
1: इसके लिए
0: अच्छी
1: समय
0: बात।
1: निकालती हूँ बहुत अच्छे से।
0: साक्षी जी, आज है परिवार दिवस, 15 मई को हम परिवार दिवस मनाते हैं, तो मैं
1: जी।
0: आपसे जानना चाहूंगी कि परिवार का क्या महत्व है आपके जीवन में?
1: परिवार का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। परिवार है तो हम सुरक्षित रहते हैं, खुश रहते हैं, उनके बिना तो फिर कुछ है ही नहीं, उन्हीं के
0: जी
1: आसपास हमारी पूरी दुनिया घूमती है। बहुत
0: जी
1: महत्व है सभी के लिए जी
0: सचमुच, यानी परिवार ही हमारे जीवन का आधार है ना।
1: जी
0: और हम महिलाओं को खासकर बहुत संबल मिलता है जब परिवार का सपोर्ट मिलता है ना।
1: जी जी बहुत
0: और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: जी बिल्कुल, शुरू से सुनती हूँ, सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है
0: कौन सा कार्यक्रम आपको पसंद है?
1: मुझे। हेलो सहेली, सखी सहेली, बहुत अच्छा लगता है सुनना।
0: तो चलिए बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहती हूँ लग जा गले
0: अरे वाह, बहुत सुंदर गाना आपने चुना है,
1: जी।
0: तो सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: क्या नाम है आपका?
1: अंबिका विजय मारवाड़ी
0: जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: शिरपुर से।
0: शिरपुर से फोन लगाया जी।
1: हाँ,
0: क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं मेस चलाती हैं।
0: क्या बात है, बहुत
1: हाँ,
0: अच्छी बात है। ये तो
1: हाँ,
0: बहुत अच्छी बात है कि आपके कारण कितने सारे लोग जो हैं उन्हें पेट भर खाना मिलता है ना। जी, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। और इसमें मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें आपको बहुत खुशी मिलती है जब कोई आपके?
1: हाँ, खुशी मिलती खाने को आते जाते, वो अच्छा खाना बनाया बोलते, कभी कम ज्यादा हो जाता।
0: और सचमुच जब कोई हमारे खाने की तारीफ करता है ना, तो हमारी जो थकान है ना, वो छूमंतर हो जाती है ना।
1: हाँ, खाने की तो अच्छे से अपनी थकान जाती, सब अच्छे बोलते खाने का।
0: हाँ, यानी अगर किसी ने तारीफ कर दी कि अरे कितना अच्छा खाना बनाया, तो हम सचमुच खुश हो जाते हैं और हमें
1: हाँ,
0: बिल्कुल भी ऐसा
1: खुश
0: नहीं
1: हो
0: लगता कि
1: जाते,
0: मैं इतनी थक गई थी, है ना।
1: मेहनत मेहनत से फल मिलता, ऐसा हो जाता।
0: हाँ बिल्कुल, मेहनत का फल तो मीठा होता ही है।
1: हाँ
0: और रेडियो सुनती हैं आप?
1: हाँ
0: कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगता है आपको?
1: तो हेलो फरमाइश,
0: हेलो फरमाइश।
1: गाने सुनते हो? क्यों रहता रेडियो दिन
0: दिन भर रेडियो चालू
1: भर?
0: रहता है। बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: अनाड़ी पिक्चर, मतलब
0: अनाड़ी फिल्म का कौन सा गीत?
1: फूलों का चेहरा।
0: ओके, अनाड़ी फिल्म का आपकी पसंद का ये गीत
1: हाँ
0: सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो
1: हाँ,
0: सहेली, क्या
1: आलो सहेली।
0: नाम है आपका?
1: राजबाई, राजबाई धाकड़। बड़े
0: राजबाई धाकड़। कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: गांव से। हाँ,
0: बड़े गांव
1: गुना जिले।
0: जी। तो क्या करती हैं आप, अपने बारे में बताइए।
1: अपन घर के काम करती हैं, गेहूं बोते हैं, धना बोते हैं, चना बोते हैं।
0: क्या बात है,
1: खेती बाड़ी काम करे हैं अपन।
0: बहुत अच्छी बात है। जो किसान बड़ी मेहनत से खेती बाड़ी करते हैं, फसल उगाते हैं, तभी तो सारे
1: बहुत
0: लोगों को
1: अच्छा।
0: इतने सारे अनाज मिलते हैं और हम लोग स्वस्थ रहते हैं।
1: तीन बहने हैं, तीन बच्ची है अपने, और दो दो बच्चा है, पांच बहन भाई है।
0: क्या बात है, सचमुच यानी
1: हाँ
0: परिवार के साथ रह के अच्छा लगता है ना।
1: अच्छा लगे। देवर है, देवरानी है, देवर के मोड़ा मोड़ी है।
0: चलिए,
1: और
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बातें सुन के। और रेडियो सुनती हैं कि नहीं आप?
1: हाँ, रेडियो सुनते हैं,
0: अच्छा लगता है रेडियो सुनना।
1: बहुत अच्छे लगे हैं।
0: और बताइए कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आपके पसंद का?
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर लो घड़ी दो घड़ी।
0: बहुत अच्छा गाना आपने चुना है। और विविध भारती हेलो सहेली कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो सहेली,
1: नमस्ते।
0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनंदा है।
0: सुनंदा जी, कहाँ से फोन लगाया?
1: हम यवतमाल महाराष्ट्र से है।
0: यवतमाल से फोन लगाया। अपने बारे में बताइए सुनंदा जी, अपने बारे में बताइए।
1: मैं तो घर में रहती हूँ मैडम, खाना बनाती।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। घर में रहना यानी बहुत सी आम जो महिलाएं होती है ना, गृहणियां होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि अरे हम तो घर में रहते, पर घर में रह के भी बहुत अच्छा काम करती है। आपके बदौलत आपके परिवार के लोग जो है ना, आराम से बाहर जाते हैं, काम करके आते हैं। घर में आने के बाद उन्हें एक सुकून का एहसास होता है कि चलो घर में कोई तो है हमारा ख्याल रखने के लिए, है ना। और रेडियो सुनना पसंद है आपको?
1: बहुत बहुत पसंद है।
0: कौन सा कार्यक्रम पसंद है आपको?
1: हमको सच्ची सहेली है, बहुत सारे कार्यक्रम पसंद है।
0: अच्छा, और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम वो आपके ऐसे नाते का गीत सुनना चाहते हैं मैडम। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
0: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, बहुत सुंदर गाना आपने चुना है। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: अपना नाम बताइए।
1: लक्ष्मी विलास भोले।
0: जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: खामगांव से।
0: खामगांव से लगा, खामगांव महाराष्ट्र से फोन लगाया। अपने बारे में बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: कुछ नहीं करती, घर घर का काम खाली।
0: घर का काम करती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप कहती है कुछ नहीं करती, ये सब कुछ करती हैं आप। आपकी बदौलत ही
1: हाँ
0: जो ना घर वाले खुश रहते हैं ना, कि वे
1: हाँ
0: लोग
1: हाँ
0: खुश है कि चलो कोई तो है घर संभालने वाला, ताकि हम जब बाहर से घर आए
1: हाँ
0: तो हमें कितना अच्छा लगता है। घर साफ सुथरा होता है, खाना बना होता है ना, सारे काम किए होते हैं। तो हमें, हम गृहिणियों को खुश रहना चाहिए, या कहना चाहिए कि हाँ, हम हाउस क्वीन है घर की, है ना। और खुद के लिए जीती हैं आप कभी? खुद की खुशी का काम करती हैं आप? यानी खुद के लिए जब ऐसा होता है ना कभी कभी कि अरे हमारी पसंद का काम हम कर ही नहीं पाते, तो आप करती हैं अपनी पसंद का कोई काम?
1: नहीं, वो तो टाइम नहीं मिलता, ऐसे ही दिन में बच्चों का वो करते करते टाइम हो जाता है।
0: टाइम निकालना जरूरी है।
1: खेत है, हमारा खेत में जाना पड़ता।
0: खेत में जाना पड़ता है, वो सब ठीक है, पर आप
1: हाँ
0: अपने लिए वक्त निकालिए। आपको जो काम अच्छा लगता है, जैसे कि अपनी पसंद का खाना बनाना या फिर गाना सुनना, तो चलिए बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम आपके कौन, मतलब माई माई गाना है।
0: हम आपके हैं कौन फिल्म का, माए ने माए मुंडेर पे तेरी, बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: बताइए कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: हम रेखा मुखर्जी वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद साटू से बोल रहे हैं।
0: क्या बात है, बताइए रेखा जी अपने बारे में बताइए, क्या करती हैं जिंदगी में?
1: हम हाउसवाइफ हैं और रेडियो का गाना सुनते हैं, प्रोग्राम जितना होता है सुनते हैं, जो हेलो सहेली है वो भी सुनते हैं, लाइव फोन में सुबह सकाल में फोन में बात करते हैं रेडियो में। आकाशवाणी मुर्शिदाबाद में हम मैसेज भेजते हैं, गीतांजलि में लिखा भेजते हैं, शांति निकेतन में भी भेजते हैं और मुर्शिदाबाद में भी लिखा भेजते हैं। हम पोएम लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं और घर का काम लिपेट लेते हैं, गान सुनते हैं रेडियो का, साथ जुड़े रहता है।
0: जी बहुत अच्छा लगा कि आप रेडियो भी सुनती हैं, कविताएं भी लिखती हैं और फिर
1: हाँ
0: घर में भी रहती हैं, यानी पूरी जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं आप, है ना?
1: हाँ हम चाहे सिलाई सिलाई उलाई भी करते हैं
0: क्या बात है, यानी आप ऑलराउंडर
1: मशीन से।
0: हैं,
1: हाँ
0: है ना?
1: हम अकेले सब समेट लेते हैं।
0: ये बात बहुत अच्छी बात है। बस मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी रेखा जी, कि
1: हाँ कहिए।
0: खुद के लिए आप जीते हैं, क्या ऐसे कुछ पल होते हैं जब हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं, यानी कि सारे काम निपटाने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि ये पल सिर्फ मेरे लिए है, ये 1 घंटा मैं मेरे लिए जीना चाहती हूँ, तो ऐसा कुछ करती हैं आप?
1: हाँ करते हैं, 1 घंटे के लिए हम सिलाई उलाई करते हैं
0: और उसमें आपको
1: और
0: खुशी
1: जब
0: मिलती है?
1: खुशी मिलते हैं। हाँ अपना हाथ से सिलाई करने के बाद हमको खुशी मिलता है।
0: बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम महिलाएं खुश रहती है ना, तो परिवार भी
1: हाँ
0: खुश रहता है और पूरा परिवार खिला खिला सा रहता है, सभी लोग स्वस्थ
1: हाँ
0: जीवन
1: हाँ
0: जीते हैं।
1: हाँ जी
0: तो बस खुश रहिए,
1: हाँ
0: मुस्कुराते रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। और
1: हाँ
0: आप
1: विविध भारती सुनते हैं जी,
0: जी, और आपने पसंद का,
1: 2 महीना से छटपटा रहे थे। हाँ जी कब 2 महीना पूरा होगा।
0: अच्छा चलो बहुत खुशी की बात है। और बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: सत्यम शिवम सुंदरम जसमती
0: सत्यम शिवम सुंदरम,
1: मैया तेरे बोले नंद लाला।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, क्या
1: हेलो सहेली दीदी, मैं सातारा महाराष्ट्र से बोल रही हूँ।
0: नाम है आपका?
1: मेरा उषा नाइक नाम है दीदी।
0: उषा नाइक सातारा से बात कर रही है जी। बताइए
1: हाँ,
0: अपने बारे में बताइए।
1: सातारा ये छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐतिहासिक किला है, अजिंक्य तारा है, प्रतापगढ़ है, खास तालाब है, महाबलेश्वर है
0: जी, सातारा घूमने
1: जी,
0: लायक बहुत अच्छी जगह है।
1: बहुत ही अच्छा जगह है, नटराज
0: जी।
1: मंदिर है, बहुत ही अच्छा है। आप आइए कभी, शूटिंग भी होती है इधर।
0: जी हम जरूर आएंगे। आप अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं जिंदगी में?
1: दीदी मैम, तो मैं जॉब में हूँ, मैं साड़ी सेंटर में हूँ, सिटी साड़ी सेंटर में हूँ, मैं जॉब करती हूँ। मैंने आज छुट्टी लिए, खास आपके लिए फोन करने के लिए।
0: क्या बात है, क्या बात है। और बहुत खुश होंगी ना आज कि फोन लग गया है।
1: बहुत ही खुश हूँ, मेरा फोन लग गया। मैं इसके वास्ते आज रूम में घर रही हूँ, चार
0: क्या
1: महीने बाद मेरा फोन लगा है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई हमें। और आपसे एक सवाल है कि आप नौकरी भी करती हैं, घर भी संभालती हैं, तो आप खुद के
1: जी
0: लिए जीती हैं क्या? अगर खुद के लिए जीती हैं तो आपकी पसंदीदा कौन सा काम है जो आपको करने से आपको बहुत खुशी मिलती है?
1: जी मेरा 57 एज है दीदी, 57। मैं घर में नहीं रहती हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ घर में। मेरा बेटा है, बहू है, जमाई है, सब अपने अपने संसार में व्यस्त है। फिर घर में क्या करने का, इसी वास्ते मैं 10 साल से मैं सेल्समैन का काम करती हूँ, साड़ी
0: क्या बात है।
1: सेंटर में। हाँ, सिटी साड़ी सेंटर में।
0: यानी आप व्यस्त और
1: हाँ
0: स्वस्थ रहती है, यानी आपका ये मानना है कि जब हम व्यस्त रहते हैं तब हम स्वस्थ रहते हैं, है ना?
1: हाँ और मेरा यही है कि मेरा सभी गाना सुनने में बहुत ही मेरा दिल पे है, मेरा पूरा दिन आनंद आनंद में ही जाता है। 11:30 बजे तक हाँ गाना ही सुनती हूँ मैं रेडियो का।
0: क्या बात है, रेडियो सुनना अपने आप में बहुत खुशी देता है ना, हम खुश हो जाते हैं
1: हाँ
0: प्यारे प्यारे गीत सुन के।
1: बहुत ही खुश। और मैं टीवी भी नहीं देखती हूँ, और मेरा छोटा सा नोकियो का फोन है, बड़ा भी एंड्रॉइड नहीं है, मेरा छोटा ही है,
0: क्या
1: उससे
0: बात
1: काम
0: है,
1: मेरा चल जाता हूँ, और मैं बहुत ही खुश हूँ।
0: ये बात है। नहीं तो देखिए, लोग हमेशा परेशान रहते हैं जिंदगी में कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, पर सचमुच
1: नहीं
0: आपसे सीखने लायक बात है कि छोटा सा फोन है फिर भी आप रेडियो सुन के खुश रहती है, तो खुश
1: सुनती
0: रहना बहुत जरूरी है ना।
1: जरूरी है, बराबर है दीदी।
0: जी बताइए, कौन सा गीत आप आज सुनना चाहती हैं?
1: बहुत ही धूप है बाहर, धूप में निकला ना करो रूपों की रानी।
0: बहुत प्यारा गीत आपने चुना है, ये गाना आप गुनगुना के सुना सकती हैं?
1: धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोला रंग का लानी।

0: रहा आज का हेलो सहेली प्रोग्राम। सखी, आपकी बातचीत, आपके अनुभव दिल को छू गए। आपसे अगली मुलाकात होगी अगले मंगलवार सुबह 11 बजे से। तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस तरह है 4002466 2, यानी 4002466 2। दूसरा नंबर है 2867 0288, 2867 0288। और मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 022। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन सखियों के कॉल लग चुके हैं वे कृपया 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी मौका मिले हमसे जुड़ने का। साथ ही सभी पुरुष श्रोताओं से एक विनती है कि आप हेलो सहेली में कॉल ना लगाएं। आपके कॉल के कारण फोन एंगेज हो जाता है और बहुत सारी सखियों के फोन लग नहीं पाते। तो सखियों, हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है समृद्धि नाइक, संपादन योगिता जाधव का, हेलो सहेली की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। तो चलते चलते सखियों से कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार से जुड़े रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। इसी के साथ सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्वेता उपाध्याय की लिखी गीतों भरी कहानी जीवन एक सरल रेखा। वाचक स्वर आपके इस दोस्त यूनुस खान का है। रेखा गणित के प्रश्न श्यामपट पर किसी खूबसूरत रेखा चित्र से नजर आ रहे थे। दो आड़ी तिरछी रेखाओं के मध्य बना एक कोण और उस कोण में समाये अंक सरला की आंखों को थोड़े धुंधले नजर आ रहे थे, पर अब 15 वर्षों का अनुभव गलती होने की संभावनाओं को खुद ब खुद संभाल लेता है। बच्चों, आज तुम्हारी मैडम अपना चश्मा लगाना भूल गई। ब्लैकबोर्ड पर कुछ गलत लिख दूं तो चुप मत बैठना, आज गलती बताने वाले को इनाम मिलेगा। पूरी कक्षा इस वाक्य को सुनते ही सचेत हो गई। सरला मैडम की गलती निकालना कक्षा 7वीं के लिए बहुत बड़ा काम होगा। अर्धवार्षिक परीक्षाओं तक विद्यार्थी गणित का बहुत अभ्यास कर चुके थे। बस यही कारण था कि जब सरला की धुंधली आंखों ने कुछ इधर उधर लिखा तो बच्चे तुरंत बोल पड़े। आज सुबह की आपाधापी में वो नजर का चश्मा लगाना भूल गई। यूं तो आंखें वो सब देख समझ और पढ़ लेती हैं जो जरूरी नहीं, पर किताब के बारीक अक्षर पढ़ते हुए सरला की आंखें झिलमिला उठती थीं। इसलिए आज उसने रेखा गणित चुना। आड़ी तिरछी रेखाओं के बीच बनते कोण उसकी धुंधली आंखें समझ सकती थीं। बच्चों को कुछ कठिन सवाल दे आज वो कक्षा की देहरी पर खड़ी होकर उन आहटों की प्रतीक्षा कर रही थी जिनके साथ दीपावली अवकाश का संदेश आएगा। कुछ ही देर में कोसीलाल हाथी की मस्त चाल में झूमते नजर आए। यूं तो वो स्थूल काय सदैव प्रसन्न रहता, पर आज उसका चेहरा किसी खुशखबरी से चमक रहा था। मैडम जी, नोटिस पे हस्ताक्षर कर दीजिए। इस वक्त चाय लाने वाले कोसीलाल रजिस्टर था में अति प्रसन्न थे। नोटिस पढ़ते हुए सरला अवकाश के काश में अटक गई। अरे, ये तो बड़ी लंबी छुट्टियां दे दी सरकार ने, ये बच्चे तो सब भूल जाएंगे, फिर वही नील बटे सन्नाटा हो जाएगा। खैर, मेरी छुट्टियां बच गईं, हम लोग भी घूमने जा रहे हैं इस बार। कहां जाएंगी मैडम जी? कश्मीर, बहुत सालों से इच्छा थी जाने की, अब पूरी होगी। और त्योहार बिना मनाए जाएंगी का? अरे नहीं भाई, उससे पहले वापसी हो जाएगी। अब फिर तो ठीक है, तिहार से ज्यादा का जरूरी है, सब घूमेंगे भागेंगे, हम तक गोड़ का इलाज करवाएंगे, गजब पिरात हैं। सरला मध्य प्रदेश के सिहोरा में गणित की अध्यापिका हैं। पिछले 3 वर्षों से जबलपुर से सिहोरा अप डाउन करती सरला मिश्रा अपने सरकारी वेतन से जितनी प्रसन्न है उतनी वे जीवन की किसी और बात से प्रसन्न नहीं है। यूं तो हर साल ये स्थानांतरण की अर्जी देती रहती हैं, पर इस साल से अर्जी देना इन्होंने बंद कर दिया है। क्यों? वो इसलिए कि सिहोरा के इस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण इन्हें आराम रहता है और इनके पति नीलकांत मिश्र घूस देकर कोई काम नहीं करवाते। उनके हिसाब से तो सरला हमेशा से बस से आना जाना करती रही हैं, तो अभी भी कर सकती हैं। जबलपुर सिहोरा यूं भी राष्ट्रीय मार्ग से लगे हुए हैं। नीलकांत मिश्र क्योंकि ग्रामीण बैंक में कार्यरत हैं, तो उनकी पोस्टिंग तो वैसे भी जबलपुर के आसपास के गांव में ही होती है। इस तरह दोनों अलग अलग दिशाओं से सफर करते हुए घर लौटते हैं। आज सितंबर की रवानगी हो चुकी थी और जाड़े की सुगबुगाहट के साथ दशहरे से दीपोत्सव तक की छुट्टियों का सरकारी आदेश आ चुका था। विद्यालय के कॉरिडोर्स में हलचल मची हुई थी। खुशी से कदम बढ़ाता कोसीलाल हर कक्षा में नोटिस पर हस्ताक्षर कराने के लिए तेज चलने का प्रयास कर रहा था। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी अपनी कक्षा की देहरी पर खड़े अपने साथी शिक्षक शिक्षिका के साथ गपियाने में मशगूल होने लगे थे। प्रसन्नता की इस बयार ने सरला के कानों में कुछ ऐसा फुसफुसाया कि उसका मन अवकाश के बादलों के संग उड़ने लगा। सरला सोचने लगी, इस बार कश्मीर घूमने जाऊंगी तो खूब सी फोटो अपनी फोन गैलरी में सेव करूंगी, हो सके तो नया मोबाइल लेती हूं जिसका कैमरा शानदार हो।

बजी और प्राचार्य ने कक्षा में कदम रखा। अरे अब ये क्यों चली आईं? ये हमेशा दबे पांव ही आती हैं। मन ही मन ये बोलते हुए सरला सहजता से मुस्कुराई। क्या पढ़ाने में व्यस्त थीं आप सरला मैडम? बच्चों को कुछ गृह कार्य देकर दूसरे काम पूरे करिए। वैसे क्या प्लान है? क्या कर रही हैं आप अवकाश में? प्राचार्य कक्षा और ब्लैक बोर्ड को बारीकी से देख रही थी। अरे मैडम कुछ नहीं, बस कहीं घूम फिर आएंगे। जब से सिहोरा में पोस्टिंग हुई है अप डाउन की थकान कुछ और प्लान करने ही नहीं देती। जबलपुर इतना दूर तो नहीं सरला मैडम? हाँ घर के काम निपटाकर सही समय पर विद्यालय पहुंचना ज्यादा कठिन है। आपकी पेंटिंग्स के क्या हाल हैं? पूछते हुए प्राचार्य आगे बढ़ने लगी और सरला उनके पीछे चल दी। अरे मैडम मेरी पेंटिंग्स अधूरी हैं, इन छुट्टियों में उनकी रंगत सुधारूंगी। बहुत साल हुए कहीं गए नहीं, ये अवकाश लंबा है, कहीं जाऊंगी इनके साथ। सरला ने बात बदली, क्योंकि पेंटिंग्स तो उसने विद्यालय के वार्षिकोत्सव के बाद कभी बनाई ही नहीं। अरे वाह, कहां की बुकिंग हुई? द हेवन ऑन अर्थ कश्मीर मैडम। आज प्राचार्या भी प्रसन्न थी। यूं तो गणित पढ़ाने वाले अध्यापक उन्हें वैसे भी ज्यादा प्रिय हैं, पर त्योहारों के समय मिली सरकारी छुट्टियां किसे नहीं गुदगुदाती। इस बातचीत के बीच सरला को याद आया वो सफेद कैनवस जो प्राचार्य महोदया ने पिछले वर्ष उसे उपहार में दिया था। वो घर के गलियारे में यूं ही पड़ा पड़ा पिलिया रहा है। वो कैनवस और रंग जो उसे जन्मदिन पर उपहार में मिले थे उसने आज तक नहीं छुए। विद्यालय में सभी सरला की प्रज्ञा और चित्रकारी से परिचित और प्रभावित थे, पर घर और विद्यालय के बीच की खींचतान में वो कैनवस कोरा ही रहा।

0: स्टाफ रूम में एक बच्चे की कॉपी पे नजर दौड़ाते हुए सरला का ध्यान अचानक उसके हाथ की खुश्क पड़ती चमड़ी पर गया। उसने ध्यान से अपने हाथों को देखा। साथ बैठी हिंदी की अध्यापिका सरला को अपने हाथों पर वैसलीन मलता देखकर बोली, सरला मैडम, इन हाथों में अब नमी की उतनी ही कमी है जितनी आपके जीवन में आनंद मंगल की। ये बात सरला को मधुमक्खी के डंक सी चुभी। क्या कमी है उसके जीवन में आनंद मंगल की? कभी प्रतिकार न करने वाली सरला ने आज उत्तर दिया, आप तो बस मेरे पीछे ही पड़ी रहती है मैडम, ये भी कोई मजाक हुआ? मेरे जीवन का आनंद मंगल आप क्या समझेंगी? सरला झुंझला उठी, अरे मजाक कर रही हूं, ये चिड़चिड़ापन तुम पर हावी होता जा रहा है, इतनी खिन्नता अच्छी नहीं, विनोद की भी कमी है तुम्हारे जीवन में। ऐसा है मैडम कि घर हो या विद्यालय, लोग मेरे स्वभाव में उपजी खिन्नता का कारण उनके विवेक और परिस्थिति के अनुरूप खोज लेते हैं, समानुभूति कोई नहीं रखता। अरे तुम घर के उलझे समीकरण भले न सुलझा सको, पर गणित की कक्षा में हर समीकरण का हल खोज लेती हो। हिंदी की अध्यापिका ने सरला का मन ये कहकर बहलाना चाहा। उम्र का ये 45वां साल सरला के लिए कुछ उलझन भरा था। उसके तन और मन का बदलता ताप कभी उसे अफसोस से भर देता तो कभी भावातिरेक से। उसकी बेटी कुहू भी दिल्ली जा चुकी थी और अब उसके साथ शाम को हंसी चिठोली करने वाला कोई नहीं था। शायद प्री मेनोपॉज भी सरला को परेशान कर रहा था। कॉपी करेक्शन पूरा करते हुए सरला सौम्य अंदाज में बोली, मैडम आज मैं घर लौटते वक्त किसी अच्छी कंपनी की क्रीम खरीदूंगी, ये वैसलीन अब चिपचिपी लगती है। आज का दिन यूं तो सबके बीच अति उत्साह में बीता, पर उसकी नजर अपने रूखे हाथों पर बार बार जाती रही जाती रही। शाम को जब लंबे अवकाश की आश्वस्ति लिए वो बस अड्डे पर पहुंची तो वहां बस और मनपसंद खिड़की वाली सीट उसका इंतजार कर रहे थे। बस में सफर करते हुए सरला ने अपना फेसबुक अकाउंट खोला। वहां उसे दिखे कुछ अनजाने खिलखिलाते चेहरे जो बिना पति भाई बहन या प्रेमी के यात्रा पर निकले थे। वो रोमांच से भर उठी। धुंधली नजर आती उन तस्वीरों में कुछ स्त्रियां तो उससे भी बड़ी उम्र की मालूम होती थीं। ये सब देखते देखते कब बस आधार ताल चौराहे तक पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। शायद इस बार भगवान उसकी छुट्टियां मंगलमय रखेंगे और वो अपने परिवार के साथ भारत के स्वर्ग कश्मीर को देख सकेगी। ये सोचते हुए वो बस से उतरी और उसने रिक्शे वाले को रोका, सुनो भैया, पहले बाजार का काम करूंगी, उसके बाद तुम मुझे सुंदर कॉलोनी छोड़ देना।
1: देखो हम 150 रुपया लेंगे।
0: ठीक है चलो। आज सरला को कोई फिक्र नहीं थी। उसने कई दिनों से एक लिस्ट बना रखी थी और आज इसीलिए वो पर्स में पैसे रख के निकली थी। उसने सोच लिया था कि वो रिक्शे वाले को घर आने से थोड़े पहले ही रोक देगी ताकि अम्मा को लगे कि वो पैदल ही आई है। आज उसे ब्रश खरीदने थे, रंग खरीदने थे, अच्छे ब्रांड की क्रीम लिपस्टिक खरीदनी थी। उसकी लिस्ट में तो बहुत कुछ था, पर ये सब खरीद कर उसे शाम 7 बजे से पहले घर भी पहुंचना था। सरला को लगा कि रिक्शा कर ही लिया है तो वो अपने सारे काम निपटा लेगी। विद्यालय में सब उसे कंजूस कहते हैं। अब कौन बताए इन स्टाफ रूम में बैठी अध्यापिकाओं को कि रिक्शा या ऑटो से घर जाने पर अम्मा का मुंह फूल जाता है। उनके हिसाब से बस स्टॉप से घर तक पैदल आया जा सकता है, 1 किलोमीटर की दूरी दूरी नहीं होती। रिक्शे में बैठी सरला सोचती रही कि उसे घर के गलियारे में पड़े पिलियाते कैनवस को सूर्योदय की रोशनी से रंगना है। किसी दिन प्राचार्य ने तस्वीर दिखाने को कहा तो वो झूठी साबित हो जाएगी। यूं भी सरला को उकेरना था उस कैनवस पर एक चलचित्र जहां साल के सघन जंगलों के बीच एक नदी बहती हो, वृक्ष के आसपास सफेद बटन वाले कुकुरमुत्ते हों, धरती पे हरी लंबी घास हो और वहां विश्राम करती एक स्त्री हो। पर ये सब कब और कैसे होगा, ये सरला की दिनचर्या सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी। अम्मा ने तो कैनवस को फालतू का सामान समझकर यूं भी कमरे के पीछे बने गलियारे में रखवा दिया था। इन विचारों से मुक्त होकर सरला ने मोबाइल पे आया संदेश देखना चाहा। सरला की आंखें बिना चश्मा पहने साफ नहीं देख पा रही थीं। शायद कुहू ने कुछ भेजा था। आज वो चश्मा क्या भूल गई। आधी दुनिया उसे धुंधली नजर आ रही है।

ब्यूटी स्टोर तक पहुंचने से पहले इतनी देर से शांत पड़ा मोबाइल बजा। हेलो मम्मी, कहाँ हो आप? आप टेक्स्ट रिप्लाई क्यों नहीं करती? हाँ हाँ बेटा, मैं बस तुझे कॉल करने ही वाली थी। रिक्शे से उतर रही हूं। आज मैं वाकई अपनी संरचना में अधूरा रह गया। कुहू हमेशा की तरह जल्दी में थी। क्या मम्मी, आपने अभी तक अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया? मैंने तो आपको टेक्स्ट किया था कि मेरी फेयरवेल पार्टी है, थीम पार्टी है मम्मी, आप समझती ही नहीं हो। अच्छा बेटा, 7 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी, फिर बात करती हूं। नहीं मम्मी, आप मुझे तुरंत 10,000 रुपए भेज दो, मैं मॉल में ही हूं, ड्रेस सिलेक्ट कर चुकी हूं। 10,000? अरे ऐसे कितनी ड्रेस ले ली तूने? मैं बिलिंग काउंटर पे हूं मम्मी, वेट नहीं कर सकती, अब जल्दी पैसे भेजो यार। ठीक है कुहू, मुझे बताती जा बेटा कि ये पेमेंट कैसे करना है, कहीं जल्दीबाजी में किसी और को पैसा ना पहुंच जाए। सरला पर्स में नगद ही रखती थी।

वो भी जरूरत का। यूपीआई पेमेंट पति ही करते थे। अरे मम्मी ऐप खोलो, फिर आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में मेरा नंबर है ना, बस उसी नंबर को क्लिक करो, मैं कॉल पर हूं। सरला ने धुंधले चश्मे से कुहू का नंबर खोजा, 10,000 का अमाउंट डाला और डरते हुए ओके के बटन को दबाया। अगले ही मिनट में कुहू चहकी, आ गया अमाउंट मम्मी, शाम को बात करेंगे, ओके बाय। अब सरला ने कोई महंगी क्रीम खरीदने का प्लान किसी और दिन पर टाल दिया और जैतून के तेल के गुणों के बारे में सोचते हुए रिक्शे वाले से बोली, भैया रिक्शा सुंदर कॉलोनी की तरफ मोड़ लो और हाँ वो जलेबी वाले की दुकान पर रुकना। खोए की जलेबियां उसके घर में सबको बहुत पसंद है। वो जब भी देर से घर लौटती है जलेबियां ले लेती है। अम्मा का मुंह खोए की जलेबियां देखकर नहीं भूलता। जीवन के इस पड़ाव तक आते आते सरला समझने लगी थी कि जरूरतों का मुंह बंद करने के लिए लगातार अर्थोपार्जन में जुटे रहना भी जरूरी है और रिश्तों में मधुरता बनाए रखना भी। संयुक्त परिवार में प्रेम विवाह कर आई सरला के जीवन की धुरी उसका घर और विद्यालय था, पर घर और विद्यालय की कई धुरियां थीं। सरला जीवन के कुछ समीकरण बहुत देर से समझ रही थी। बस बस भैया रिक्शा यहीं रोक दो। सरला अपने घर से पहले वाले मोड़ पर सामान लेकर उतर गई। शाम के 7 बज रहे थे। संध्या की दियाबाती सरला ही करती थी। तेज कदम बढ़ाकर जब सरला घर पहुंची तब तक नीलकांत घर लौट चुका था। अम्मा कुछ कहें इससे पहले सरला ने खोए की जलेबी का डिब्बा अम्मा को पकड़ा दिया, साथ में ताजा मुंगोड़े भी थे। सरला नील को देखते ही चहकी, पता है सरकार ने दीपावली का उपहार पहले ही दे दिया। इतनी वाक्य फिर अपनी संरचना में अधूरे रह गए। इतनी देर से लौटी तुम? अम्मा कितनी बार दरवाजे तक जाकर लौटी, एक कॉल ही कर देती अगर इतनी देर हो रही थी तो। नीलकांत का स्वर खींचा हुआ था, जाने क्यों। अच्छा किया जो जलेबियां लेती आई, नहीं तो बेचारे नील को दौड़ना पड़ता। अम्मा सरला के देर से घर लौटने पर नाराज नहीं थी, ये बात थोड़ी अजीब थी, पर नील का मूड क्यों उखड़ा हुआ है ये बात सरला की समझ से परे थी। हाथ पैर धोती सरला सोच रही थी कि क्या ये वही नील है जो 20 बरस पहले उसके लिए बस में खिड़की वाली सीट रोक कर रखता था। उसे बताया था सरला ने कि अगर वो खिड़की वाली सीट न चुने तो उसे मिचली सताती है।

बस फिर क्या था, नील ने बस कंडक्टर के साथ साठ गांठ करके बस की सबसे आगे वाली सीट अपने और सरला के लिए बुक कर दी थी। वो बैंक में पदस्थ था और सरला की नियुक्ति शिक्षा कर्मी के तौर पर हुई थी। दशहरा और दीपावली के अवकाश के दौरान नीलकांत किसी रविवार सरला से मिलने जरूर चला जाता था। बस इसी बीच विवाह का ख्याल सरला के परिवार वालों को यूं भी आ गया कि नीलकांत को दहेज से नफरत थी। नीलकांत सरला के एमएससी गणित से इतना प्रभावित था कि वो इसके आगे कुछ जानना समझना नहीं चाहता था। सरकारी नौकरी में तो वो लग ही चुकी थी। दोनों ब्राह्मण परिवारों को इस विवाह से कोई समस्या नहीं थी। सरला को नील की आंखों में अपने लिए प्रशंसा और सम्मान मिला और नीलकांत को मिली सरल सरला, जो उसकी बहनों की परवरिश में उसकी सहभागी बनी। अब क्या करने लगी सरला, चौके में घुसो, आज जीजी की नरद ननोई आ रहे हैं खाने पर। उनके परिवार में एक अच्छा कमाऊ लड़का है अपनी मिली के लिए। नीलकांत की पुकार सुन सरला वर्तमान में आ गई। हमेशा से नीलकांत की तीन छोटी बहनों की जिम्मेदारी नीलकांत की ही थी। पहली दो तो आराम से ब्याह गईं, पर नीलकांत की सबसे छोटी बहन मिली के लिए वर मिलना लगभग असंभव होने लगा था। न शिक्षा, न रंग रूप, न कोई कला कौशल, न कुछ करने की चाह। आलस्य से भरी 32 साल की मिली के लिए नीलकांत और उसकी अम्मा पिछले 10 साल से योग्य वर खोज रहे थे। अम्मा ने चौके में सरला को सुनाते हुए कहा, मिली को अच्छा दहेज देकर ब्याहूंगी ताकि उसे कोई ससुराल में दबा न सके। सरला को पूड़ी का आटा गूंथते हुए नजर आ रही थी कश्मीर की वो रील्स जो उसे कुहू भेजती रहती है। सरला और नील के जीवन में जिम्मेदारियों का हरा पौधा अब परजीवी बन चुका था। एक ऐसा परजीवी जो सरला और नीलकांत के बीच सदैव कुछ लेने के लिए खड़ा रहता। मेहमानों की रवानगी के बाद अम्मा और नीलकांत पूरी बातचीत का मुआयना करने बैठ गए और सरला घर के गलियारे में रखे कैनवस को साफ करने लगी। कैनवस पूरी तरह से बदरंग हो चला था।

अगली सुबह सरला देर तक बिस्तर से नहीं उठी। सारी रात उसके सपनों में पहाड़, नदी और कुहू आते रहे। जब उसका कैनवस पैसों, जेवरों और बर्तनों से सजने लगा, तब उसकी नींद टूटी। ओह, घड़ी में 8 बज रहे थे। बैठक में नीलकंठ और अम्मा चाय के साथ बासी पूड़ियों का नाश्ता करते बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे। अम्मा ने उसे चाय का कप मुस्कुराते हुए थमाया। क्या हुआ अम्मा, आप जगा देती मुझे? सरला ने बैठक में बिखरे कुशन समेटते हुए कहा। अरे सरला, अपने तो भाग ही खुल गए, मिली के लिए हाँ कह दी उन लोगों ने। भले लोग हैं, बस इतना चाहते हैं कि विवाह धूमधाम से हो और स्वागत सत्कार में कोई कमी ना रहे। मतलब अम्मा? मतलब ये कि अपनी अपनी पेंशन निधि से या फिक्स डिपॉजिट से पैसा निकलवाने की अर्जी दे दो। सोने का भाव तो आसमान चढ़ रहा है, लड़की को सूने हाथ तो नहीं भेज देंगे ना। फिर शादी भी तो जबलपुर में नर्मदा पैलेस से करना चाहते हैं वो लोग। सब कुछ मिलाकर 20 लाख रुपए तो चाहिए, क्यों नील? जी अम्मा, इतने तो लग ही जाएंगे। नीलकांत यूं भी अपनी अम्मा की हर बात से सहमत ही रहता था। अम्मा, 35 साल की उम्र में शादी करने वाला इतना टीम टाम क्यों चाहता है? सोचिए, प्राइवेट नौकरी है उसकी, क्या वो खुद 20 लाख का लोन लेने की ताकत रखता है? 20 लाख सुनते ही सरला का मन घबराने लगा। ये सब ज्ञान की बातें हैं सरला, सबको नीलकांत नहीं मिलता, इतना तो करना ही पड़ेगा। अभी से अर्जी दे देंगे तो पीएफ से तुम्हारा और मेरा फंड 1 माह के भीतर निकल जाएगा सरला, तुम चिंता मत करो। नीलकांत सब सोच चुका था। मिली अपनी बिखरी अलमारी आज बरसों बाद सहेज रही थी। शायद अम्मा ने उसे बता दिया था कि अब उसे नई रेशमी साड़ियां खरीदनी और पहननी हैं, जिन्हें पहनकर वो सुंदर दिखे। अम्मा ने आज खुशी खुशी चौका संभाला, एक बार भी सरला को आवाज नहीं दी। नीलकांत बैंक अकाउंट चेक करते रहे और सरला, वो बैठ गई रंगों और कूचियों के साथ उस कैनवस के सामने जिसे उसने 1 साल से नहीं छुआ था। सारा दिन घर ठहाकों से गूंजता रहा और सरला उकेरती रही पहाड़, पेड़, नदियां और कुकुरमुत्ते।

स्त्री जो सरला की कल्पनाओं में थी वो कैनवस के लैंडस्केप में अनुपस्थित थी। सरला, तुम ये सब क्या लेकर बैठ गई? चलो बाजार चलो, सोने का भाव आसमान छू रहा है। मिली और अम्मा तैयार हो गई हैं। नीलकांत तब तक डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की स्पेंडिंग लिमिट चेक कर चुका था। उसका उतावलापन बता रहा था कि अब वो रुकेगा नहीं। नहीं नीलकांत, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे 2-3 दिन बाद एक ट्रिप पर जाना है जिसका पेमेंट मैं कर चुकी हूं। पगला गई हो क्या? कौन सी ट्रिप सरला? अरे घर में 2 महीने में शादी है और तुम ये सब क्या सोच रही हो? हम कश्मीर अगले साल चले जाएंगे। वैसे भी टिकट्स कंफर्म नहीं हुई थी इसलिए मैंने कैंसिल कर दी। कम से कम रिफंड तो मिल गया। इस वक्त सरला को वो सारी यात्राएं याद आने लगी जो यात्रा के 2-3 दिन पहले रद्द हो जाती थी। कभी अम्मा बीमार हो जाती थी, कभी जीजी अपने बच्चों के साथ मायके आ जाती थी, कभी बहनों की शादी का बोझ था तो कभी मकान की प्लानिंग। नीलकांत की लिस्ट में सरला के साथ सिर्फ सब्जी खरीदने जाने का प्लान था क्योंकि सरला मूल भाव में कच्ची थी। चलो भी तैयार हो जाओ। नीलकांत को पता था सरला को मनाना समझाना बहुत कठिन नहीं, आखिर बिन दहेज के ब्याह लाया है उसको। नील, मैं अकेली जाऊंगी ट्रिप पर। सरकार ने लंबा अवकाश दिया है। पहले कुहू के पास दिल्ली जाऊंगी और फिर वहां से निकलूंगी एक समूह के साथ। सुनो यार, मैं समझता हूं कि हमारे कश्मीर न जाने के प्लान से तुम अपसेट हो रही हो, पर जरा सोचो, ये भी कोई वक्त है अपने बारे में सोचने का। मिली, अम्मा और जीजी सब क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? कुछ नहीं सोचेंगे नील, क्योंकि उनको तो पीएफ से पैसा चाहिए। तीसरी बार पीएफ से पैसा निकालने के बाद इस अकाउंट में जूठन ही बचेगी कुहू और मेरे लिए। सरला का स्वर स्पष्ट था। अम्मा और मिली गलियारे की देहरी पर खड़े चुपचाप ये बातचीत सुन रहे थे। जाओ नील, अम्मा और मिली इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ बहस में मत पड़ो। एक खुशनुमा दिन तनाव से भर उठा था। अम्मा और मिली नीलकांत का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गए। सरला बहुत देर तक अपने उकेरे चित्रों को देखती रही।

कहां है वो इस परिवार में, नील के जीवन में? उसकी इच्छाओं का कभी कोई मूल्य क्यों नहीं रहा? संभवतः इसलिए क्योंकि उसने हमेशा हां कहा। उसने कभी अपने लिए जीना नहीं सीखा। मोबाइल चलाया तो यूपीआई से डरती रही, सैलरी मिली तो डेबिट कार्ड रखने से डरती रही, बाहर निकली तो अम्मा के डर से रिक्शा नहीं किया, और तो और कभी अपनी सेहत की भी परवाह नहीं की। बिना दहेज के विवाह को वो खुद पर किया गया एक एहसान मान बैठी। अब तो उसके जीवन का आधा पड़ाव पार हो चुका है। अगर आज भी वो भय के साए में जीती रही तो अपने लिए कब जिएगी? क्या आज भी वो वही करेगी जो सब करना चाहते हैं? आज पहली बार सरला ने जोर देकर कहा, नहीं, मैं अपना जीवन दूसरों की आशा के अनुरूप नहीं जी सकती। मैंने आज तक अपना हर कर्तव्य निभाया है, पर अब मुझे अपने मन की भी सुननी है। मैं परिवार छोड़कर तो नहीं जा रही जो कोई ग्लानी पाल बैठूं। उसने कुहू का नंबर डायल किया, कोई जवाब नहीं आया, शायद वो व्यस्त हो। बैठक में आराम से पैर फैलाकर बहुत देर तक सरला लिली फीमेल ट्रैवलर्स का वो वेब पेज देखती रही जिसे वो पिछले 2 साल से फॉलो कर रही थी। उसने चश्मा लगाकर देखा तो तस्वीरों में उसे अम्मा की उम्र की स्त्रियां भी नजर आईं। कैसे खिले खिले से चेहरे थे उन सबके। वो कब इस तरह से खिलखिलाएगी? इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ सरला के पास था। इस वेब पेज पर कुछ स्त्रियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए वीडियो भी डाले थे। कैसी विचित्र बात है कि सबकी यात्रा संकोच और भय से ही शुरू हुई थी, और सरला की वो यात्रा कैसे शुरू होगी? यकीनन वो एक असहमति से शुरू होगी। सरला ने थरथराती उंगलियों से अपने डिटेल्स भरे और लिली फीमेल ट्रेवलर्स के साथ यात्रा पर जाने की स्वीकृति और राशि दोनों ही भेज दी। अब उसके अकाउंट में जितने पैसे थे वो इस समूह के साथ यात्रा करने के लिए पर्याप्त थे। मिली के विवाह में जो खर्च होना है वो उसे रोक नहीं सकती, पर अपनी कमाई से वो खुद को खुशी के कुछ लम्हे तो दे ही सकती है। सरला आज सच में खुश थी। उसने एक बड़ा यूपीआई पेमेंट अपने लिए किया था। उसने नीलकांत को ना कहा था। आज पहली बार उसने खुद को चुना था।

जब नील, अम्मा और मिली बाजार से लौटे तो सरला सूटकेस की धूल झाड़ पहुंच रही थी और उसने अपने ट्रैवल डिटेल्स भी कुहू और नीलकांत को भेज दिए थे। आज सबकी आंखों में एक प्रश्न था, पर सरला की आंखों में नई यात्रा पर जाने की चमक थी। आज उसे रोकने का साहस किसी में भी नहीं था।

जीवन एक सरल रेखा, ये थी श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी। वाचन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। संपादन काजल भदरगे, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: छाया गीत
2: लग जागने
1: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
3: मेरे सपने अब
1: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ जाएं।
3: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
1: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

102.7 FM पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, प्रस्तुत है युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युवा वाणी।

हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ खुश और स्वस्थ होंगे, साथ ही इस बढ़ती गर्मी में अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि ऐसे मौसम में स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी लापरवाही स्वास्थ्य बिगाड़ देती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए और साथ ही सुनते रहिए अपना वन ऑफ द डेली यूथ प्रोग्राम युवाणे, जो लेकर हाजिर है आपकी रेडियो हम सफर एकता। तो दोस्तों, हर बार की तरह आज भी करेंगे ढेर सारी बातें चर्चा से जुड़े, साथ में सुनेंगे प्यारे प्यारे सॉन्ग्स भी। और साथियों, जैसा कि आपको पता है आज दिन है शुक्रवार, तो शुक्रवार को होता है हमारा खास क्रम रोजगार सूचना, जिसमें मैं आपको दूंगी इस हफ्ते रोजगार से जुड़ी जानकारी, जिसके लिए आप जुड़े रहिए अपनी रेडियो हम सफर के साथ।

फ्रेंड्स, जब इंसान दुनिया की भीड़ और परेशानियों से थक जाता है, तब एक जगह ऐसी होती है जहां उसे बिना किसी शर्त के अपनापन मिलता है, और वो जगह है परिवार। परिवार वो अनमोल रिश्ता जहां हमारी खुशियां बांटी जाती हैं, दुखों से सहारा मिलता है और हर परिस्थिति में साथ निभाया जाता है। माँ का स्नेह, पिता का मार्गदर्शन, भाई बहनों की नोकझोंक और अपने बड़ों का आशीर्वाद, यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। परिवार केवल खून का रिश्ता ही नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम, त्याग और संस्कारों की वह डोर होती है जो हर व्यक्ति को मजबूती से जोड़ कर रखती है। दोस्तों, और हमने देखा भी था, जब पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा था, तब हर कोई अपने परिवार और घर की ओर भाग रहा था, क्योंकि मालूम था अपना घर और अपना परिवार ही वो जगह है जहां इस महामारी में भी हम सुरक्षित हैं।

साथियों, आज की तेज भागती दुनिया में लोग काम और मोबाइल की दुनिया में इतने व्यस्त हो गए हैं कि परिवार के साथ समय बिताना कम होता जा रहा है। ऐसे समय में हमें परिवार के महत्व को समझाने और रिश्तों की मिठास बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इसी उद्देश्य से हर वर्ष 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इस दिवस की शुरुआत यूनाइटेड नेशन द्वारा वर्ष 1993 में की गई थी। इसका उद्देश्य लोगों को परिवार के महत्व के प्रति जागरूक करना तथा परिवारों में प्रेम, एकता और सम्मान की भावना को बढ़ावा देना है। दोस्तों, परिवार हमारे जीवन की पहली पाठशाला होती है। यहीं से हमें अच्छे संस्कार, अनुशासन, सहयोग और जिम्मेदारी निभाने की सीख मिलती है। एक मजबूत परिवार ही एक अच्छे समाज और विकसित राष्ट्र की नींव बनाता है। साथियों, परिवार वो आईना है जहाँ इंसान अपनी असली पहचान पाता है। दुनिया चाहे कितने भी बदल जाए, परिवार का साथ हमेशा हौसला देता है। रिश्तों की गर्माहट और अपनों का प्यार ही जीवन को खुशहाल बनाता है। जिस घर में प्रेम, सम्मान और एकता होती है, वही घर स्वर्ग के समान लगता है। इसलिए अपने परिवार को हमेशा महत्व देना चाहिए। चाहे हम कितने भी बिजी हों, परिवार के लिए टाइम जरूर निकालना चाहिए। पूरे दिन में एक टाइम ऐसा होना चाहिए जिस समय पूरा परिवार एक साथ मिलकर बैठे बातें करें, एक दूसरे को समझें। फ्रेंड्स, परिवार को सबसे ऊपर रखें। और जब इन्हीं बातों के साथ हमारी इस विषय पर बातें बस यहीं तक। अब चलिए चलते हैं म्यूजिकल वर्ल्ड में और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरव

0: 15 मई 1864 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। हिंदी साहित्य के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। फ्रेंड्स, तो आइए आज इनके जयंती पर हम इन्हीं से जुड़ी वार्ता सुनते हैं। वार्ता का विषय है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सामाजिक और साहित्यिक योगदान। वार्ताकार हैं दीपाली तिवारी।
1: दोस्तों नमस्कार, आज की वार्ताकार मैं हूं दीपाली तिवारी, कक्षा 11 से, और आज हम चर्चा करेंगे एक महान व्यक्तित्व जिनका नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आइए चर्चा करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के सामाजिक और साहित्यिक योगदान की। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के इतिहास में एक ऐसे महान व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने न केवल साहित्य को नई दिशा दी बल्कि समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जीवन संघर्ष, अनुशासन, आदर्श और कर्मठता का अद्भुत उदाहरण था। वे केवल एक साहित्यकार ही नहीं थे बल्कि समाज के जागरूक मार्गदर्शक, श्रेष्ठ संपादक, राष्ट्रप्रेमी और प्रेरणादायक चिंतक भी थे। हिंदी भाषा और साहित्य को आधुनिक स्वरूप देने में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी कारण हिंदी साहित्य के एक इतिहास में एक युग को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 15 मई 1864 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गाँव में हुआ था। उनका परिवार सामान्य आर्थिक स्थिति वाला था, लेकिन बचपन से ही उनमें ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा थी। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अध्ययन जारी रखा और अपने परिश्रम, आत्मविश्वास के बल पर उच्च ज्ञान प्राप्त किया। प्रारंभिक जीवन में उन्होंने रेलवे विभाग में नौकरी की, परंतु उनका मन साहित्य और समाज सेवा में अधिक लगता था। वे निरंतर अध्ययन करते रहे और धीरे धीरे हिंदी, संस्कृत, मराठी, बंगला तथा अंग्रेजी भाषाओं का अच्छा ज्ञान अर्जित कर लिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व अत्यंत सरल, अनुशासित और आदर्शवादी था। वे सादगी पूर्ण जीवन में विश्वास रखते थे। उनके विचारों में देशभक्ति, समाज सुधार और नैतिकता की स्पष्ट झलक दिखाई देती थी। वे मानते थे कि साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज को सही दिशा देने का माध्यम होना चाहिए। यही कारण है कि उन्होंने अपने साहित्य और संपादन कार्य के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। उनका सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक योगदान हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती के संपादन के रूप में माना जाता है। उन्होंने लगभग 17 वर्ष तक इस पत्रिका का संपादन किया। उनके संपादन काल में सरस्वती केवल एक पत्रिका नहीं रही बल्कि हिंदी साहित्य और समाज सुधार का सशक्त मंच बन गई। उन्होंने अनेक नए साहित्यकारों को आगे बढ़ने का अवसर दिया। उनकी प्रेरणा से कई प्रतिभाशाली लेखकों और कवियों ने साहित्य जगत में अपनी पहचान बनाई। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी गद्य और भाषा को व्यवस्थित और परिष्कृत स्वरूप प्रदान किया। उस समय हिंदी भाषा में एक रूपता का अभाव था। उन्होंने भाषा को सरल, शुद्ध और प्रभावशाली बनाने पर विशेष बल दिया। वे मानते थे कि भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे सामान्य जनता आसानी से समझ सके। द्विवेदी जी केवल साहित्यकार ही नहीं बल्कि समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों और अंधविश्वासों का विरोध किया। उस समय भारतीय समाज अनेक सामाजिक बुराइयों से ग्रस्त था, जैसे बाल विवाह, जाति भेद, अशिक्षा, पर्दा प्रथा और स्त्री शिक्षा का अभाव। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इन समस्याओं के विरुद्ध आवाज उठाई और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति महिलाओं की शिक्षा और समाज के बिना संभव नहीं है। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना की भावना स्पष्ट दिखाई देती थी। उस समय भारत अंग्रेजों की गुलामी में था और देश में स्वतंत्रता आंदोलन की लहर उठ रही थी। द्विवेदी जी ने अपने साहित्य के माध्यम से लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई। उन्होंने भारतीय संस्कृति, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता पर बल दिया। वे चाहते थे कि भारतीय समाज शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से मजबूत बने और विदेशी शासन का विरोध करे। उनके लेखों में राष्ट्र प्रेम और सामाजिक जिम्मेदारी की प्रेरणा मिलती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का साहित्य अनेक विषयों

0: से समृद्ध है। उन्होंने निबंध, आलोचना, कविता, अनुवाद और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है। उनकी लेखन शैली सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली थी। वे अपने विचारों को तर्क और उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत करते थे, जिससे पाठकों पर गहरा प्रभाव पड़ता था। उन्होंने साहित्य को केवल कल्पना तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे समाज और जीवन से जोड़ने का प्रयास किया। हिंदी साहित्य में आलोचना परंपरा को विकसित करने में भी उनका बड़ा योगदान रहा। उन्होंने साहित्य की गुणवत्ता और उद्देश्य पर विशेष ध्यान दिया। वे साहित्य में नैतिकता, उपयोगिता और समाज हित को आवश्यक मानते थे। उन्होंने साहित्यकारों को प्रेरित किया कि वे ऐसी रचनाएं लिखें जो समाज को सही दिशा दे। उनके मार्गदर्शन में हिंदी साहित्य में गंभीरता और परिपक्वता आई। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनेक साहित्यकारों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया। मैथिली शरण गुप्त जैसे महान कवि को साहित्य जगत में स्थापित करने का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। उन्होंने युवा लेखकों को सही दिशा दिखाई और उनकी प्रतिभा को निखारा। वे नए लेखकों की रचनाओं को ध्यान पूर्वक पढ़ते थे और उन्हें सुधार का सुझाव देते थे। उनका यह गुण उन्हें एक आदर्श गुरु और मार्गदर्शक बनाता है। उनका जीवन हमें यह शिक्षा देता है कि कठिन परिस्थितियों में भी परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास के बल पर महान उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी स्वार्थ को महत्व नहीं दिया। वे सदैव समाज और राष्ट्र के हित में कार्य करते रहे। उनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रेरणादायक, वे समय के पाबंद, कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति थे। उनके जीवन में सादगी और उच्च विचारों का अद्भुत समन्वय दिखाई देता था। आज के समय में भी महावीर प्रसाद द्विवेदी के विचार अत्यंत प्रासंगिक हैं। जब समाज अनेक चुनौतियों और नैतिक संकटों का सामना कर रहा है, तब उनके आदर्श हमें सही दिशा दिखाते हैं। उन्होंने शिक्षा, जागरूकता, नैतिकता और सामाजिक सुधार को जीवन का आधार माना। उनके विचार आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। यदि युवा वर्ग उनके आदर्शों को अपनाए तो समाज और राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित हो सकती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का निधन 21 दिसंबर 1938 को हुआ, लेकिन उनके विचार और योगदान आज भी अमर हैं। हिंदी साहित्य और समाज सुधार के क्षेत्र में उनका स्थान अत्यंत ऊंचा है। उन्होंने हिंदी भाषा को नई पहचान दी और साहित्य को समाज सेवा का माध्यम बनाया। उनके प्रयासों से हिंदी साहित्य में नई चेतना और जागरूकता आई। दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी एक आदर्श व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने अपने जीवन को साहित्य, समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनका साहित्यिक और सामाजिक योगदान हिंदी जगत के लिए अमूल्य धरोहर है। वे केवल एक लेखक नहीं बल्कि युग निर्माता थे। उनकी शिक्षाएं, विचार और आदर्श आज भी हमें प्रेरित करते हैं कि हम समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को समझें और ईमानदारी तथा समर्पण के साथ अपने जीवन को सार्थक बनाएं। हिंदी साहित्य के इतिहास में उनका नाम सदैव सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता रहेगा। धन्यवाद।
1: दोस्तों, तो हमने जाना इस वार्ता के द्वारा बहुत सारी बातें आचार्य हजारी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में, जिनके जिनसे जुड़ी बहुत सारी बातें हमें प्रेरणा देती हैं। दोस्तों, वार्ता का विषय था महावीर प्रसाद द्विवेदी, सामाजिक और साहित्य योगदान। वार्ताकार थी दीपाली तिवारी। इसी के साथ हमारा ये क्रम यहीं तक। अब चलिए फिर से चलते हैं म्यूजिकल वर्ल्ड में और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, आकाशवाणी केवल एक रेडियो सेवा नहीं बल्कि देश की आवाज है और जनता से जुड़ने का सबसे विश्वसनीय माध्यम है। वर्षों से ये लोगों तक समाचार, शिक्षा, संस्कृति और महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाने का कार्य कर रही है। इसी क्रम में आकाशवाणी @19 कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक करने और उपयोगी जानकारियां देने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, और आज इस विशेष चर्चा में हम आज जानेंगे आपातकालीन नंबरों के बारे में, ताकि किसी भी संकट या दुर्घटना के समय लोग तुरंत सहायता प्राप्त कर सकें। भारत में प्रमुख आपातकालीन नंबर 112 है, जिस पर कॉल करके पुलिस, एम्बुलेंस और अग्निशामक सेवा की सहायता ली जा सकती है। इसके अलावा महिलाओं के लिए 1091, बच्चों की सहायता के लिए 1908 और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 108 जैसे महत्वपूर्ण नंबर भी उपलब्ध हैं। फ्रेंड्स, इन आपातकालीन नंबरों की जानकारी प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक है, क्योंकि सही समय पर मिली सहायता किसी की जान बचा सकती है। हमें स्वयं जागरूक रहना चाहिए और दूसरों को भी बताना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये जानकारी यहीं तक। अब चलिए चलते अपने आज के खास क्रम की ओर, जो है रोजगार सूचना, जिसमें हमारी रोजगार से जुड़ी आज की जानकारी है। दोस्तों, रेलवे RRB ने अपना रिक्वायरमेंट जारी किया है, जिसका आवेदन 13 मई से शुरू हो चुका है और इसकी लास्ट डेट 14 जून तक है। बाकी की जानकारी आपको इसकी वेबसाइट indianrailways.government.in पर मिल जाएगी। इसी के साथ हमारा ये क्रम यहीं तक। अब चलिए चलते हैं म्यूजिकल वर्ल्ड में और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

अभी युवा श्रोता अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी सुन रहे थे। 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं।

0: सब बहिन लोगन के राम राम। बहिन लोगन, देखे बैठकी के माध्यम से आज फिर हम लोगन के मुलाकात हो रहल बा। आप सब लोगन के का हाल चाल बा? उम्मीद बा आप सब लोग कुशल से हुई हैं। काहे से कि देखें बहन लोगन, आज गांव देहात में भी शहरीकरण के असर तेजी से बढ़त जात रहल बा और लोग अपन परंपरा और संस्कार से धीरे धीरे दूर हो जात बाटन। बाकी परिवार आज इंसान के सबसे मजबूत सहारा मानल जाला। परिवार से प्रेम, सम्मान, अनुशासन और अपनापन के सीखे के मिलेला। दुख सुख के हर घड़ी में परिवार आदमी के हिम्मत बढ़ावेला। संयुक्त परिवार में देखें बहन लोगन, बच्चा जब बड़ा होला, छोट होला, जैसे जैसे बढ़ेला अपने संस्कार के और बड़ बुजुर्गन के आदर के सीखेला। परिवार के बिना जीवन सूना और बेजान लगेला। काहे कि हम लोगों का दिन और रात देखें परिवार के साथ ही बीतेला। यही से बदलत समय में भी परिवार के महत्व के हमेशा बना के रखे के जरूरत बा। हर साल देखें बहन लोगन, आज 15 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनावल जाला। ए दिन परिवार के एकता और महत्व के याद करे के अवसर होला। परिवार समाज के नींव हवे, जहाँ से संस्कार के शुरुआत भी होला। तो बहन लोगन देखें, जब माई बाप होन, अपन दादा दादी, भाई बहन के प्यार जीवन के और मजबूती से बांधेला। आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग परिवार खातिर समय कम दे पावत हुअन। यही से देखें अपन बचवा हुए, चाहे अपन बड़ बुजुर्ग भी आजकल वही काम में लग गल हुअन कि मोबाइल और इंटरनेट के कारण जोन आपस में बैठ के बातचीत होत रहल, वो सब धीरे धीरे देखत है खत्म हो जात बा। ई दिवस के मकसद भी यही हो कि परिवार के महत्व के फिर से समझावल जाए। अगर परिवार मजबूत रही तो समाज मजबूत रही और खुशहाल भी रही, तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हम लोगन के एकजुट रहे के संदेश देवेला। परिवार में बच्चा लोगन के सही गलत के पहचान सिखावल जाला। बड़ बुजुर्ग हमन उनकर अनुभव परिवार के दिशा दिखावेला। उद्दीपक की तरह जलना कि ई सही बा, ऊ गलत बा, हर चीज के बतावना। बहन लोगन, परिवार के बारे में जितना भी बात करल जाए कम बा। परिवार में जोन प्रेम और सहयोग रहे तो हर कठिनाई के आसानी से हम लोग निपटा सकेला। अगर आज जरूरत बाकी हमनी परिवार के साथे अधिक समय बिताई, जोन घर बा मन छोट छोट खुशी के एक साथ जोड़ के रखल जाए। परिवार के सम्मान करे वाला समाज हमेशा आगे बढ़ेला। ई दिवस पर हम लोग पारिवारिक संबंध मजबूत बनावे के संकल्प भी लेवे के चाहिए, ताकि परिवार में कोई भी दुख सुख होवे हम लोग मिलजुल के एक साथ होके ओके निपटा सकी। बहन लोगन देखें, परिवार के तो बात सही भी बा कि एकता जरूरी बा, और अगर देखल जाए तो जो परिवार के अपन बड़ बुजुर्ग हुवन, वो हम लोगन के राह दिखावन है, घर में उजाला रखन है उन लोगन के रहे से। तो अगर प्रकाश का बात करल जाए कि जो अंधकार होला तो इंसान के जीवन में डर और निराशा पैदा कर देला। प्रकाश से ज्ञान, उम्मीद और सकारात्मकता का सोच के प्रतीक मानल जाला। जैसे देखें सूरज के रोशनी धरती पर जीवन देला, वैसे ही शिक्षा और जागरूकता जीवन रोशन भी कर देला। प्रकाश के बिना इंसान सही रास्ता नहीं देख सकेला। उजाला आदमी के आत्मविश्वास भी बढ़ावेला और आगे बढ़े के प्रेरणा भी देवेला। तो ज्ञान के प्रकाश से अज्ञानता के अंधेरा दूर होला। जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई भी प्रकाश से ही हो जाला। यही से हर इंसान के देखें आपन जीवन उजाला से भर लेवे के चाहिए। दुख तकलीफ सबके जीवन में बा बहन लोगन, लेकिन समझदारी से अगर काम लेवल जाए तो समस्या के छोटे में ही निपटावल जा सकेला। आज के ये जोन समय हो, जोन ये भौतिकवादी समय हो, जीवन में देखें आदमी सुख सुविधा के पीछे भाग रहल बा। धन दौलत के दौड़ में मानसिक शांति धीरे धीरे खत्म हो जात बा। ये अंधाधुन जोन जीवन हो ना, इमन प्रकाश के मतलब खाली बिजली और रोशनी ना हो, बल्कि जोन असल प्रकाश हो, सही सोच हो और सच्चाई, ईमानदारी, सच्चा ज्ञान, ये सब में बसल होला। अगर मन में अच्छाई के उजाला न रही, सच्चाई के उजाला न रही, तो बाहरी चमक जोन हो बिल्कुल बेकार हो बहन लोगन। अपने आप के हमेशा, जैसे हम लोग कोई चीज के चमकाई ला, चांदी का पायल हम लोग का गंदा हो गया, लोग के भाई चलत साफ कर ले, घर द्वार हमेशा सफाई करी ला, वैसे ही अपने भी मन में प्रकाश के उजाला हमेशा जलाए रखे के चाहिए, हमेशा अंधेरा के सफाई करे के चाहिए। ये जोन प्रकाश हो इंसान के सही राह दिखावे वाला शक्ति होला। ये हम लोगन के भीतर सकारात्मक ऊर्जा भी भर देला। यही से भौतिक सुख के साथ जोन मानसिक उजाला भी जरूरी बा। तो भौतिकवादी युग में बहन लोगन मशीन जैसन जिंदगी जिए से अच्छा बा कि आपसी प्रेम और मानवीय भावना धीरे धीरे अपने अंदर बढ़ावे के बा। अब देखे कि यह मिलत बा कि ये सब चीज़ खत्म हो जात बा, लेकिन हम लोगन के कोशिश करे के बा कि जो चीज़ खत्म हो गल बा ओके फिर से प्रयास करके घर में परिवार में समाज में एकता के और बढ़ावे के बा। इस समय में प्रकाश के मतलब मानवता और नैतिकता के उजाला हवे। ज्ञान और संस्कार के रोशनी समाज के सही दिशा दे सकेला। प्रकाश के बिना जीवन में भ्रम और तनाव बढ़ जाला। जवन आदमी भीतर से जागरूक होला उहे सही निर्णय भी ले सकेला। अगर हम जागरूक हई, हम पढ़ल लिखल हई, हम शिक्षित हई, तो हम आवे वाले समय में जो भी हमार फैसला होई उ सही होई, हमरे परिवार के लिए सही होई, हमरे समाज के लिए भी सही होई। सच्चा प्रकाश जो है इंसान के दूसरन के मदद करे के प्रेरणा भी देवेला। यही के साथे बहन लोगन जो शिक्षा का बात करल जात बा, देखें आजकल कहीं कहीं देखे के मिलत बा कि बाल विवाह भी अभी भी दुनिया में समाज में हो रहल बा। तो बाल विवाह एक गंभीर समस्या बा। ऐसे अपन जोन बिटिया होवन चाहे बिटवा होवन सबकी जिंदगी समझला कि खराब हो जाला, जो सुनहरा भविष्य हो खराब हो जाला। कम उम्र में जो शादी कर देवल जाला उसे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ला। तो ओके भी रोके के चाहिए हम लोगन के, और हमेशा सोच समझ के शिक्षित होके आगे बढ़े के चाहिए। तब दुनिया में और समाज में अपन भी नाम रोशन हुई और अपने बचपन का भी नाम रोशन हुई। तो बहन लोगन देखें आज परिवार में आपसी समझ और आपसी तालमेल कैसे बनावल जाए, यही बात के बाद बत कही हुई अपन श्रीमती कविता राय बहन आज जुट गए हैं। आप एक गृहिणी हैं और आपसे बातचीत भैलो अपन बतासा बहन के, तो हम तो कथी बिना देर के लिए चलाएं लोकन बातचीत सुनल जाए।
1: श्रोताओं नमस्कार।
2: श्रोताओं, परिवार समाज की एक छोटी इकाई के रूप में मानी जाती है। परिवार के सदस्यों में जब तक त्याग, मोह और प्यार का भाव बना रहता है, तब तक उसकी सुदृढ़ एकता को आंच नहीं आने पाती। परिवार में रहने वाला प्रत्येक सदस्य कर्तव्यों को प्रधान और अधिकारों को गौण मान अपने से पहले दूसरों की सुख सुविधा को प्राथमिकता दे तो आपस में मनमुटाव चाहे अलगाव की स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होगी। परंतु कब किससे कहां ऐसी बातें हो जाती हैं कि परिवार में खटास उत्पन्न होने के साथ साथ सब कुछ छूटने और टूटने लगता है। परिवारों में समस्याएं आखिर उत्पन्न कैसे हो जाती हैं और उसका समाधान कैसे होना चाहिए ताकि परिवार का मूल रूप हमेशा बना रहे। बात करेंगे इस बारे में श्रीमती कविता राय जी से, जो कि एक कुशल गृहिणी की श्रेणी में गिनी जाती हैं। तो चलिए बात करते हैं। कविता राय जी, आपका सबसे पहले तो हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी नमस्कार संजय जी।
2: नमस्कार। और आज देखें परिवार जैसे संवेदनशील विषय पर कुछ चर्चा करेंगे, आपकी राय जानेंगे, पर सबसे पहले हम आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं कविता जी, और आप अपने परिवार के बारे में भी कुछ बताएं।
3: जी मैं एक गृहिणी हूँ और 86 में मेरी शादी हो गई थी जी। मेरे सास ससुर भी इसी ओबरा में थे, मेरे ससुर एक्सियन थे और मेरे पिताजी पुलिस में थे
2: जी।
3: तो शादी तो इसी ओबरा में एक साथ ही हो गई, कहीं और जाना नहीं पड़ा।
2: मेरे साथी मतलब
3: कॉलोनी में ही थे हम दोनों।
2: अच्छा, मतलब और सारे सामने
3: ओबरा में बीता, सनसी से लेके मैं आज तक ओबरा में ही
2: जी जी।
3: कहीं जाना भी नहीं पड़ा मेरे पिताजी को लड़का ढूंढने भी और ओबरा में लड़का मिल गया और शादी भी इन्होंने कर दी। और उसके बाद धीरे धीरे मैं जब अपन परिवार में, उसमें मेरा परिवार काफी बड़ा था
2: जी।
3: मेरे सास जी के साथ मेरे चाचा ससुर, मेरे चचिया सास, यहाँ तक कि मामा सास, मामिया सास, मामा ससुर जी,
2: मतलब एक संयुक्त परिवार,
3: एक संयुक्त परिवार मेरे परिवार में था जब मैं शादी करके आई थी। तो
2: जी जी।
3: सभी लोग एक साथ ही रहते थे। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय होता गया, लोग अपने कामों में व्यस्त होते चले गए। चाचा ससुर जी का ट्रांसफर अनपढ़ा हो गया, मामा ससुर जी अपने में बिजी हो गए
2: जी,
3: और मौसिया सास ससुर जी भी अपने अपने व्यस्तता में लग गए। तो धीरे धीरे फिर करके छोटा परिवार होता चला गया। जैसे मैं रही और मेरी एक ननद थी बस, मेरी दौरान जेठान तो भी नहीं थी, लेकिन हाँ चचिया सास की थी लोग, तो उन लोग से भी आना जाना लगा ही रहता था। इसी तरह से अब क्या है, कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, सास ससुर भी साथ में रहे। अब 2 साल हुआ सास ससुर भी मेरे स्वर्गवासी हो गए हैं
2: जी।
3: तो इस समय
2: तो जीवन की कटु सच्चाई है कि जो आया है उसको जाना ही जाना है। कविता जी कहते हैं कि परिवार समाज की एक छोटी इकाई है, परिवार में संयुक्त परिवार और एकल परिवार होता है
3: जी।
2: पहले के लोग देखें मिलजुल कर तमाम रिश्ते नाते, जैसे अभी आपने बताया दादा दादी, मामा मामी, भाई बहन, ननद भाभी, नाती पोते, मैंने सबको जोड़ करके चलाते थे
3: जी।
2: पर जैसे जैसे समय आगे की ओर बढ़ता गया, परिवारों में खंडन होता गया और आज की ये हालत है कि बस हम दो और हमारे एक या दो, फिर भी वो परिवार खुश नहीं है। आए दिन लड़ाई झगड़े होना आम बात हो गई है। तो ये होने की वजह आप क्या मानते हैं कविता जी?
3: देखिए संजय जी, हमारी भारतीय संस्कृति में पूरे

0: विश्व को ही परिवार माना गया है
1: जी।
0: अक्सर हम लोग सुनते भी हैं कि वसुधैव कुटुंबकम,
1: बिल्कुल
0: जुड़ना है तो पूरे विश्व से जुड़ सकते हैं और टूटना है तो व्यक्ति अपनी परछाई से भी डर जाता है।
1: बिल्कुल,
0: ये हमारी खुद की सोच निर्भर करती है कि हम सबको साथ लेकर चले या खुद को भी नफरत करने लगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: अपनी सोच पर निर्भर करता है। हमने महसूस किया है संजू जी कि जीवन शैली में बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा है।
1: बिल्कुल,
0: जिस परिवर्तन को स्वाभाविक तौर पर स्वीकार किया जाता है और करना चाहिए, वहाँ सुख शांति है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि जैसे मेरी दादी या नानी का जीवन था वैसा मेरा या मेरे सास का नहीं।
1: जी,
0: फिर हम अपनी बेटी या बेटो या बहू या दामाद का जीवन खुद कैसा, मतलब ऐसा क्यों चाहते हैं?
1: ये बात तो बिल्कुल सही है जी। कविता जी, देखिए एक आम ये समस्या है सास बहू का आपस में सामंजस्य
0: जी।
1: अगर दोनों का तालमेल ठीक बना तो ठीक, नहीं तो बात बात पर ताने मारना, छींटा कसी करना
0: जी, जी।
1: एक दूसरे के परिवारों पर दोष मढ़ना, कमियां निकालना जैसे बातें होने लगती हैं।
0: जी जी,
1: तो आखिर गलती किससे होती है और कहाँ होती है और इसका समाधान क्या होना चाहिए?
0: देखिए जी, अब क्या किताबों की बातें हैं, समान तौर पर नहीं बल्कि हजार परिवारों में कि दो ही परिवार ऐसे होंगे जो संयुक्त परिवार है
1: जी,
0: और लोग एक छत के नीचे चूल्हे बनाकर रोटी खा रहे हैं
1: जी।
0: एक मतलब एकल परिवार को भी हम बुरा नहीं मानते हैं।
1: अच्छा।
0: परिवार में बुजुर्ग या दिव्यांग या सहाय, इन लोग अनदेखी भी नहीं करना चाहिए इनके साथ, इनका तो आप पूरे देख रेख तो बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: तो सबको मिलकर इनको देखना चाहिए। और जो पहले का परिवार कोई व्यक्ति कमाता था और सभी लोग खाते थे,
1: बिल्कुल एक मुखिया घर का कमाता था और घर के जितने भी 8-10 लोग रहते थे सभी लोग खाते थे और सुकून से रहते थे।
0: अब परिवार का प्राय हर सदस्य कमाता है फिर भी सुख शांति नहीं है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने जी।
0: इसकी वजह पर हमें जानना होगा जी। देखिए संजू जी, हमने अपने को खुद की बुनी हुई जाल में फंसा लिया। जैसे कि जरूरतें तो तीन है, जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, इसके अलावा तो सभी चीजें विलासिता की हैं। हमने तो विलासिता की चीजों को भी अनिवार्य आवश्यकता में जोड़ लिया है। इन बातों को चर्चा इसलिए की जा रही है जी कि हम अपनी जरूरतों को जितना कम रखेंगे उतनी ही सुख शांति होगी, जरूरतों को बढ़ाएंगे तो परिवार में तनाव स्वाभाविक है।
1: बिल्कुल। अच्छा देखें कविता जी, कि घर में कई बार काम को लेकर भी परिवार के लोगों में मनमुटाव होने लगते हैं। अगर परिवार में 2-4 बहुएं हैं तो सब एक दूसरे को देख करके काम करने से अपना जी चुराती हैं और बहाने बनाने का प्रयास करती हैं। सोचती हैं कि काम बस हम ही क्यों करें, और भी तो सब है वो करें
0: जी जी।
1: यहाँ एक दूसरे को देखने के चक्कर में काम तो समय से हो नहीं पाता, उल्टा झगड़े की वजह बनती रहती है
0: जी जी।
1: तो इनके बीच की ऐसी सोच मिटे, इसके बारे में क्या कहेंगे आप?
0: जी देखिए संजू जी, घर में जब 4 बहुएं हैं
1: जी,
0: तो चारों को मिलकर ही अपने काम को सुलटाना होगा। अब जैसे कि अब कोई एक सुबह का काम देख ले, घर में किचन में कोई सब्जी काट दे, कोई चावल है उसको देख ले, कोई आटा गूंथ ले, तो फिर तकरार होगा ही नहीं।
1: होगा नहीं, बिल्कुल बात सही है कि मतलब घर में अगर 4 बहुएं कोई सुबह से लगी है कर रही है तो वो भी बेचारी थक जाती है,
0: थकी जाती
1: और एक बिल्कुल कुछ नहीं कर रही है, तो थोड़ा सा ये गलत तो लगता है।
0: चार जहाँ तो चारों को मिलकर ही घर को संभालना पड़ेगा। और उसमें तो हर चीज के लिए अगर आप थोड़ा भी सोचेंगे कि मैं इधर बैठ गई उधर बैठ गई और उधर टाइम पास करेंगे तो दूसरी बहू को तो बुरा लगेगा ही।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो सबको घर के अंदर मिलके ही सब पूरे खाने का खाना बनाए और अपने घर के काम को अगर देखती हैं तो बहुत ही अच्छा है, तब वहाँ पर लड़ाई झगड़े की कोई बात उठेगी ही नहीं। अगर समस्या होती है तो घर के मुखिया है ही है
1: जी।
0: सबको बैठा के, सबका तालमेल बैठाए, सबको समझाए कैसे रहना है क्या करना है। भाई परिवार तो परिवार है, जहाँ मिलके हम रहेंगे वहाँ सबसे अच्छी मजबूती है।
1: बिल्कुल। और जो घर की सासू माँ है या फिर जो घर के जैसे जेठानी, कभी कभी कई परिवारों में सास नहीं होती है
0: जी जी,
1: तो जो घर के सबसे बड़ी जेठानी कह लें वो भी देखें समझदारी का परिचय,
0: समझदारी के परिचय
1: अपने से छोटे लोगों को
0: जी, उनको करना ही चाहिए। अब मैं तो बड़ी हूँ, 3 ऐसा है कि मैं अहंकार में रहूं कि मैं तो बड़ी हूँ, मैं जेठान हूँ, मैं क्यों उसमें जाऊं करने, उनको भी साथ में लेके हर चीज को चलना चाहिए, तभी वो परिवार इकट्ठा रह सकता है और चल सकता है।
1: जी जी बिल्कुल। अच्छा देखें, बच्चों की वजह से भी कई बार विवाद खड़ा हो जाता है परिवारों में, उनके शिक्षा व संस्कार को लेकर के घर के बड़े लोग आपस में रंजिशें खड़ा कर लेते हैं, जबकि देखें बच्चे पल में झगड़ा किए और पल में ही एक साथ फिर हो जाते हैं
0: जी जी।
1: पर घर के जो बड़े लोग हैं उनमें क्रोध, द्वेष और घृणा जैसी गतिविधियां हावी होने लगती हैं
0: जी जी।
1: तो इसे कैसे मिटाया जाए कविता जी?
0: देखिए, जब बच्चों के समझाने के बजाय उन्हें जो सह देते हैं, गलतियां माँ बाप यही करते हैं। देखिए जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। अब बड़े हैं, गलती करेंगे तो बच्चे छोटे करेंगे ही पीछे पीछे,
1: जाहिर सी बात है।
0: तो बड़े को क्रोध, द्वेष, घृणा ये सब चीजें करनी नहीं चाहिए बच्चों के सामने। जो चीज है उनको समझा के रखना चाहिए कि हाँ कहाँ गलती हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है। घर में अगर लड़ाइयाँ बच्चों में होती है तो ये नहीं है कि हाँ मेरा बच्चा गलती नहीं कर रहा वही बच्चा गलती कर रहा है, उसको भी उसको समझाना चाहिए कि नहीं तुम भी गलती किए हो और वो भी गलत किया, तो उसको भी समझाना चाहिए भाई मेरा बच्चा करके नहीं गलती किया और दूसरे बच्चे को अपराध दोषी बनाना, ये भी सबसे गलत बात है। तो आप सब बच्चों को मिलाकर समझाइए, समझिए कि हाँ बड़ा समझा रहा है तो वे सब बच्चे समझेंगे ही। और ऊपर से मोबाइल ऐसी चीज है कि आजकल मोबाइल के चक्कर बच्चे और ज्यादा उद्वेलित हो रहे हैं।

0: है।
1: जी
0: अगर
1: बिल्कुल
0: उनके हाथ में मोबाइल ना दिया तब बच्चे परेशान हो जाते हैं, हमेशा उनके हाथ में मोबाइल रहता है, अगर एक दो मिनट के लिए आप ले लेती हैं तो परेशान हो जाते हैं।
1: बिल्कुल, पहले से देखे बच्चे होते थे कि गिल्ली डंडा खेलते थे, खो खो है, कबड्डी है, तो उनकी संगति जो है कि आपस में लोगों के बीच में रहती थी बच्चों में। आज ये आजकल जो मोबाइल है, जो थोड़ी देर के लिए हमको सारी समस्याओं का निदान मिल सकता है मोबाइल से, लेकिन हम 24 घंटे दिन भर अगर मोबाइल में रहेंगे तो जाहिर सी बात है
0: बच्चे छिछड़ी हुई
1: तो चिड़चिड़ापन तो होना स्वाभाविक है
0: जी। इसलिए आप अपने बच्चों को मोबाइल से तो एकदम दूर रखिए,
1: जितना ही रखे
0: उतना
1: ही
0: नहीं जरूरत की।
1: ऑनलाइन
0: पढ़ाइयां होने लगी हैं और वो मोबाइल के अंदर इतने सारे ऐसे ऐसे गेम डाउनलोड बच्चे कर लेते हैं जिसको देख के खेलने से उनके मन के ऊपर काफी कुछ गलत प्रभाव पड़ता है।
1: जी जी बिल्कुल।
0: इससे अच्छा है कि आप अपने संरक्षण में रह के फोन को ऑन करिए, उनको दीजिए कि आपका बच्चा देख क्या रहा है, क्या नहीं देख रहा है, ये सब चीजों पर आप ध्यान दीजिए बच्चों पर।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और ध्यान देने की बात की है तो देखिये संयुक्त परिवार में प्राय ये भी देखा जाता है कविता जी की जो घर की बहुएं होती है घर के सभी सदस्यों को खाना पानी खिलाने के बाद ही तब अंत में खाना खाती हैं।
0: जी जी।
1: तो देखिए उनका स्वास्थ्य दिन पर दिन ऐसे तो कमजोर होता जाता है।
0: जी जी।
1: तो इसे आप क्या शिष्टाचार संस्कार कहेंगी या अत्याचार कहेंगी?
0: जी ऐसा है ना संजय जी, देखिए अभाव के कारण अब बहुओं का स्वास्थ्य ठीक न हो तो बात दूसरी है। समान तौर पर संयुक्त परिवार विघटित हो गए हैं। देखिए परिवार एक साथ था, सबको टाइम मिलता था, अब क्या है ना कि हम दो हमारे दो का अत्याचार की बात तो रही नहीं, संस्कार सबके हैं। बहू का संस्कार है बड़ों का ख्याल रखे, तो बड़ों का भी फर्ज है कि बहू की चिंता करे।
1: बिल्कुल।
0: ये पढ़ी लिखी बहू है तो उसे अपने स्वास्थ्य का खुद ख्याल रख लेगी, पौष्टिक जो आहार की जानकारी होगी खुद ख्याल रखेगी, क्योंकि जब वो खुद नहीं ख्याल रखेगी तो बड़े का क्या ख्याल रखेगी?
1: बिल्कुल।
0: तो खाएगी पिएगी तभी तो वो भाई स्वस्थ रहेगी, तभी वो आगे भी अपने बड़ों का ख्याल रख पाएगी।
1: घर की घरनी कही जाती
0: है। इसलिए स्वस्थ रहेंगी, समय से नाश्ता करेंगी, समय से खाएंगी, सुबह उठ के हर काम अगर समय से करेंगे तो हर चीज उनका अपने आप रूटीन में होता चला जाएगा।
1: जी बिल्कुल। अक्सर परिवारों में एक जघन्य अपराध जैसी समस्या भी मैंने देखी है कविता जी, बच्चों के जन्म को लेकर। देखिए बेटा अगर पैदा हुआ तो वाहवाही होती है, ढोलक मंजीरे बजाए जाते हैं, वहीं अगर बेटी हुई तो घर में जैसे शोक जैसा माहौल बन जाता है, सबके चेहरे की रौनक ही जैसे गिर जाती है। खास तौर पर घर की सासू माँ जो कि वो खुद भी एक बेटी है एक माँ है, उनका व्यवहार जो है बहू के प्रति काफी क्रूर सा हो जाता है, तो इस तरह की मानसिकता से निपटने के लिए क्या होना चाहिए?
0: देखिए संजय जी, परिवार ही नहीं बल्कि बहुत सी समस्याओं का समाधान शिक्षा है। ये बेटा बेटी के जन्म का अंतर के भाव को शिक्षित करके ही समाप्त किया जा सकता है। ये बेटी का जन्म पर सास का क्रूर व्यवहार कदापि ठीक नहीं है। बेटियां बेटों के अपेक्षाकृति से परिवार से ज्यादा स्नेह करती हैं। अगर घर में शिक्षा हो तो उनको भी समझ में आएगा कि आज की बेटियां क्या कर रही हैं।
1: जाहिर सी बात है। जी।
0: पायलट से लेके फ्लाइट भी चला रही हैं, यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रपति देख ही रही हैं।
1: बिल्कुल।
0: द्रौपदी मुर्मू हमारे देश के राष्ट्रपति हैं और एक नहीं दूसरी राष्ट्रपति हैं। प्रतिभा पाटिल पहले रही हैं, फिर ये रही हैं, हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही हैं। तो अब ये चीज तो रही नहीं गई कि बेटा और बेटी में क्यों अंतर रखें, बस शिक्षा का थोड़ा अभाव है।
1: जी।
0: जहाँ शिक्षा रहेगी वहाँ ये भी चीज नहीं रहेगा।
1: बिल्कुल कविता जी, बड़ी अच्छी बात हुई इस संवेदनशील विषय पर। अब परिवार को खुश रखने और खुश रहने का मूल मंत्र क्या देंगी हम सबको?
0: देखिए परिवार में तकरार और नोकझोंक से प्यार बढ़ता है, लेकिन जब यही तकरार झगड़े और विवाद में बदल जाए तो घर स्वर्ग तो नहीं बन पाता, पर घर के लोगों की स्थिति स्वर्गवासी जैसे जरूर हो जाती है। जैसे हम जैसा करेंगे वैसा ही मिलेगा। घर परिवार या समाज में जैसा रहते हैं वैसा ही लौट कर आता है। देखिए संजू जी,
1: जी।
0: संतोष ही परम सुख का आधार है। त्याग ही किसी भी व्यक्ति को यश ही नहीं बल्कि विवाद से भी बचाता है। अपने से ज्यादा परिवार के प्रति प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ेगा, मन मुटावा ना हो। अगर हम भगवान श्री राम के आदर्शों को अपनाएं जो परिवार को खुश रखने का मूल मंत्र है, इसलिए आपस में जितना हो सके एक साथ रहिए, एक दूसरे की बात को सुनिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए, हर लोगों के बारे में बातें करेंगे, हर लोग की सुनेंगे, इच्छाओं पर ध्यान देंगे तो मन मुटावा होना ही नहीं उस परिवार में।
1: बिल्कुल सही कहा कविता जी आपने। तो श्रोताओं, आप थी श्रीमती कविता राय जी जो कि एक कुशल गृहिणी के रूप में जानी जाती हैं, और ये बात बिल्कुल सही है बहनों कि परिवार के जीवन की गाड़ी सदस्यों के त्याग, प्रेम, उदारता, सेवा, सहनशीलता और परस्पर आदर भाव पर ही चलती है। इसीलिए परिवार को सह अस्तित्व, सामूहिक जीवन और सहिष्णुता की पाठशाला कही जाती है। हम अकेले परिवार में रहकर थोड़ा सुख संतुष्टि पा सकते हैं, पर असली सुख संतुष्टि सम्मिलित परिवार की छोटी बड़ी नोकझोंक, डांट फटकार, शिक्षा संस्कार में ही निहित है। इसलिए खुद के साथ साथ अपने भावी पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए परिवार का महत्व समझिए और लोगों को भी समझाइए ताकि कोई राह से न भटके। और कविता राय जी, आपसे इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: बहन लोगन, देखें इतना बढ़िया हम लोग परिवार में आपसी समझ और आपसी तालमेल कैसे बनावल जाए, ऊपर अपन कविता बहन और बतासा बहन के बातचीत सुन लिए, बहुत बढ़िया लगल और इनके दिहल जाए धन्यवाद। लेकिन ऐसे झूरे झूरे तो कोई काम होला नहीं, तो चले एक फिल्म संगीत सुनल जाए और मन मन सायल करल जाए।

इतना बढ़िया गीत संगीत के साथे साथे गर्मी का मौसम भी बा, उपे भी थोड़ा बात बत कही हो जाए हम लोगन का। काहे से कि देखें ठंडा गर्म से तबीयत खराब भी हो जाला और कहीं न कहीं थोड़ा सचेत भी रहे के जरूरत बा। जिन गर्मी के मौसम में नारियल का पानी बना बहन लोगन, ई समझ ले अमृत बा अमृत। तो गर्मी के मौसम में नारियल के पानी के जोन ई शरीर के तुरंत तरोताजा और हाइड्रेट भी करे में मदद करेला। तो जोन नारियल के पानी में प्राकृतिक मिनरल बा और जोन पोषक तत्व बा उ जोन भर भर के हो ना, तो ओके कोशिश करें कि कभी कभी एक आध नारियल का पानी मंगा के पी लेवल जाए और कोनो चीज ओकरे साथे लेवे के जरूरत नहीं बा। उसे आप तरोताजा रहिए और आपके अंदर जोन गर्मी का जोन लू रहला बहन लोगन, उसे जोन तनी तन मन अजीब सा हो जाला, सुस्ती जैसा लगेला, उस सब में आराम मिलेला। तो अपन मन मन सायन सुनत रहें और एक भी ध्यान दे रहे हैं कि नारियल पानी के अपने जीवन में जरूर शामिल कर लिए रहें।

बहन लोगन देखे मन मन साइन भी हो गल और अच्छी अच्छी बातें भी हो गल। साथ ही साथ बहन लोगन सचेत रहे की भी जरूरत बा। कहें इसकी आज का जो समय बा इतना भागम भाग जिंदगी बा कि सबके परेशानी दुख तकलीफ के साथ साथ

जो भी प्रकृति के जोन मार बा उहे भी ऊ भी झेले के पड़त बा। तो हम सब लोगन जानत है कि आवे वाला समय कठिन बा, तो ओके साथ में लेके ध्यान में रख के आगे चलें। और अब देखें फिर से एक बार और मन मनसायन के समय आ गेल बा, तो एक ठे मन मनसायन और सुन लेवल जाए।

भाई लोगन देखे इतना बढ़िया मन मनसायन भी भेल और आज के बैठकी में बहुत आनंद आयल आप लोगन के साथे मिलके और साथ साथ इतना बढ़िया बढ़िया बातचीत भइल साझा भइल। लेकिन बहन लोगन आप लोग कुशल से रहें, अच्छे से रहें और आगे बढ़ें, शिक्षित रहें, यही शुभ मनोकामना के साथ अब चले के भी बखत हो गए हो। तो चली सब बहन लोगन के राम राम।

अभी ग्रामीण महिलाएं अपना कार्यक्रम घरनी सुन रही थीं। 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 5:59 हुए हैं। 6 बजे आप गोरखपुर से अनुप्रसारित भोजपुरी समाचार सुनेंगे।

0: पाठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए मेडिकल प्रवेश बदे नीट यूपी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून के आयोजित कैदे का घोषणा कैदे हो। ये जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन के दौरान देने है। वहां के कहने की इस समय में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाला नीट यूजी परीक्षा अगला साल से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी जरिया से होगी।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा के समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री बतौने की विद्यार्थियों के परीक्षा बदे अपने पसंद का शहर चुनने का मौका मिली। दुनिया भर में कच्चा तेल के दाम में आयल उछाल के बाद तेल कंपनी पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपया प्रति लीटर का बढ़ोतरी कर दिले है। एगो रिपोर्ट।
2: दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 94.73 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 87.81 रुपए प्रति लीटर। वहीं वाराणसी में पेट्रोल की कीमत 95.83 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 89.01 रुपए प्रति लीटर हो गई है। प्रयागराज में पेट्रोल 95.30 रुपए जबकि डीजल 88.30 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक की वृद्धि की गई है, तब भारत में पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाराजगंज जिला में 208 करोड़ रुपया से बेसी की लागत का 79 विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास कैले। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री कहले कि वैश्विक संकट से देश के उबारे बदे हर नागरिक के अपन योगदान देवे खातिर तैयार रहे के चाहे।
3: ईंधन से जुड़े हुए मामले हो, खाद्यान्न से जुड़े हुए मामले हो, फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर मैं सभी ज्वेलर्स से सराफा व्यवसायों से भी अपील करूंगा, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि विदेश से सोना मंगाने की बजाय हमारे घरों में जो सोना है उसी की मरम्मत कराना, उसी को रिपेयर करवाना, उसी को रिमॉडलिंग करवाना, उसी पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हम सब अगर उस दिशा में कार्य करेंगे, अपना पैसा बचाना है, देश का पैसा बचाना है और देश का पैसा बचा करके इस संकट, इस वैश्विक संकट से हम अपने देश को उभारने का काम करेंगे।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहरिया बाद गोरखपुर पहुंचने हैं। वहां के बिहने गोरखपुर में प्रदेश के चौथा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन कई के नई धरब। एगो रिपोर्ट।
4: गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग स्थित ताल नंदोर में बनने वाला यह इंटरनेशनल स्टेडियम 392.94 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। निर्माण के लिए यह पहली किस्त के रूप में 63.39 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। स्टेडियम बनाने के लिए अलाइनमेंट, मिट्टी भराई, लेवलिंग और बड़े निर्माण उपकरणों को लगाने का काम भी शुरू हो चुका है। लगभग 50 एकड़ में बनने वाले इस स्टेडियम में 30,000 दर्शक के बैठने की क्षमता होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए नारायण चौबे, गोरखपुर।
0: मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में हिस्सा लेने, साथ ही ओइजा के 495 करोड़ रुपया से बेसी की लागत वाली कई गो परियोजना का स्थलीय निरीक्षण कैले। कौशाम्बी जिला के करारी थाना क्षेत्र में महाराजगंज गांव के लगे काली देर रात ही एगो सड़क दुर्घटना में 4 गो नौजवानन के मौत हो गई, वहीं एगो नौजवान गंभीर है घायल हो गई। ये दुर्घटना वो समय भइल जब एक गांव का रहवैया 5 गो नौजवान मोटरसाइकिल पर बैठ के एगो ब्याह समारोह में जात रहे और उनकर मोटरसाइकिल का सामने से आ रहल ट्रैक्टर ट्राली से भीषण टक्कर हो गई। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।
5: 102.7 एफएम पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचन के
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम। आपों के राम राम भोला भैया। पंचायती के भैया देखा डुग डुगी बजल,
1: बिल्कुल
0: और
1: भैया,
0: डुग
1: बिल्कुल
0: डुगी बजल भैया तो बातचीत के माध्यम से बहुत सारा जानकारी सुने और समझे की मिला भैया। और आज
1: भैया, बिल्कुल। और इस समय देखते हो कि शादी ब्याह बहुत जोरों पर हो,
0: बिल्कुल
1: और इसने में जौन भी इतना तापन हुई हैं, चाहे जहाँ भी शादी ब्याह हो, पूरा घर परिवार मिल करके आदमी जौन बाकी वहाँ पहुँच जाता हो भैया,
0: एकदम
1: और
0: एकदम
1: उनकर काज संभारे में जौन बाकी अपन योगदान दे रहा हूँ।
0: एकदम
1: और निश्चित रूप से ये जौन पुरान पद्धति है हम लोगों के, कि जौन भाई की एक दूसरे से मिल करके सुख दुख में काम करे के, यह तो एक परिवार हो भैया।
0: एकदम एकदम सही कहते हो भैया। और निश्चित रूप से भैया देखा परिवार के बात आवला तो भैया देखा परिवार के हर सदस्य जौन बाकी महत्वपूर्ण होखेलन। भैया
1: बिल्कुल।
0: देखा परिवार में कई तरह के लोग होखेलन, छोटा होखेलन, बड़ा होखेलन, कोई ज्यादा कमाए वाला, कोई कम कमाए वाला।
1: बिल्कुल।
0: एक तरह से जौन बाकी एक घड़ी की घड़ी देखा भैया जो दीवार में लगल
1: हाँ
0: रहला,
1: हाँ हाँ
0: जेकरा में
1: हाँ
0: भैया देखा एक बड़ा सुई, छोटा सुई,
1: क्या
0: मीडियम
1: बात,
0: सुई
1: कोई
0: रहला,
1: तेज चलने
0: तो
1: वाला, कोई
0: सब
1: धीमा चलने
0: मिल के
1: वाला।
0: भैया देखा जौन बाकी घड़ी के जौन बाकी टाइम बतावला। वही तरह से भैया परिवार है भैया, हर लोग के जौन बाकी उपस्थिति से ही परिवार जौन बाकी मजबूत, सशक्त और भैया देखा आगे बढ़े वाला होखला।
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: निश्चित रूप से
1: बिल्कुल।
0: भैया देखा जब परिवार में एकता रहला तभी भैया समृद्धि आवला भैया।
1: अब आज जो ये परिवार के बारे में बात चलत हो भैया, तो आज के दिन जो 15 मई जौन हो, प्रत्येक वर्ष जौन बाकी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में भी मनावल जाला।
0: बिल्कुल
1: और जौन की संयुक्त राष्ट्र महासभा के माध्यम से 1993 में संकल्प कैल गेल रहल कि जौन बाकी ये प्रति वर्ष जौन बाकी 15 मई के हम
0: मनाओ
1: लोग
0: जाए भैया।
1: परिवार दिवस मनाए। परिवार दिवस मनावे के भी पीछे कई के कारण हो जा रहा बा, कि पहले जो है कि आदमी मिलजुल करके, अब देखा चारपाई निकाल के भरे शाम के सुबह आदमी, और एक दूसरे के कहानी के माध्यम से दादा दादी, चाचा चाची, और वहीं पर माता पिता वगैरह सहित सब भाई बहन, चाहे चचेरा ममेरा फेरा जौन भी रहता, सब लोग कथा सुनित, कहानी सुनित, और जौन बाकी वैसी वैसी नींद लग जाए भैया।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और चहल पहल जौन रहे कि जौन बाकी बड़ बुजुर्गन के भी एकदम मन लागल रहे, यहाँ तक कि कोई जौन बाकी अपन बुजुर्ग दादा दादी हवन उनके कोई पैर दबावे तो केहू जौन बाकी भैया सर सहलावे, कुल मिला करके जो भाई कहानी सुनावा हम सुना थी और इन्हें पैरों दबा दबा, यह तरीके के जौन बाकी परिवार जो संयुक्त परिवार चले भैया,
0: बिल्कुल
1: उससे जौन बाकी आदमी की आयु बढ़ जाए
0: एकदम
1: और केहू के
0: एकदम
1: दुख के समझ नहीं आवत रहे। आज एकल परिवार हो गई हो भैया, कहीं कहीं देखा कि जौन बाकी खाली पति पत्नी और बच्चा लोग रहल हवन,
0: बिल्कुल
1: कई जगह तो जौन बाकी ऐसा भी कांड भी सुने को मिल जाता हो कि आपस में विवाद हो लग तो कहीं वो जाके आत्महत्या कर लेता हो, या कि उसे मिल करके जौन बाकी होकर मर्डर हो जा रहा हो,
0: बिल्कुल
1: कहीं न कहीं एकाकीपन की वजह से भी ये बहुत दुखद घटना हो रहा हो।
0: एकदम
1: एक
0: एकदम
1: खातिर भी जौन बाकी परिवार दिवस मनावे के, एक जौन बाकी की हर समय याद दिलावल जाए कि
0: एकदम
1: परिवार
0: एकदम
1: का होला भैया।
0: एकदम
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल सही कहा हुआ भोला भैया। और निश्चित रूप से भैया देखा आपके बात भैया देखा बहुत ही मैंने एक दिल में लगे वाला बात हुई लग कि के तरह से भैया देखा जौन बाकी हम लोगन के माता पिता, बाबा दादी और घर के जौन बड़े बुजुर्ग हुअन उ लोगन के जब जौन बाकी छत्र छाया जौन बाकी मिलत रहला तो
1: बिल्कुल
0: निश्चित
1: बिल्कुल
0: रूप से भैया देखा हर काम सही होला। और
1: हाँ
0: आज के परिवेश जौन भागम भाग वाला हुए भैया, अपन माता पिता के भी लोग जौन बाकी वृद्धा आश्रम में पहुंचा देते हुअन
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और दादा दादी के तो बातें छोड़ा, तो निश्चित रूप से भैया देखा कहीं ना कहीं परिवार में बिखराव आवत हुए, तो निश्चित रूप से हम लोगन के प्रतिज्ञा लेवे के जरूरत हुए आज के दिन कि
1: बिल्कुल
0: हम लोगन भी भैया देखा अपने परिवार के भैया देखा संगठित करे खातिर एक भैया देखा सोच बनाई कि हम लोगन भी भैया देखा संयुक्त रूप से रहें, और
1: बिल्कुल
0: संयुक्त रूप से ना भी रहें तो निश्चित रूप से अगर
1: जुड़ाव कम से कम रहे।
0: आस पास है तो लोगन में जुड़ाव रहे,
1: बिल्कुल
0: और जब समय मिले तो भैया देखा एक साथ बैठ करके हालचाल होके और बातचीत होके और आगे के जो योजना बा ओके बनावल जाए,
1: और
0: तो
1: जौने खात बिल्कुल बिल्कुल
0: निश्चित रूप से भैया देखा जो बाकी एकता बनल रही भैया।
1: आज जौने खातिर आदमी भागम भाग बा कि हमारे जौन बाकी आयु बढ़े या

0: महिला परिवार की केंद्र बिंदु विषय पर हम लोग के बातचीत होते रहे सरिता वाशड़े से।
1: अच्छा।
0: आप एक अध्यापिका भी हैं और वो बहुत ही मतलब गूढ़ बात बतैन परिवार के बारे में और गठिया के लानल भी गिल हो भैया
1: एकदम भैया। तो निश्चित रूप से जोन बाकी हम सब लोग के बीच भी जोन बाकी मिले के चाहिए।
0: हाँ, सार्वजनिक कल जाओ,
1: सार्वजनिक कल जाए तो निश्चित रूप से सुनल जाए भैया।
0: स्नेह, त्याग, विश्वास, ममत्व, वात्सल्य इत्यादि परिवार के अधिष्ठान गुण है। जिस परिवार के सदस्य के भीतर वत्सलता, ममत्व, स्नेह की भावना, त्याग, समर्पण, प्रत्येक सदस्य के प्रति विश्वास है, निश्चित रूप से वह परिवार एक आदर्श परिवार के श्रेणी में आता है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। तो निश्चित रूप से परिवार एक ऐसा शुरुआती समूह है जो उसके वजह से पूरे देश के विकास की कल्पना की जा सकती है। तो चूंकि शिक्षक एक समाज का दर्पण होता है और शिक्षक से ही जो है कि समाज का एक अच्छा स्वरूप हो सकता है, तो एक शिक्षिका से मुलाकात हो रही है श्रीमती सरिता वाशड़े जी से।
2: नमस्कार सर।
0: आप से मैम आकाशवाणी ओग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
0: इस आशय से भी कि जो है कि एक परिवार की बात आती है और आज परिवार के परिभाषा को लिया जाए तो कुछ लोग केवल अपने पति पत्नी और बच्चों से लेते हैं, बहुत सारे
2: एकाकी परिवार जिसे
0: एकाकी परिवार और बहुत लोग जो है कि संयुक्त परिवार कल्पना की करते हैं। तो ये परिवार है क्या और ये इसका परिवार दिवस भी मनाते हैं लोग, तो इसके मनाने का क्या कुछ उद्देश्य संभव
2: सर? आज का हम कार्यक्रम एक स्लोगन के साथ करते हैं।
0: जी जी, स्वागत में।
2: जिसके पास परिवार का साथ है, पास उसके भगवान की सौगात है।
0: जी जी।
2: जब मुश्किलों में कोई काम न आए, वो परिवार ही है जो साथ निभाए। इसी के साथ सभी श्रोताओं को विश्व परिवार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: जी जी जी। तो बहुत ही अच्छा शुरुआत की सरिता वाशड़े जी, और निश्चित रूप से ये जो परिवार की बात आती है, लगभग जो पहले बुजुर्गों से हम लोग सीखते थे, देखते थे गांव गिराव में अक्सर करके, शाम के समय सारे लोग गर्मी के मौसमों में जो है कि बाहर बैठ करके चरपाई निकल करके और कथा कहानी के माध्यम से अपना जो है कि विश्राम करने का जो है शुरुआत करते थे, निश्चित रूप से लगता था कि एक मैंने बहुत ही अच्छा परिवार है इसी परिवार कहते हैं। लेकिन अब परिवार दिवस मनाना भी शुरू हो गया है, हमको लगता है कि कहीं न कहीं से याद करने की बात आ रही है। तो ये कब से मनाना
2: सर? ये हर वर्ष 15 मई को मनाया जाता है।
0: जी जी।
2: सही, 1993 में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा और तब से इसी दिन मनाया जाता है।
0: अच्छा।
2: लेकिन 1996 में पहली बार परिवार दिवस मनाया गया था।
0: जी जी जी। इसका मनाने के पीछे क्या कुछ उद्देश्य?
2: तो इसमें मनाने के लिए इसमें परिवार की का महत्व बताते हैं, उपयोगिता बताते हैं। लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र ने जो करा था उसके पीछे ये था कि उसने ये बताने की कोशिश की कि परिवार में जो बहुत सारे मुद्दे संबंधित होते हैं और उसमें उसके प्रति जागरूकता बढ़ाएं जो मुद्दे होते हैं और उसके सामाजिक आर्थिक कारण जो परिवार को प्रभावित करते हैं उसकी जानकारी बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने की शुरुआत की गई।
0: तो तब से मनाया जा रहा है
2: जी।
0: और सबसे बड़ी बात कि परिवार को जनाना, यानी कि ये कहा जा सकता है कि लोग कहीं उससे दूरी होने लगा, उन लोगों का
2: विघटन होने लगा
0: कि जो है कि केवल एकाकी में ज्यादा लोग जो है कि वो
2: तो इसके सामाजिक उन्हीं कारणों को करने के लिए कहा कि जो सामाजिक आर्थिक कारण जो प्रभावकारी हो रहे हैं तो दोनों पक्ष को समझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। जो संयुक्त राष्ट्र की जो मंशा थी वो यही थी, ये नहीं कि जो परिवार छोड़ के जा रहा है सिर्फ उसी के लिए हो, जिस परिवार से वो टूट रहे हैं उसको भी जागरूक बनाया जाना है।
0: अच्छा, परिवार में किन किन लोगों को माना जा सकता है कि जो है कि?
2: देखिए, परिवार दो प्रकार के माने गए हैं। एक तो संयुक्त परिवार हो गया है जिसमें कि बुजुर्ग होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं,
0: जैसे
2: दादा दादी हो गए, फिर उनके बच्चे चाचा चाची, पापा मम्मी, उनके बच्चे हो गए। फिर उसका दूसरा परिवार होता है एकाकी परिवार। तो वो परिवार जो जिसमें केवल पापा मम्मी और उनके बच्चे होते हैं, तो दो प्रकार की कल्पना की गई है समाज में। तो जो

0: एकाग्र, पहले तो पुराने जमाने में तो सभी पूरा हुआ करते
1: जी
0: थे,
1: जी जी
0: लेकिन धीरे में जैसे जैसे विकास होता गया,
1: हाँ
0: लोग
1: हाँ
0: सामाजिक कारण जो हमने बताया भी, सामाजिक और आर्थिक कारण जो
1: जी
0: प्रभावकारी होते हैं, सामाजिकरण ऐसे होता है कि जब व्यक्ति की सामाजिक स्टेटस बढ़ जाता है, मान लीजिए
1: जी
0: किसी एक व्यक्ति का बढ़ गया,
1: हाँ
0: तो वो
1: हाँ
0: चाहता है कि हम अपने स्टेटस में जाके रहें,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और उसी परिवार में कोई व्यक्ति अच्छा कमाने लगा
1: हाँ हाँ
0: तो वो सोचता है कि जब हम अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति स्वयं कर सकते
1: जी
0: हैं
1: जी
0: तो हम इस माहौल में क्यों रहें,
1: क्यों
0: तो वो
1: रहे।
0: जाके वो एक नया परिवार बना लेते
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: इस
1: जी
0: तरह से परिवार का विघटन होता जा
1: विघटन
0: रहा है।
1: होता जा रहा है, तो इसलिए जो है कि उसको याद करने की दृष्टि
0: हाँ,
1: से उसको मनाते
0: मतलब उसकी
1: हैं।
0: जागरूकता पैदा की कि किस की एक साथ में रहने से परिवार में क्या हमें लाभ है, क्या हानि है, इसकी जागरूकता पैदा करने के लिए
1: जी जी
0: परिवार दिवस
1: जी
0: मनाया जाता है।
1: तो इसमें दरअसल बहुत हम लोग जो है कि संस्कार के बात भी करते हैं, क्योंकि भारत एक जो है कि भारतीय संस्कृति की दृष्टि से बड़ों का सम्मान और छोटों को प्यार, ये तमाम बातें आती हैं, तो उसको सिखाना पड़ता है। और कुछ पहले सुनने को और देखने को भी मिलता था कि लोग स्वतः ही सीख जाते थे,
0: जी,
1: तो
0: क्योंकि घर में चाचा है, बुआ
1: जी
0: है,
1: जी
0: उसको देख के सीख ही रहे
1: हाँ
0: हैं।
1: हाँ हाँ
0: ये तो अपने ऊपर भी हम लोग कल्पना कर
1: जी
0: सकते हैं ना
1: जी
0: कि हम लोग भी सीखें
1: हाँ।
0: उसी परिवार से।
1: अच्छा, एकाकी परिवार में तो ये जो है कि नहीं आ पाता है जो है कि, तो ये जो क्योंकि अब देश के विकास के बारे में ही सारे लोग चिंतन, क्योंकि प्रत्येक देश का अपना वहाँ के रहने वाले लोगों से ही मैंने उसका कल्पना की जा सकती है कि यहाँ का परिवेश क्या है, यहाँ का रहन सहन क्या है, तो अच्छे परिवार से अच्छे देश की कल्पना कैसे की जा सकती
0: जी,
1: है।
0: ये प्रश्न आपका यही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
1: जी
0: इसमें
1: जी
0: देखिए, परिवार जो होता है वो समाज की इकाई होती है,
1: जी
0: और जो समाज होता है वो देश की इकाई होती
1: जी
0: है,
1: जी
0: और हमारा देश होता है वो पूरा एक परिवार होता है,
1: जी जी
0: और परिवार पूरे देश को प्रभावित करता है। अब
1: बिल्कुल
0: यहाँ पे प्रश्न ये है कि एक परिवार एक पूरे देश को प्रभावित कैसे करता है।
1: जी जी
0: एक परिवार होता है, अपने परिवार के लिए भोजन है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इन सब की व्यवस्था करता है,
1: जी
0: लेकिन इसके साथ साथ एक शब्द और आता है, उसे कहते हैं संस्कार।
1: हाँ बिल्कुल
0: संस्कार का विकास एक परिवार में ही हो सकता है, और यही इसीलिए इस परिवार को नागरिकता का पहला स्कूल भी कहा जाता
1: जी
0: है।
1: जी जी जी
0: जैसे एक परिवार है, जब अच्छे संस्कार देगा तो एक अच्छा नागरिक बनेगा, और एक अच्छा नागरिक बनने के लिए उसके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए,
1: जी
0: देश प्रेम होना चाहिए, भाईचारे की भावना होनी चाहिए,
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: भी गुण होने चाहिए, जैसे कि महिलाओं का सम्मान करे, अपने पर्यावरण का संरक्षण करे, जो
1: जी
0: हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं उसका संरक्षण करें। तो ये हमारे ये सब मौलिक कर्तव्य हैं, और ये जो
1: जी
0: मौलिक कर्तव्य है, ये सब हमारे जो सामाजिक मूल हैं, इसका विकास तो सिर्फ एक परिवार में हो सकता है ना,
1: जी जी जी
0: क्योंकि माँ बाप होते हैं और भी सदस्य होते हैं, बच्चों को बचपन से ही संस्कार देना शुरू कर देते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल
0: जब हम बच्चे को उसके प्रति प्रेम, देश प्रेम की भावना जगाएंगे,
1: हाँ हाँ
0: तभी तो
1: हाँ
0: बच्चा सीखेगा। इसीलिए कहा जाता है कि परिवार एक छोटी इकाई होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जैसे कि बच्चा छोटा है, कुछ सिखाने के लिए उसको पुरस्कार भी दिया जाएगा,
1: हाँ
0: दंड भी दिया जाएगा, जैसे हम अपने स्कूल में भी करते हैं। स्कूल
1: जी
0: भी एक परिवार है,
1: बिल्कुल
0: जैसे
1: बिल्कुल
0: बच्चे को हम
1: स्कूल तो सबसे बढ़िया परिवार है,
0: सबसे बड़ा
1: क्योंकि कई
0: अच्छा,
1: कई घर से आकर के बच्चे
0: हाँ कई
1: जुड़ते
0: बच्चे
1: हैं,
0: जुड़ते
1: और दोनों
0: हैं।
1: एक दूसरे से मिल करके खेलना सीखना,
0: जी
1: और जो है
0: हाँ,
1: कि फिर आपस में किसी से कोई बदमाशी न करना, चोरी
0: हाँ
1: न
0: चोरी
1: करना।
0: ना,
1: अब
0: हाँ
1: जैसे संयुक्त परिवार में ये तो निश्चित रूप से आ जाता है कि पूरा सम्मान हर घरों में बिखरा हुआ है,
0: हाँ
1: लेकिन किसी से किसी का कोई
0: किसी
1: लालच नहीं
0: लालच
1: है,
0: नहीं है, क्योंकि
1: तो
0: संस्कार का विकास किया
1: बिल्कुल
0: गया है
1: बिल्कुल
0: ना। तो
1: बिल्कुल
0: हम जब सिखाने लगते हैं उनको, तो पुरस्कार भी देंगे, उनको हम दंड भी देंगे। हमारा एक उद्देश्य है कि बच्चों को हम कैसे नैतिक मूल्यों का विकास करें
1: जी जी
0: बच्चों
1: जी
0: के अंदर।
1: जी
0: और बच्चे जो होते हैं, बड़ों का जैसे बड़े हैं जैसा करेंगे, बच्चे उसकी नकल करेंगे, और जैसे बड़ों ने नैतिकता का पालन किया तो बच्चे भी उसी नैतिकता
1: बिल्कुल
0: का
1: बिल्कुल
0: पालन
1: बिल्कुल
0: करेंगे। तो समाज और राष्ट्रपति बच्चे का जैसा विकास कर परिवार में होगा, वैसा ही उसका रवैया समाज के प्रति होगा। अब जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वही रवैया उसका राष्ट्र के प्रति हो
1: बिल्कुल
0: जाएगा। तो
1: बिल्कुल
0: इस प्रकार से ये कहना कि क्या संबंध है, बस संबंध यही है कि जो संस्कार बच्चा सीखता है वो परिवार में सीखता है, फिर वही समाज के प्रति करता है, फिर वही उसको राष्ट्र के प्रति
1: बिल्कुल
0: करता
1: बिल्कुल,
0: है।
1: चूंकि ये सबसे
0: हाँ,
1: छोटी इकाई
0: सबसे
1: है जो
0: छोटी
1: है
0: इकाई
1: कि
0: है। जी
1: अपना
0: हाँ
1: परिवार, और वहाँ से जो सब आपस में सामंजस्य बनाकर चलेंगे, तो अपने गांव से सामंजस्य बना के चलेंगे,
0: जी,
1: फिर जो है कि अपने राज्य से देश से
0: और देखिए
1: इस
0: दादा
1: प्रकार
0: दादी
1: कर
0: की जो कहानियां हुआ करती थी,
1: जी
0: वो
1: जी
0: भी उसमें कुछ ना कुछ उससे वो सीखा करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे कि किसी किसी परिवार में तो चलिए नैतिकता को सिखा रहे हैं, लेकिन किसी किसी परिवार में नकारात्मकता भी होती है,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: बच्चे क्या होते हैं, उसमें आत्मविश्वास कमी हो जाएगी,
1: हाँ
0: बच्चे
1: हाँ
0: गलत रास्ते पे चले जाएंगे। जब वो
1: बिल्कुल
0: गलत रास्ते पे जाएंगे तो वो हमारे देश और समाज के लिए वो भी तो हानिकारक हुआ ना। तो इस
1: बिल्कुल
0: प्रकार से
1: बिल्कुल
0: छोट पर जहाँ से बच्चे ने छोटी इकाई से सीखा

0: था, उसका प्रभाव कहाँ पड़ा, वो हमारे पूरे देश के ऊपर पड़ा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये परिवार को संवारने में महिलाओं क्या योगदान है? मैम
0: देखिए, परिवार जो महिला होती है वो केंद्र बिंदु होती
1: जी
0: है।
1: जी जी
0: तो संयुक्त, पहले संयुक्त परिवार में ठीक है कि जहाँ महिला केवल घरेलू रूप में है
1: जी
0: वहाँ पे पूरे घर को बांधे हुए है और पूरा घर चला रही है।
1: जी
0: देखिए, किसी भी घर को चलाने के लिए आपका जो भावनात्मक, आपको सम्मान करना पड़ेगा, उसकी भावना का सम्मान करना पड़ेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: आजकल जैसे कहते, हमने कहा कि सामाजिक कारण भी होते हैं, आर्थिक कारण भी होते हैं परिवार विघटन के। इस प्रकार का एक कारण देखा जाए ये भी है कि महिलाएं आजकल बाहर काम करने लगी हैं, आर्थिक
1: जी
0: रूप से मजबूत हो गई हैं।
1: हाँ
0: आप महिलाओं की भावना को सम्मान कीजिए।
1: बिल्कुल
0: अगर आप
1: बिल्कुल करना पड़ेगा।
0: वही पारंपरिक रूप में आप चलेंगे कि एक महिला बाहर से आ रही है, फिर वो उन्हीं जो आपकी सोच है कि वो घर
1: जी
0: के
1: जी
0: गृहस्थी के काम को करें, तो और
1: अरे
0: फिर
1: वो जिसे पहले की बात थी ना मैम, तो उसमें था कि जो है कि पुरुष लोग काम करते थे, महिलाएं घर की गृहस्थी संभालते थे। लेकिन जब एक समानता आ
0: असमानता
1: गया,
0: आ
1: तो
0: गई
1: उसमें
0: तो
1: जिसे जो बाहर काम कर रहा है, जो थक रहा है,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: जो थोड़ा आराम किया है, तो उनको भी
0: तो
1: मतलब ऐसा थोड़ा है कि जो है कि कोई लिंग विशेष का जो है कि
0: नहीं,
1: वो
0: लेकिन होता है परिवारों में सोच होती है, वो पारंपरिक सोच रखते हैं। अगर उनके पति भी सहयोग करने लगते हैं तो लोगों की दृष्टि में वो हे दृष्टि, जैसे हे दृष्टि से उनको देखने लगते हैं। तो होता ये है कि जब वो सोचता है वो परिवार कि जब हम अपना कमा खा रहे हैं, हम दोनों पति पत्नी मिलके और बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं, तो हम क्यों ना अपने परिवार को अलग बसा लें।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: परिवार के विघटन का ये भी एक कारण है, और ये
1: बिल्कुल।
0: इस समय तो बहुत जोरों पे चल रहा है, ये बहुत बिंदु हो गया है विघटन का।
1: तो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय आपका सलाह और जानकारी भी थी। तभी तो जो है कि एक कविता आपने जो शुरू किया स्लोगन, और ये कविता हमें भी ध्यान में आ रहा है
0: जी,
1: कि अपने पन की बगिया है,
0: खुशहाली
1: खुशहाली
0: का
1: का
0: द्वार
1: द्वार, जीवन भर की पूंजी है, एक सुखी परिवार,
0: जी,
1: माँ की ममता में बसता है, बच्चों का संसार, जीवन
0: जीवन
1: का
0: का
1: रास्ता दिखलाए, बापू की फटकार,
0: जी,
1: माने बापू की जो
0: हाँ
1: फटकार होती है
0: जी,
1: वो
0: उसमें
1: भी
0: भी
1: एक जीवन,
0: प्यार होता है
1: बिल्कुल जीवन
0: एक।
1: का रास्ता
0: हाँ
1: दिखलाती है। दादा दादी के बातों में है जीवन का सार, भाई बहना का रिश्ता है, रिश्तों का आधार, घर की लक्ष्मी बनकर
0: बनकर
1: पत्नी देती है घर को आकार, बहू जहाँ बन जाए बेटी, होता स्वर्ग वहाँ
0: जी,
1: सावकार।
0: बहुत अच्छी
1: तो
0: कविता है।
1: निश्चित रूप से
0: हाँ,
1: ये
0: पूरा
1: अगर,
0: पूरे आज के प्रोग्राम का पूरा सार यही है।
1: तो इस प्रकार से निश्चित रूप से अगर एक दूसरे को लोग समझे तो परिवार है, और नहीं तो जो अगर एक दूसरे को नीचा दिखाने काम
0: भावना
1: करे
0: का सम्मान करें,
1: तो
0: मेन है।
1: वहाँ जो
0: हाँ
1: है कि विघटन होगा। तो निश्चित
0: होगा,
1: रूप से इतनी अच्छी जानकारी आपके माध्यम से मिला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिन बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
6: बोला भैया।
7: हाँ भैया,
6: देखिए कितना बढ़िया जानकारी आपसे बातचीत के माध्यम से, सरिता वार्षणी के माध्यम से मिलल है।
7: बिल्कुल,
6: और निश्चित रूप से जोन बाकी आप लोगों के बातचीत जोन बाकी बहुत ही अच्छा रहल, और हम लोगन भी अपने जीवन में उतारे के भी देखा कोशिश करब, और निश्चित रूप से आप लोग के भी देखा धन्यवाद दिल जाए, और त्रिलोकी प्रसाद उनकर संगतिया एक मन फिर सुनावे वही के माध्यम से धन्यवाद दिल जाए।
7: बिल्कुल बिल्कुल।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: कितना बढ़िया मन मन सैन हम लोग सुनल गए। और बात आवला कि इसमें प्रत्येक अभिभावक जागरूक हो रहा हवन और सर हर कोई चाहला कि हमार बच्चा लोग पढ़ाई लिखाई में आगे निकले, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह एक ठे आ जाता कि या तो अधिक संख्या में पढ़ लेवे की वजह से या चाहे तो जनबा की अयोग्यता की वजह से, जेकरे कारण कि आज देखा सबके नौकरी नहीं मिल पावत है। तो ऐसे स्थिति में आज हम लोग के व्यवसायिक शिक्षा ले बहुत जरूरी है, जैसे कि हम लोग चाहे कृषि के माध्यम से, चाहे कृषि इतर कार्यक्रम, चाहे मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन से लगायत, अन्य साग सब्जी उत्पादन से लेकर के खाद निर्माण तक के भी अगर हम लोग जौन बाकी जानकारी रखें तो निश्चित रूप से हम लोग एक अच्छा आमदनी के स्रोत बना सकेला। इस समय तापमान भी बहुत चढ़ाव उतार हो रहा है, कहूँ बहुत गर्मी तो कहीं जौन बाकी कभी कभार हवा बयार ज़्यादा चल जाता है तो पेड़ पालो भी गिर जाता है। इसने में जौन बाकी सुरक्षित चले के भी बा, पेड़ के आसपास छुपे के नहीं हो, और जौन बाकी रास्ता पर भी चलते समय ध्यान देने की जरूरत हो, जौन साइकिल से हो, मोटरसाइकिल से हो, बड़ गाड़ी से हो, तो बल्कि हवा चल रहा हो भैया, तो इसने स्थिति में बल्कि रुक जाए साफ जगह देख करके, ताकि कोई पेड़ के चपेट में ना आवे। तो इस समय आज के देखा न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतर 40 डिग्री सेल्सियस आकल गिल हो अपने जिला के, और आज के बाजार भाव भी देखा भैया आपके हाथ में लगल हो, घुरावल मंडी के पसेरी में इंद्रासन मौर्य भैया भेजले हमन, समय पर बाँचल जाई। लेकिन जवन हम लोग व्यवसायी के एक आय के स्रोत के बात करत रहें, तो देसी मुर्गी मुर्गा पालन में का कुछ हम लोग सावधानी बरतें, ये विषय पर सीत कुमार जौन प्रगतिशील कृषक हवन कादल से, उनसे अख्तर अली भैया के बात बत कही हो, कहा तो सुनल जाए भैया।
4: कृषि विविधीकरण के अंतर्गत कई तरह के खेती से जुड़ल काम कईल जाला, और अपने इलाके के किसान भाई हर तरफ आपन कदम बढ़ा चुकल हुआ, चाहे मधुमक्खी पालन के बात हो, बकरी पालन के बात हो, मुर्गी मुर्गा पालन के बात हो, भेड़ पालन हो, सबसे अपने किसान भाई जुड़ करके अपने आमदनी के बढ़ावे के प्रयास करत हुआ। ऐसे ही एक प्रगतिशील युवा किसान हुआ दुधी ब्लॉक के कादल से शीत कुमार जी। आप पढ़ाई लिखाई भी कैले, और पढ़ाई लिखाई के यह फायदा मिलल कि आप खेती बाड़ी के साथ साथ देशी मुर्गा मुर्गी पालन से भी आप जुड़ लें। हालांकि देखें पोल्ट्री फार्मिंग से आप बहुत दिन से जुड़ल हुआ और हर तरह के जो मुर्गी मुर्गा बा ओके पालन आप कर लें, फिर अब देशी मुर्गा पालन मुर्गी पालन से जुड़ल हुआ, आपके का अनुभव बा, अपने इलाके के जो जलवायु बा, वातावरण बा, कितना अनुकूल बा, इन लोगों के पालन में कितना सहायक बा या परेशानी आवेला, ये सब बातचीत आज हम लोग कार्यक्रम के माध्यम से कही जाए। शीत कुमार जी, सबसे पहले तो अपने किसानवाणी कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत बा। पोल्ट्री फार्मिंग से आप कितना दिन से जुड़ल हुए?
5: जी लगभग ये हम लोग 3 से 4 सालों से इसमें हम लोग काम कर रहे हैं सर।
4: 3 से 4 साल से आप जुड़ल हुआ, और अभी आप चर्चा करत रहा कि हम हर तरह के मुर्गी मुर्गा पालन के लिए, तो खास करके ये देसी वाला कितना दिन से?
5: जी ये देसी वाला लगभग हम लोग 2 से 2.5 साल,
4: 2 से 2.5 साल
5: से हम लोग ये कर रहे हैं।
4: अन्य मुर्गी मुर्गा पालन बा, जैसे ब्रॉयलर बा, क्रायलर बा, ये तो हम लोग सुनले रह लीजा, और देसी वाला अक्सर के हरल कि लोग घर में ही अपन एक पालन कर रहे, और आप एक व्यवसायिक रूप दे ले हुआ, तो कैसे मन बनल कि एक व्यवसायिक रूप दिहल जाए?
5: जी जैसे हम लोग अपने लोकल एरिया में देखते थे कि हमारे यहाँ अधिकांश केवल ब्रॉयलर और क्रायलर वाला पालन होता है, और हम लोग क्या किए कि प्रारंभ में जब ये कर रहे थे तो काफी कभी कभी क्या होता था कि घाटा हो जाता था, मतलब नुकसान भी हम लोग का होता था, तो फिर हम लोग YouTube पर देख करके कि मतलब आसानी से उसी फॉर्म में देसी मतलब पोल्ट्री फॉर्म कर सकते हैं, तो हम लोग देसी का प्लान बनाए।
4: जी, तो देसी वाला जो भी चूजा बा, इके उपलब्धता अपने इलाके में सुचारू रूप से हो जाला?
5: जी, जो डीलर होते हैं, जो बायलर वाला करते हैं, वही डीलर।
4: अच्छा, वही लोग?
5: जी जी,
4: उपलब्ध करा देना।
5: जी,
4: तो अच्छी बात बा। कहीं की देखें ओला का कि जो देसी मुर्गा आपने इलाके में, जो गांव गिराव में पालन होला, तो उनके बाजार भाव अच्छा रहला, लेकिन आप एक जब व्यवसायिक रूप दे लें तो निश्चित बाकी हर चीज एक सिस्टमेटिक ढंग से हुई, सुचारू रूप से। अच्छा, का जहां पर आप पालन कैले हुआ तो उनके रख रखाव के खातिर जो बनल है उसमें कुछ अंतर बा, या जैसे पहले रहल वही वाला में चालू के लिए?
5: जी, ये बिल्कुल वैसा ही है, उसमें हम लोग कुछ अपडेट नहीं किए हैं। जो पहले जो जिसमें व्हाइट वाला बायलर वाला हो रहा था, वही वाला मतलब अभी भी है, उसी में हम लोग ये आसानी से कर ले रहे हैं।
4: जी, बस अंतर इनके तैयारी अवस्था में बा, समय के अंतराल।
5: जी,
4: वो पालन बॉयलर और क्रायलर कितना दिन में एक किलो के हो जाला, और इनके बढ़वार होके में कितना समय लगे?
5: जैसे बॉयलर वाला जो है वो लगभग 30 दिन में तैयार हो जाते हैं, और
4: क्रायलर एक किलो।
5: जी जी, एक किलो, सवा किलो से डेढ़ किलो। जी,
4: और इनके एक सवा किलो होके में कितना समय लगे?
5: 90 दिन कम से कम चाहिए, 90 दिन में, 90 से 100 दिन में ये एक से सवा किलो इनका मतलब औसत वजन आ जाता है।
4: अच्छा अच्छा, तो जिन जो इनके आवास व्यवस्था बा वही वाला?
5: जी बिल्कुल।
4: अच्छा, जैसे सीत कुमार जी, खास करके हम लोग इस समय मौसम गर्म चल रहा बा और लू भी चल रहा बा, तो ऐसने में इनके देखभाल के खातिर आप अपने यहाँ जो बाड़ा बनोले हुआ, जहाँ भी आप पालन केले हुआ, का व्यवस्था केले हुआ?
5: इसके लिए हम लोग क्या किए हैं कि फार्म के जो दीवार है चारों तरफ से, उसमें सूती बोरा चारों तरफ से लगा दिए हैं, और समय समय से मोटर से उसे हम लोग भिगाते रहते हैं, ताकि अंदर बिल्कुल उनके अनुकूल
4: ठंडा रहे।
5: जी,
4: वातावरण के इनके ऊपर कोई खास प्रभाव कि जैसे ज्यादा गर्मी पड़े लगल तो?
5: जैसे ये जो देसी प्रजाति है, ये वातावरण सभी प्रकार के मतलब मौसम के हिसाब से, जैसे मौसम धीरे धीरे बदलता है तो ये अनुकूल होते चले जाते हैं, इनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है।
4: ओ, ये बात तो आप सही कर लें, और यही से जोन बाकी आपके यहाँ सफल भी बा। अब थोड़ा सा चर्चा कर लिया शुरुआती दौर से कि जो चूजा आप डाल लें, तो चूजा कितना दिन के रहेला जो आप लोग शुरुआत करेला?
5: वो जो चूजा हमारे यहाँ आता है वो लगभग 24 से 48 घंटे का ही होता है।
4: अच्छा,
5: और ये जब प्रारंभ में आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि पूरे फार्म में सबसे पहले ये धान का कुटौसी जो भूसा भूसी होता है उसे फैला देते हैं, उसके ऊपर अखबार लगा करके, और इसके बाद उसके ऊपर चूजा डाला जाता है।
4: अच्छा अच्छा
5: जी,
4: तो इनके जो आहार के खातिर जो दाना बा का अलग दाना की व्यवस्था करें ना आप लोग, कि वही वाला जो दाना पहले दिहल जात रहे वही दाना इनके भी दिहल जाला?
5: ये दाना में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, ये बिल्कुल वही दाना खाते हैं, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनके लिए मतलब कुछ अलग दाना भी आता है जो लोग नहीं खाते हैं।
4: जी,
5: बड़े होने के बाद इनके दाना में अंतर आता है, प्रारंभ में वही दाना खाते हैं जो उन लोग खाते हैं।
4: तो शुरुआती दौर के दाना वही वाला?
5: जी जी।
4: तो कितना दिन तक वो वाला दाना चलेला?
5: लगभग 2 महीने तक वो वाला।
4: 2 महीने तक हुआ?
5: जी।
4: फिर उसके बाद फिर इनके कुछ विशेष दाना देवे पड़ा?
5: जी, इनके दाना जो है उनके तुलना में कुछ सस्ते भी पड़ते हैं, और बड़े आकार में भी होते हैं।

0: अच्छा
1: जी
0: अच्छा
1: साइज बड़े रहते हैं।
0: अब पालन आप करत हुआ व्यवसायिक रूप देले हुआ का देसी मुर्गी मुर्गा जो पालन आप कैले हुआ तो इनमें कोई रोग दुख तकलीफ भी आवेला?
1: वैसे सामान्यतः तो नहीं आता है, लेकिन कभी कभी मतलब इनमें एक झुपने वाला बीमारी आ जाता है, जिससे ये क्या होते हैं कि अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे, न हिलेंगे डुलेंगे, मतलब इनका एक्टिविटीज ये बहुत कम हो जाता है, चलना फिरना बंद कर देते हैं, तो वो मरने मतलब वो डेड होने लगते हैं।
0: अच्छा अच्छा तो का इस संक्रामक रोग है एक दूसरे में फैलेला या कोई कोई मुर्गी मुर्गा में दिखाई
1: नहीं, ये
0: देला?
1: संक्रामक रोग नहीं है, ये
0: कोई
1: मतलब
0: कोई में
1: किसी
0: हो जाए
1: विशेष में होता है, ये नहीं है कि हो गया तो सब में ही हो जाएगा, ऐसा
0: जी?
1: नहीं है।
0: अच्छा तो चलें, अब आप मान लें कि शुरुआत भी आप कर दे लें, इनके देखभाल निगरानी कर हुआ और कहत हुआ कि कम से कम इनके 1 से 1.25 किलो होखे में 90 दिन लग जाला,
1: 90 से 100 दिन
0: 90 से 100 दिन लग जाला। तो इतना अवधि में देखभाल निगरानी करेलन तो आपके कुछ लागत भी आवत हुई। अब चूंकि काफी दिन से आप करत हो, एकर जो हिसाब किताब एक बारे
1: जी।
0: में का कहे चाहिए शीत कुमार जी कि जैसे एक जो मुर्गा बा अगर
1: जी
0: एक 90 दिन तक आप देखभाल पूरा दवाई से लेकर के
1: जी
0: खनगी से लेकर के
1: जी
0: आप तैयार करेलन तो का कुछ अनुमान लगौले हुआ कि कितना लागत गिर जात हुई?
1: अब लगभग एक मुर्गे पे या एक मुर्गी पे लगभग 200 से 250 रुपये मतलब खर्च आ जाता है।
0: 200 से 250 रुपया
1: जी
0: तैयार होके में
1: जी
0: पूरा?
1: जी
0: जी। और अपने इलाके के जो बाजार व्यवस्था बा का
1: जी
0: अनुकूल बा कि आपके कुछ मिल सके?
1: क्या है कि जो देसी बायलर वाला होता है वो हमारे लोकल एरिया में ज्यादा मतलब सेल होता है, लेकिन ये देसी वाला जो है वो लोकल एरिया में प्रॉपर सेल नहीं हो पाता है, तो इसे मतलब हम लोग काफी जो दूर शक्ति नगर अनपरा छत्तीसगढ़ असम ये इधर के मतलब आते हैं।
0: अच्छा
1: जी
0: अच्छा अच्छा यानी कहे कि मतलब कि बाजार के खातिर थोड़ा सा आपके प्रयास करे पड़ेगा, आपने लोकल
1: जी
0: मार्केट में पूरा पूरा नहीं निकल पावेला?
1: जी नहीं, लोकल मार्केट में बहुत ही कम, नहीं के बराबर, ये
0: अच्छा
1: सब
0: नहीं के
1: बाहर
0: बराबर।
1: मतलब ये बाहर ही सेल करना पड़ेगा, और शुरुआत में काफी दिक्कत भी हो रहा था, लेकिन अब जैसे हम लोग का आप धीरे धीरे, जैसे एक नहीं होता है कि कोई भी अगर कारोबार
0: हाँ
1: शुरू
0: वो
1: करते हैं तो
0: जी
1: जान
0: जी
1: पहचान हो जाता है, लोगों का कॉन्टेक्ट
0: जी
1: नंबर हो
0: जी
1: जाता है, तो
0: जी जी
1: अब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है इसमें।
0: पूरा निकासी हो जा रहा
1: जी
0: बा।
1: जी
0: का रेट आप लोग निकालें, आप लोग थोक में ही निकाल देते हुए?
1: जी जी थोक का मतलब अलग रेट है, और फुटकर बहुत नहीं के बराबर बिकता है।
0: थोक आप लोग
1: जी
0: कोई व्यवसायी आपके यहाँ से आते हैं वही पूरा ले जाते हैं कि आप लोग खुद ही मार्केट में ले जा करके
1: नहीं,
0: आए
1: हम लोग नहीं ले जाते हैं, आते हैं,
0: वो
1: सब
0: लोग
1: लेने वाले
0: को?
1: बाहर से आते
0: तो वो
1: हैं।
0: लोग क्या आप इकट्ठे तौल देते हैं?
1: जी अब उनको जैसे जितना भी चाहिए वो एक बार में तो पूरा ले जाएंगे नहीं, कितने मतलब किस्त बाई किस्त करके वो ले जाते हैं।
0: जी
1: अब ये
0: जी
1: बॉयलर की तरह नहीं है कि आपका रातों रात भी खाली हो सकता है, इसमें काफी दिन लगभग 1.5 से 2 महीना लग जाता है पूरा खाली होने में।
0: ओ तो व्यावसायिक रूप जब आप देले हुआ तो का फायदेमंद बा का आपके बुझा रहल बा? काहे कि समय भी काफी लग रहल बा, आपके मेहनत भी लग रहल बा, तो कुछ फायदा बुझाला?
1: जी ये क्या है कि इसको हम खेती के साथ साथ इसे साइड बिजनेस में भी कर सकते हैं, और जो लोग जैसे बहुत सारे हैं लोग जो पढ़ लिख करके बाहर 10,000 15,000 के नौकरी करने चले जाते हैं घर छोड़ करके, वो वहां ना जा करके अगर इसमें टाइम देते हैं तो उसके तुलना में ये काफी ठीक ठाक है।
0: 3 महीना में अच्छा आमदनी हो जाएगी?
1: जी उससे तो बिल्कुल, जो आप बाहर जाकर के इनकम कर रहे हैं 10 से 15 हजार, उससे मतलब इसमें अगर 1.5 से 2 गुना मतलब प्रॉफिट रहेगा।
0: अच्छा
1: जी
0: अच्छा अच्छा
1: और अपने आप घर गांव में भी रह सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं,
0: जी जी
1: इसमें
0: जी
1: मतलब ये भी एक प्रॉफिट है, और ये साइड बिजनेस के रूप में पूरा, आपको ये 24 घंटा इसमें टाइम नहीं देना है, पार्ट टाइम के रूप में अगर खेती किसानी कर रहे हैं तो आप साइड बिजनेस के रूप में इसे कर सकते हैं।
0: जी बॉयलर और क्रायलर के जो पालन अपने इलाके में हो रहल बा और जो देसी मुर्गा मुर्गी आप पालन कैले हुआ
1: जी
0: इनमें बस अंतर यह बा कि एक बाजार के खातिर थोड़ा सा शुरुआती दौर में प्रयास करे पड़ी,
1: जी
0: कहें कि दूर दराज के इलाके में शहरी क्षेत्र में ही ज्यादा एकर मांग
1: जी जी
0: बा?
1: शुरुआत में मार्केट बनाना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे लोकल एरिया में देसी मुर्गा मुर्गी जो होते हैं वो बहुत कम लोग मतलब इसको खाते हैं,
0: जी
1: इसलिए शुरुआत में मतलब समस्या होता है।
0: अच्छा सीत जी, जब उनमें मुर्गा भी बा और मुर्गी भी बा तो
1: जी
0: उनसे अंडा भी मिलत हुई?
1: जी जब ये मुर्गियां लगभग 4 से 5 महीने के हो जाते हैं,
0: हाँ।
1: तब 4.5 महीने होते होते तक ले उन लोग अंडा देना प्रारंभ कर देते हैं।
0: अच्छा
1: जी
0: तो आप लोग उनके अंडा के खातिर आप लोग उनके रखत हुई हैं अलग?
1: जी जैसे वो अपने टीम मतलब पूरे उस समूह में ही रहते हैं, तो
0: हाँ
1: जैसे एक टाइम बना लेते हैं कि आप एक दिन में 2 बार अंडे मतलब हम लोग निकालते हैं।
0: अच्छा,
1: जी
0: यानी जैसे
1: और
0: शीत कुमार जी जैसे बाकी मुर्गा बा तो जब 1.25 किलो हो जाला तो आप ओके निकाल देलें,
1: जी
0: और जो मुर्गी हैं तो उनके आप फिर रखत हुई हैं कि अंडा दें वो लोग अंडा की व्यवसाय ग्रुप।
1: हमारे लोकल मार्केट में जो आसपास के मतलब मार्केट है उसमें मुर्गियों का सेल बहुत ही नहीं के बराबर है, तो इसे अदर स्टेट से जैसे असम वगैरह से आते हैं तो उन लोग केवल मुर्गी ही ले जाते हैं।
0: अच्छा,
1: नहीं तो ऐसे लोकल मार्केट हमारे आसपास में 100-200 किलोमीटर के रेंज में जितने भी मार्केट हैं चाहे 500 किलोमीटर के रेंज में, वहाँ मुर्गियों का डिमांड एकदम नहीं के बराबर है।
0: मुर्गा चाहिए उनके।
1: जी, केवल मुर्गा ही ले जाते हैं, तो मुर्गियां बच जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो मुर्गी का जैसे एज बढ़ता जाएगा तो 4.5 महीना 5 महीना होने लगते हैं तो अंडा देना प्रारंभ कर देते हैं, तो वही अंडा देने लगते हैं। फिर चूंकि असम वाले भी क्या होते हैं कि उन लोग छोटे मुर्गी ले जाते नहीं है, उन लोग 5 महीना या 4.5 महीना से ऊपर जब अंडा देना शुरू कर देते हैं तभी उन लोग मतलब ले जाते हैं, नहीं तो उन लोग छोटे मुर्गी ले जाते ही नहीं है।
0: तो आप जैसन बाजार के मांग रहला वही अनुरूप अपन निर्णय आप लोग ले
1: जी, जी, जी।
0: और जब तक उनके अंडा मिल रहा बा तो एक अतिरिक्त जोन बात
1: जी उसे लोकल मार्केट में मतलब वो सेल हो जाता है, लेकिन जब ये काफी मात्रा में होने लगता है तो हमारे लोकल मार्केट में भी देसी अंडे का सेल उतना ज्यादा नहीं है जितना लोकल का है, लोकल अंडों का।
0: हाँ, देसी वाला थोड़ा महंगा भी
1: जी जी
0: रहला, तो ऐसे कम लोग जोन बाकी ओके प्रयोग में लिया वेलन। तो सीत जी, आप खेती बाड़ी भी कैले हुआ और के साथ साथ देसी मुर्गी मुर्गा पालन भी कैले हुआ, तालमेल के खातिर आप कहत हुआ कि वही समय में आप देखभाल निगरानी करके अच्छा आप लाभ ले सकेलन, अपने युवा साथी लोगन के का आप संदेश देवे चाहिए कि अगर वो लोग देसी मुर्गी मुर्गा अगर पालन शुरुआत करे चाहत हों तो का वो कदम बढ़ा सकेलन, फायदेमंद हो सकेला?
1: जी बिल्कुल, अगर कोई भी व्यक्ति क्या है कि वो बाहर जाकर के वो कम सैलरी में अगर काम कर रहा है तो उसे हम यही सलाह देना चाहेंगे कि आप अपने घर गांव में रह करके आप थोड़ा मोड़ा किसानी भी कर लीजिए और पार्ट टाइम में आप देसी पोल्ट्री फार्म बिल्कुल खोल सकते हैं। आप जैसा आपका शुरुआत में पूंजी रहेगा आप उसके हिसाब से करेंगे तो आप बाहर जाकर के जो काम करेंगे और जो इनकम करेंगे उससे काफी बेटर ये हो सकता है।
0: आप कितना चूजा से शुरुआत कर ले रहे हैं?
1: प्रारंभ में हम लोग 2000 चूजा से प्रारंभ किए थे।
0: 2000
1: जी,
0: तो एकर जो चूजा होला आम तौर पे जो चूजा रहला उसे महंगा मिलेगा?
1: जी ऐसा कोई नहीं, समय के हिसाब से चूजा का रेट बहुत ज्यादा बदलता है, तो वो जैसे उसका चूजा का रेट है व्हाइट वाला का या क्रॉयलर का वही सेम इसका भी लवर रेट रहता है, कोई अंतर नहीं है ये ज्यादा महंगा या वैसा कोई नहीं।
0: चूजा में चूजा के दाम में कोई अंतर नहीं
1: जी? नहीं,
0: बस इनके बढ़वार में जो समय
1: टाइमिंग ज्यादा है, ये प्रजाति अलग है, ये मतलब देसी में सोनाली प्रजाति है ये, तो इसमें केवल टाइमिंग ज्यादा लगेगा और इनके खान पान भी उनसे थोड़ा अलग है, ये आपके जो भी वेस्टेड सब्जी है चाहे घास हो गया कुछ उस टाइप का साग हो गया चाहे आपका जो भोजन खराब हो रहा है उसे भी ये खा लेते हैं, जबकि अच्छा। वो सफेद वाले और जो क्रॉयलर वाला होता है बॉयलर वाले ये सब
0: केवल
1: नहीं,
0: दाना ही
1: वो केवल दाना ही खाते हैं और ये साग सब्जी भी खा लेते हैं।
0: अच्छा अच्छा, तो इनके पालन में ज्यादा परेशानी नहीं बा, कोई रोग दुख की भी समस्या नहीं बा, और बाजार अगर एक बार आपकी मिल गई तो निश्चित जोन बाकी अच्छा लाभ आप प्राप्त कर सकेलन। तो किसान भाई देखें, आज अपने साथ रहला दुधी ब्लॉक के कादल से सीत कुमार जी और आपसे बातचीत होत रहल कि देसी मुर्गी मुर्गा पालन कैसे कैल जाए और आप जुड़ करके अच्छा लाभ भी प्राप्त करत हुआ और आपके कहानगी बा कि खेती बाड़ी के साथ साथ ये काम भी कैल जा सकाला, एक अतिरिक्त आमदनी यानी कृषि विविधीकरण के जो हम लोग चर्चा कैल जाला ओके आप नमूना पेश करत हुआ, बड़ा अच्छा लगल आज के बातचीत से। उम्मीद बा कि और भी अपने पंच भाई किसान भाई मन बनाइए देसी मुर्गी मुर्गा पालन से जुड़ी हैं और उनके अच्छा लाभ मिली, और सीत कुमार जी आज आप अपने किसानवाणी कार्यक्रम के माध्यम से अपने किसान भाई लोन की इतना बढ़िया जानकारी दे लें, एक ही खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
1: वेलकम।
2: भोला भैया, देखिए कितना बढ़िया जानकारी देसी मुर्गी पालन में सावधानिया के बारे में। सीत कुमार भैया जो उनकी प्रगतिशील कृषक रहलन अपन अख्तर भैया जो बाकी बातचीत के माध्यम से पूरा हर जानकारी देलन भैया कि कै तरह से भैया देखा हम लोगन जो बाकी मुर्गी पालन कर सकेला और किस तरह से करके भैया देखा मुनाफा हम लोगन ले सकेला
3: और मुनाफा के एक साधन और हो भैया साग सब्जी जो प्रतिदिन निकलला और अगर वो के समय से जो किसान कर ले तो भैया तो प्रतिदिन जो बाकी उत्पादन के वजह से जो बाकी लाभ मिलला।
2: बिल्कुल,
3: तो आज बाजार भाव कहाँ के हो आप?
2: बाजार भाव भैया घोरावल से इंद्रासन भैया भेजले हुए।
3: अच्छा, अच्छा,
2: और
3: अच्छा।
2: पसेरी में हुए भैया और आपके इशारा होते
3: बात दे भैया।
2: आलू भैया 45 से 50 रुपया पसेरी, प्याज 70 से 75 रुपया, लहसुन 160 से 170 रुपया पसेरी, लौकी 30 से 35 रुपया, बैगन रहले 120 से 130 रुपया पसेरी, खीरा 30 से 35 रुपया, ककड़ी रहले 40 से 45 रुपया पसेरी, कोहड़ी 15 से 20 रुपया, तरबूजा 60 से 65 रुपया पसेरी, करेला 80 से 90 रुपया, भिंडी रहले 70 से 75 रुपया पसेरी, नेनुआ 35 से 40 रुपया, बोड़ा रहले 25 से 30 रुपया
3: पसेरी,
2: और पसेरी और पालक 20 से 25 रुपया पसेरी, मूली

0: 60 से 70 रुपया, और चौराई के साग रहे 50 से 55 रुपया पसेरी, और पपीता भी रहे भैया 65 से 70 रुपया पसेरी, मिर्चा 125 से 130 रुपया पसेरी, और टमाटर 130 से 140 रुपया पसेरी, और परवल रहे भैया जोन बाकी 160 से 180 रुपया पसेरी, और फूल गोभी रहे 900 से 1400 रुपया सैकड़ा,
1: अच्छा,
0: पात गोभी पत्ता गोभी रहे 700 से 800 रुपया सैकड़ा, और ओकरे साथ साथ नींबू अपन 450 रुपया सैकड़ा, और कच्चा आम भी बिया देखा आयल रहे मार्केट में
1: अच्छा
0: 55 से 60 रुपया पसीरी, और खरबूजा भी बिया देखा इस समय आवत हुए 95 से 100 रुपया पसीरी रहे
1: बिया। इतना बढ़िया बढ़िया जोन बाकी दाम भी बताओ गिल बाजार भाव,
0: बिल्कुल
1: साथ साथ जोन बाकी जोन शीत कुमार देसी मुर्गी मुर्गा पालन करे के अपन का कुछ सावधानी बरतें, ये विषय पर बात बत गई किरण। तो इन लोग के जोन बाकी हम लोग धन्यवाद के क्रम में भैया,
0: बिल्कुल
1: एक अगर मनमनसैन करा दी तो बहुत अच्छा इनकर जोन बाकी धन्यवाद हो जाए
0: एकदम भैया। त्रिलोकी प्रसाद उनकर संगतिया भैया एक मन फिर भैया करावे हम लोग सुनल जाए।

0: राव भाई,
1: हाँ बोला भैया,
0: कितना बढ़िया मन मन शांत करावत हूँ त्रिलोकी प्रसाद उनकर संगतिया भैया।
1: बिल्कुल।
0: और लेकिन भैया देखा, हम लोग की हमें अपने समाज में भी भांति भांति के लोग हमारे समाज जैसे विवाह शादी हो चल रहा हो भैया, इसमें जनवा की बाराती पहुँचे में बड़ा देर हो जाला। ओकर कारण हो कि कुछ लोग जनवा की अपन शौक के वजह से, चाहे तो जनवा के उत्साह के मारा नशा पत्ती कर लेला लोग,
1: बिल्कुल
0: और एकरे वजह से जौन बाकी जल्दी से न तो रथ बढ़ पावे न तो जौन बाकी भैया डीजे बढ़ पावे। तो कई तरह से ऐसे नुकसान, एक तो जौन बाकी धन हानि भी है और दूसरे में ध्वनि प्रदूषण भी भैया।
1: बिल्कुल
0: तो ऐसे हम लोग के बच बचा के रहने की जरूरत हो, और सकल समाज से भाई ये निहोरा भी हो बैठकी के माध्यम से कि भाई जितना पौष्टिक आहार हो अकेले में शरीर में लगी, और जौन बाकी सस्ता भी हो, और
1: एकदम
0: जहाँ
1: एकदम
0: मद्यपान या जो भी आप सेवन करत हो नशा, वो हर दृष्टि से महंगा हो और उसे शरीर के हानि भी हो भैया।
1: एकदम सही कह रहे हो बोला भैया। और साथ साथ भैया देखा, जहाँ भी निकले के हो या दिन में, तो निश्चित रूप से भैया देखा बचाव धूप से और लू से
0: बिल्कुल
1: करके
0: बिल्कुल
1: निकले के
0: बिल्कुल
1: चाहिए, और
0: बिल्कुल
1: साथ में भैया देखा पानी रखने की जरूरत होगी, और समय समय पर पानी पियत रहें
0: हाँ
1: और
0: हाँ
1: लू से
0: हाँ
1: बचाव करत रहें। और उपरे साथ साथ भैया देखा जोन भी अपन घर के परिवार हुआ
0: हाँ
1: अपन
0: उन लोग
1: पशु
0: का
1: से
0: भी
1: हुआ अपन सबके भैया देखा जोन बाकी लू से बचाव के उपाय करते हुए। और
0: मतलब पेट भरल रहे भैया, चाहे मवेशी हो चाहे आदमी, और जोन बाकी समय समय पर पानी मिलत रहे तो ये लोग के जोन बाकी लू से बचावल जा सकला, स्वयं भी बचल जा सकला।
1: बिल्कुल
0: तो निश्चित रूप से हम लोग के यही से हर समय समय से बैठकी में जुट जाए के चाहिए, और अच्छा एक दूसरे से राय सलाह ले करके, ज्ञानवर्धक बात ले करके, और हम लोग के फिर जनवा की ओकर पालन करे के चाहिए भैया। तो
1: एकदम
0: घड़ी की
1: भैया
0: सुई भी इशारा करत हो कि हम लोग के पंचायती यहीं समेटे के चाहिए,
1: एकदम भैया,
0: फिर अगले दिन अगले जानकारी के साथ पहुँचल जाए। तो सब
1: सब
0: पंचन
1: पंचन
0: के
1: के
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

अभी ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम ग्राम जगत सुन रहे थे। 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकगीत। आज के इस कार्यक्रम में हमारे गायक कलाकार हैं त्रिकुल, त्रिलोकी प्रसाद व साथी। तो लीजिए, सबसे पहले सुनिए इनका गाया ये पचरा।

श्रोताओं, आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक रंग। कार्यक्रम लोकगीत में लीजिए अब सुनिए ये निर्गुण, इसे गाया है त्रिलोकी प्रसाद व साथियों ने।

श्रोताओं, आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकगीत। कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं त्रिलोकी प्रसाद व साथी। लीजिए अब सुनिए इनका गाया ये विकास गीत।

त्रिलोकी प्रसाद और साथियों की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये विकास गीत। इसी के साथ कार्यक्रम लोकगीत अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं।

102.7 FM पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। 7:15 हुए हैं। अब खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना सुने। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार काजल कुमारी पुत्री श्रवण कुमार निवासी ग्राम बीड़र थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र जो दिनांक 11/9/2025 से लापता हैं, उनका हुलिया इस प्रकार है। उम्र लगभग 16 वर्ष, लंबाई 4 फीट 3 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा गोलाकार, इकहरा मजबूत जिस्म। इन्होंने हरे रंग की टॉप और नीली जीन्स पैंट पहनी हुई है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। इसी क्रम में एक सूचना और सुने। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार आरती कुमारी पुत्री बसंतपाल निवासी ग्राम झारो खुर्द पोस्ट झारो कला थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र जो दिनांक 20/3/2026 से लापता हैं, इनका हुलिया इस प्रकार है। उम्र लगभग 12 वर्ष, लंबाई 3 फीट 5 इंच, रंग सांवला, लंबा चेहरा, दुबला पतला शरीर। यह मानसिक रूप से कमज़ोर तथा कम बोलती हैं। इनका पहनावा है

इन्होंने स्कूली ड्रेस पहन रखा है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। सूचना समाप्त हुई।

आइए अब एक नज़र डालते हैं हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों पर। दिल्ली से अनुप्रसारित करंट अफेयर्स का समय होगा 9:30 पर। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हम लेकर उपस्थित होंगे 10:30 पर। 9:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम यादों के झरोखों से सफर 90 वर्ष का। 7:31 पर सुनिएगा कार्यक्रम सबरस। 8:00 और 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुगम संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे 8:15 पर। रसधारा यह कार्यक्रम सुनिएगा 10:00। ये थी रूपरेखा हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण अब समाप्त हुआ। 102.7 FM पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। 7:17 हुए हैं। थोड़ी ही देर में यानी 7:20 पर आप लखनऊ से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शुभारंभ। कहा, राष्ट्रहित की भावना के साथ करें बिजली और ईंधन की बचत। 21 जून को दोबारा होगी नीट यूजी 2006 की परीक्षा, 2026 की परीक्षा। विद्यार्थियों को अपनी पसंद के शहर में मिलेगा सेंटर। अगले वर्ष से ऑनलाइन होगी परीक्षा। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए महंगा। प्रदेश में अब 95 से 97 रुपए पेट्रोल और 88 से 91 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा डीजल। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का चेन्नई सुपर किंग्स से मुकाबला। मैच खत्म होने तक लागू किया गया ट्रैफिक डायवर्जन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए से अधिक की 79 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, टूल किट और आवास की चाबियां भी प्रदान की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में तेजी से हुए विकास के चलते आज उत्तर प्रदेश देश के विकास इंजन के रूप में उभर रहा है। पश्चिम एशिया संकट का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से प्रधानमंत्री की अपील का पालन करते हुए बिजली और ईंधन की बचत करने और छोटे छोटे प्रयासों से

0: देश को मजबूती देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नेशन फर्स्ट की भावना के साथ हर नागरिक को देश हित में सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए।
1: कि ईंधन से जुड़े हुए मामले हो, खाद्यान्न से जुड़े हुए मामले हो, फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ मामला हो, या फिर मैं सभी सराफा व्यवसायियों से भी अपील करूंगा, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि विदेश से सोना मंगाने की बजाय हमारे घरों में जो सोना है उसी की मरम्मत कराना, हम सब अगर उस दिशा में कार्य करेंगे, देश का पैसा बचाना है, इस वैश्विक संकट से हम अपने देश को उभारने का काम करेंगे।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज को दिशा देने में प्रबुद्ध जन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार विकास को गति देने के साथ ही बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार की गारंटी देने का काम कर रही है।
1: आज स्वास्थ्य की सुविधा है, इंसेफ्लाइटिस बुरी तरह समाप्त, नौजवान के लिए पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था है, उसके रोजगार की गारंटी है, नौकरी की गारंटी है, बेटी की सुरक्षा की गारंटी भी है, विकास की भी गारंटी है। प्रबुद्ध जनों से मेरी यही अपील है, इसको चर्चा परिचर्चा का विषय बनाना चाहिए।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। श्री प्रधान ने बताया कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से ऑनलाइन यानी सीबीटी के माध्यम से होगी।
2: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए, 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: शिक्षा मंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
3: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते।
0: दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। राज्य के प्रमुख शहरों में अब पेट्रोल की कीमत औसतन 95 से 97 रुपए प्रति लीटर और डीजल की दरें लगभग 88 से 91 रुपए प्रति लीटर हो गई हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। प्रदेश में तेज आंधी, तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं से हुई जनधन की हानि को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल वितरित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पशु हानि से प्रभावित लोगों को भी नियम के अनुसार सहायता प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को प्रभावित परिवारों से मुलाकात करने और हालात का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राहत आयुक्त कार्यालय के कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय रखते हुए राहत और सहायता कार्यों की निरंतर निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार प्रदेश के 26 जनपदों में खराब मौसम के कारण 111 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 72 लोग घायल हुए हैं। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर आज से बिना टोल शुल्क के यात्रा की सुविधा खत्म हो गई है। कल रात 12 बजे से इस एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था।

0: जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क मार्ग पर 15 दिनों के लिए बिना टोल टैक्स के यात्रा करने की सुविधा दी थी। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर में 29 मई को माता भगवती मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित होगा। ये ध्वजारोहण राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही साध्वी रितंभरा के हाथों किया जाएगा। आयोजन को लेकर मंदिर परिसर में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले इस कार्यक्रम में करीब 2000 महिलाओं को आमंत्रित किया जाएगा। आईपीएल में आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से हो रहा है। मैच को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यातायात को सुचारू रखने के लिए इकाना स्टेडियम के आसपास ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के लखनऊ कार्यालय में आज एक दिवसीय समीक्षा शिविर का आयोजन किया गया। सम्मेलन में उपक्षेत्रीय कार्यालय गोंडा, कानपुर, झांसी, फतेहपुर और लखनऊ के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। राज्य राजधानी क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के उप महानिदेशक डॉ सुचिता गुप्ता ने बताया कि पारिवारिक आय के सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है, जो अगले साल 31 मार्च 2027 तक चलेगा। इस सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों को सरकारी नीतियों और योजनाओं को बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा।
1: ये सर्वेक्षण जरूरी था क्योंकि योजनाओं को बनाने में कहीं ना कहीं हमें इनकम की जरूरत होती है, और अगर हमें इनकम सही से मिल रही है तभी हम बहुत सारी योजनाओं में हम टारगेट बना पाएंगे, क्योंकि हर इनकम क्लास के जो लोग होते हैं उनकी जरूरतें अलग अलग तरह की होती है, तो सभी के लिए योजनाएं बन पाए अच्छी तरह से और टारगेट किया जा सके किस तरह की योजनाएं कितने लोगों को चाहिए होंगी, कितने हाउस होल्ड को चाहिए होंगी, तभी हमारा डेटा सही मायने में यूजफुल होगा।
0: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का उद्घाटन किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए श्री शाही ने कहा कि खरीफ का मौसम शुरू होने वाला है, जिसका ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार की प्राथमिकता किसानों को उन्नतशील बीज उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि खेतों में हरी खाद बढ़ाने और रासायनिक खाद के कम प्रयोग का प्रयास किया जा रहा है। अम्बेडकर नगर में आज सभी 899 ग्राम पंचायतों ने एक साथ ग्रीन चौपाल का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पेट्रोल डीजल की खपत घटाने, हरित परिवहन को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रस्ताव पारित किए गए। इस दौरान ग्राम प्रधानों ने पेट्रोल डीजल की खपत घटाने और कार पुलिंग इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के साथ ही हरित परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने का सामूहिक प्रण लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शुभारंभ। कहा, राष्ट्रहित की भावना के साथ करें बिजली और ईंधन की बचत। 21 जून को दोबारा होगी नीट यूजी 2026 की परीक्षा। विद्यार्थियों को अपनी पसंद के शहर में मिलेगा सेंटर। अगले वर्ष से ऑनलाइन होगी परीक्षा। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए महंगा। प्रदेश में अब 95 से 97 रुपए पेट्रोल और 88 से 91 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा डीजल। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का चेन्नई सुपर किंग्स से मुकाबला। मैच खत्म होने तक लागू किया गया ट्रैफिक डायवर्जन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

102.7 FM पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए फिल्म बॉर्डर का ये गीत सोनू निगम और अलका याज्ञिक की आवाज़ में। रचना जावेद अख्तर की है, धुन तैयार की है अनु मलिक ने।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का अगला गाना लीजिए, सुनिए फिल्म दरार से। इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने, रचना राहत इंदौरी की है, धुन तैयार की है अनु मलिक ने। तो पेश है फिल्म दरार का ये खूबसूरत गाना।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्रोताओं, आकाशवाणी ओबरे से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का अगला गाना लीजिए।

जी सुनिए, फिल्म यस बॉस से इस गीत को गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। रचना जावेद अख्तर की है, धुन तैयार की है जतिन ललित ने। तो पेश है फिल्म यस बॉस का ये खूबसूरत गाना।

यस बॉस, इस फिल्म में अभी आपने सुना कुमार सानू और अलका याग्निक को रचना जावेद अख्तर की थी धुन तैयार की थी जतिन ललित ने। श्रोताओं, आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम

ये अगला गाना लीजिए, सुनिए फिल्म जब वी मेट से। गीतकार हैं इरशाद कामिल, संगीतकार संदेश शांदिल्य और गीत को गाया है उस्ताद राशिद खान ने।

कार्यक्रम सबरस का ये अगला गाना लीजिए, सुनिए अलका यागी की आवाज में फिल्म जख्म से। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार MM करीम। तो पेश है फिल्म जख्म का ये खूबसूरत गाना।

अलका याग्निक की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे आनंद बख्शी का लिखा गीत। इस गीत को संगीतबद्ध किया था MM करीम ने और फिल्म का नाम था जख्म। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सबरस अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं।

श्रोताओं, रात के 8 बजे हैं। समय हो चला है कार्यक्रम सुगम संगीत का। तो पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत की ये पहली गज़ल जगजीत सिंह की आवाज़ में। कलाम गुलजार का है,

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: श्रोताओं, आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम की ये अगली गजल लीजिए, सुनिए जगजीत सिंह की ही आवाज में। कलाम वाजिदा तबस्सुम का है,

जगजीत सिंह की आवाज में अभी आप सुन रहे थे वाजिदा तबस्सुम का लिखा कलाम। इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं।

102.7 FM पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात के 8:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गाना लीजिए सुनिए, फिल्म उमराव जान से। गीत को गाया है सोनू निगम और अलका याज्ञिक ने। रचना जावेद अख्तर की है, धुन तैयार की है अनु मलिक ने। तो पेश है फिल्म उमराव जान का ये खूबसूरत गाना।

सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में अभी आपने सुना जावेद अख्तर का लिखा गीत। इस गीत को संगीतबद्ध किया था अनु मलिक ने और फिल्म का नाम था उमराव जान। श्रोताओं, आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत और कार्यक्रम का अगला गाना लीजिए, सुनिए अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। रचना प्रवीण भारद्वाज की है, धुन तैयार की है डब्बू मलिक ने और फिल्म का नाम है तुमसे मिलकर रॉन्ग नंबर।

तुमसे मिलके रॉन्ग नंबर। इस फिल्म में अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल को, रचना प्रवीण भारद्वाज की थी, धुन तैयार की थी डब्बू मलिक ने। श्रोताओं, आकाशवाणी ओबरा से सख्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, और कार्यक्रम का ये आखिरी गाना लीजिए, सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म इंतहाजी। गीत को लिखा है राहत इंदौरी ने और धुन तैयार की है अनु मलिक ने। तो पेश है फिल्म इंतहा का ये गाना।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में अभी आपने सुना राहत इंदौरी का लिखा गीत। इस गीत को संगीतबद्ध किया था अनु मलिक ने और फिल्म का नाम था इंतहा। इस गाने के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं।

102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। 8:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम की ये पहली गजल लीजिए, सुनिए गुलाम अली की आवाज़ में। कलाम अहमद नदीम कासमी का है।

जगजीत सिंह की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे निदा फाजली का लिखा कलाम। श्रोताओं, आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम की अगली गज़ल लीजिए, सुनिए भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ में। कलाम कतील राजस्थानी का है।

भूपेंद्र सिंह की गई इस गजल के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 8:44 हुए हैं। 8:45 पर आप दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी समाचार और रात 9 बजे दिल्ली से ही रिले अंग्रेजी समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबुधाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे

0: इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
1: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
3: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
1: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यह बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
5: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स के रणनीतिक साझेदारी के 3 स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
1: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टिलरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले 2 दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति

0: रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज ही कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in NEET UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Corps rape and murder case. Met department forecasts heatwave conditions in Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbha till tomorrow. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals at Sanda World Cup in Macau. And India concludes Asian Under 17 Boxing Championships with historic 2 gold and 7 silver medals at Tashkent. Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
3: Hormuz ko free, open aur safe banaye rakhna ye hamari sabse badi prathamikta hai. Is vision mein antarrashtriya kanoon ka palan avashyak hai. Brother, Bharat har paristhiti mein UAE ke saath कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
2: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
4: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
5: हेलो,
3: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
4: जो चाहिए वो ट्रैक सुनाइए।
3: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
4: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
3: ओनली ऑन AIR ओबरा।
6: श्रोताओं, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के प्रयासों से हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण करके 1930 में भारतीय राज्य प्रसारण सेवा बनाई गई और अंततः 8 जून 1936 को इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो, जिसे संक्षिप्त में ARI कहते हैं, कर दिया गया। ऑल इंडिया रेडियो ने मानव जीवन के हर क्षेत्र को एक लंबे समय से प्रभावित किया है। आकाशवाणी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में एक विश्वसनीय माध्यम के रूप में कार्य किया है। इसके क्षेत्रीय केंद्र विविध भारती और राष्ट्रीय समाचार प्रसारण ने देश के दूरदराज के इलाकों तक अपनी मजबूत पहचान बनाई है।

तो दोस्तों, इस खूबसूरत गाने के साथ ही हम कार्यक्रम यादों के झरोखों से सफ़र 90 वर्ष का कार्यक्रम यहीं समेटते हैं। एक 102.7 FM पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। 9:29 हुए हैं। 9:30 पर आप दिल्ली से अनुप्रसारित कार्यक्रम करंट अफेयर्स सुनेंगे।

0: Sports. Good evening, listeners. Welcome to our program, Current Affairs. I'm Tina Jha. Today, we will be discussing about the Prime Minister's visit to five nations, strengthening India's global partnerships. The first leg of the visit began in Abu Dhabi, where in a special gesture, UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan personally received the Prime Minister upon his arrival, a reflection of the deep and enduring bonds of friendship between India and the UAE. Prime Minister Modi extended gratitude to President Nahyan for the warm reception, describing the UAE as his second home. Listen in.
1: आपने पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा के कारण कुछ इलाकों में जो परेशानियां थी उन पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। पर पिछले कुछ समय से आपसे फोन पर तो बात होती रहती थी, परंतु मैं स्वयं आपसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब था, आतुर था। मैंने कहा लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जितना हो सके उतना जल्दी आपके पास आना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। आज आपसे मिलकर के मुझे सचमुच बहुत खुशी हुई है। बदल जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है, यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बना गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। बदल इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है,
0: the two sides also exchanged views on developments in West Asia and other major global issues. The visit witnessed several significant outcomes, with seven major agreements and arrangements announced. These include an MOU on strategic collaboration between Indian Strategic Petroleum Reserves Limited and Abu Dhabi National Oil Company. So to discuss the significance of these outcomes and what they mean for the future of the India-UAE Comprehensive Strategic Partnership, we have with us two eminent guests, Professor Harsh V. Pant, Vice President, Observer Research Foundation, and Professor Anshu Joshi, School of International Studies, Jawaharlal Nehru University. Thank you to both our guests for joining us on this program on Akashvani. Before we proceed further into the discussion, let's listen to this special interview of Indian Ambassador to the UAE on the significance of India-UAE ties by Prasar Bharati correspondent Vinod Kumar.
2: The MOU on Strategic Petroleum Reserves comes at a

0: suppliers, its technology partnerships, its green transition imperatives. So cooperation on renewables, green hydrogen, clean technologies is going to be figuring out a lot when Prime Minister goes from Netherlands all the way to Nordic countries. So I think in that sense, energy, economy, and then tech, India's growing emphasis on emerging tech and innovation ecosystems, semiconductors, AI, resilient supply chains, defense tech, startup collaborations, these are all critical now for India's external partnerships. So now from a traditional focus on political solidarity to a far more transactional and capability-oriented engagement with major economies is what is defining India's European outreach. And I think that is what we are going to see in country after country the Prime Minister goes, whether it is Netherlands, whether then after Sweden, Norway, Italy. I think this is how we are going to see the outcome from that. We should assess the outcome from that perspective, that India is no longer content with symbolic diplomacy. It is seeking tangible gains, whether it's technology access, energy resilience, investment flows, and strategic influence. And at a time when you have geopolitical fragmentation, India, what it is trying to do is basically leverage its growing economic weight to emerge as a pivotal actor in these two critical geographies where India has traditionally not been that important. But today, certainly, India's economic weight is giving it such a heft that it can have a bilateral partnership with the UAE and it can have a bilateral engagement with the Nordics. So we'll have the India-Nordic summit happen next week. So it is, I think, in that sense, a transformative moment in India's ties with both West Asia and Europe.
1: Before we proceed further into the discussion, focusing on the second leg of the Prime Minister's visit, which is to the Netherlands, here's an interview of the Indian Ambassador to the Netherlands, Kumar Tuhin, who described the Prime Minister's visit to the country as a significant one, while speaking exclusively to Akashwani correspondent Sushrut Sharma. Aiye sunte hain iske pramukh ansh.
2: प्रधानमंत्री तीन दिवसीय यात्रा पर नीदरलैंड आ रहे हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भारत के राजदूत श्री कुमार तुहिन सर सर कितना इम्पोर्टेंट है ये विजिट
3: यह यात्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि हमारे संबंध नीदरलैंड से बहुत मजबूत हैं लेकिन यह एक ऐसा मौका होगा जबकि दोनों देशों के नेता नीदरलैंड में नई सरकार बनने के बाद पहली बार सामने सामने मिल रहे होंगे तो इस मौके पर आज तक जो हमारी प्रगति हुई है उसको रिव्यू करना हमारी जो प्रोग्रेस है उनको कंसोलिडेट करना और आगे एक नई दिशा देने का एक बहुत बढ़िया मौका है
2: सर वो कौन कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां पे दोनों देश आपसी सहयोग के मुद्दों पे बात करेंगे और उनको और एक्सप्लोर करेंगे
3: पहले से जो हमारे जो सेक्टर्स हैं जैसे कि ट्रेड है इन्वेस्टमेंट है और जो पानी का क्षेत्र है और कृषि का क्षेत्र है स्वास्थ्य का क्षेत्र है इन क्षेत्रों में तो पहले से ही बहुत कुछ काम हो रहा है हम ये आशा करते हैं कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेताओं को मौका मिलेगा कि जो नए इमर्जिंग जो कुछ सेक्टर्स हैं जैसे कि सेमीकंडक्टर का क्षेत्र है या क्लीन एनर्जी का क्षेत्र है मैरिटाइम कोऑपरेशन का क्षेत्र है इन क्षेत्रों में भी हमारी आज की प्रगति को रिव्यू करना और हमें एक नई दिशा और नए निर्देश देने का एक अवसर
2: सेमीकंडक्टर क्षेत्र में नीदरलैंड एक पायनियर है इस क्षेत्र में हमारे यहाँ पे R&D के फील्ड में कुछ भारत में भी हो रहा है तो क्या आगे हम मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के क्षेत्र में भी कुछ संभावनाएं एक्सप्लोर करते हैं
3: जी नीदरलैंड्स विश्व की सबसे प्रख्यात सेमीकंडक्टर कंपनियों की जगह है और पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश की जो हमारी जो प्राथमिकताएं हैं उनमें सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को भी बढ़ाने का काफी बड़ा काम है तो इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एक तरह के हम दोनों का स्ट्रेंथ है और हमारी भूमिकाएं हैं जिसमें मैं उम्मीद करता हूं कि डच कंपनियां जो कि अभी भारत में मौजूद हैं लेकिन उनकी और बढ़ने की अभी आशा है और पोटेंशियल है उसको हम लोग एक नए स्तर पर लेके जा पाएंगे
2: सर ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में भी आजकल बहुत बात हो रही है नीदरलैंड इसमें एक पायनियर है लेकिन इंडिया भी इसमें एक उभरता हुआ लीडर नजर आ रहा है सर उस क्षेत्र में से कौन से फील्ड्स हैं जहां पे ये हमको बहुत बेनिफिट करेगा हम सुन रहे हैं कि कुछ क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में भी ग्रीन हाइड्रोजन का एक रोल है अदर देन एनर्जी सिक्योरिटी
3: जी सो नीदरलैंड्स क्लाइमेट के एरिया में सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के इलाके में काफी बढ़िया करते हैं हमारे देश में भी आपको पता है कि क्लाइमेट वातावरण और साथ साथ कृषि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इलाके हैं तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो डच कंपनियों के पास जो उनकी जो तकनीक है उनके पास जो आधुनिक तकनीक है उनका जो ज्ञान है उनको हम लोग भारतीय कंपनियों के साथ जोड़ सकें यहाँ के रिसर्च इंस्टीट्यूशन को हम भारत के जो शैक्षणिक संस्थान है हमारे जो अनुसंधान संस्थान उनसे जोड़ सकें ताकि हम दोनों देशों के बीच में एक म्यूचुअली जो बेनिफिशियल एक तरह का जो रिलेशन है उसको हम लोग ले पाए
2: सर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल सस्टेनेबल एनर्जी पे भी नीदरलैंड जाना जाता है उस क्षेत्र में ऐसे कुछ उदाहरण जैसे इंडिया में भी प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन लाइफ को शुरुआत किया है उसका जो उदाहरण यहाँ से जो हम तब से शोकेस कर सकते हैं

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: श्रोताओं, आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसधारा। कार्यक्रम का ये अगला गाना लीजिए, सुनिए फिल्म गाइड से। रचना शैलेंद्र की है, धुन तैयार की है SD बर्मन ने और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म गाइड का गीत। इस गीत को लिखा था शैलेंद्र ने और तर्ज बनाई थी SD बर्मन ने। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की ही आवाज़ में फिल्म रज़िया सुल्तान का ये गीत। रचना जानिसार अख्तर की है, तर्ज बनाई है खयाम ने।

रवि के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम था नई रोशनी। श्रोताओं, आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसधारा। कार्यक्रम का ये अगला

गाना लीजिए, सुनिए फिल्म मेरे महबूब से। नौशाद की बनाई तर्ज पर इस गीत को लिखा है शकील बदायूनी ने और इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। तो पेश है फिल्म मेरे महबूब का ये खूबसूरत गाना।

नौशायद की बनाई तर्ज पर अभी आप सुन रहे थे शकील बदायूनी का लिखा गीत। इस गीत को गाया था मोहम्मद रफ़ी ने और फिल्म का नाम था मेरे महबूब। श्रोताओं, आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसधारा। कार्यक्रम का ये अगला गाना लीजिए, सुनिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म पाकीज़ा से। गीत को लिखा है मजरूर सुल्तानपुरी ने और धुन तैयार की है गुलाम मोहम्मद ने।

गुलाम मोहम्मद की बनाई तर्ज पर अभी आपने सुना मजरूह सुल्तानपुरी का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम था पाकीज़ा। श्रोताओं, आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसधारा। कार्यक्रम का ये आखिरी गाना लीजिए, सुनिए फिल्म जंगली से आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शंकर जयकिशन की बनाई तर्ज पर इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में भी आपने सुना हसर जयपुरी का लिखा गीत। इस गीत को संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने और फिल्म का नाम था जंगली। इस गाने के साथ ही कार्यक्रम रसधारा अब समाप्त होता है।

102.7 एफएम पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 10:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इसके अंतर्गत लीजिए, सुनिए उस्ताद विलायत हुसैन खां का राग जोग पर आधारित गायन।

कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उस्ताद विलायत हुसैन खां का राग जोग पर आधारित गायन। इसी के साथ कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात के 11 बजकर

102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। 10:59 हुए हैं। 11 बजे आप दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एएमसीए निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को

0: विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीआई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एक 107.7 एफएम पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात के 11:05 हुए हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल प्रातः 5:59 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। जय हिंद।